0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो शंभू।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रे बन।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

खूब। दोस्तों, आदिशक्ति को सनातन, निराकार, परब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार, जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।

बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेर वाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: कल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। भक्ति धारा प्रोग्राम में आज हमारे संग है भक्ति रस की हमारी जयपुर रेडियो की सिंगर मंजू रैना एनसीआर दिल्ली से। वेलकम है मंजू आपका इन भक्ति गीतों के साथ।

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। मंजू रैना की आवाज में आपने सुना ये मीरा का लोकप्रिय भजन। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

0: किसकी बारात है माँ?
1: रुक्मणी की। वो बड़े हवेली वाले ताऊ जी है ना, उनकी बेटी की शादी है।
0: और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं?
1: रुक्मणी का दूल्हा। नीचे बैठ मीरा, हिलती रहती है बस।
0: और मेरा दूल्हा कौन है?
1: तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर।
0: सवाई गिरधर।

0: बाला मैं बैरागन होंगी। मीरा का ये सुरीला भजन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही हैं भक्ति धारा प्रोग्राम में मंजू रैना।
1: श्याम

0: शाम मोहे चाकर राखो ना, शाम मोहे चाकर राखो जी। चाकर का मतलब होता है सेवक। अपनी सेवा के लिए मुझे रख लो ना हे शाम। बहुत ही खूबसूरत भजन है ये मीराबाई का, और यदि हम इसको खूब सुनते रहें तो हमें बोध होगा कि जैसे मीरा कह रही हैं हम सबके लिए, हे श्याम, हे मोहन, हे कृष्ण, हे घनश्याम, आप मुझे चाह कर रखो ना, यानी आपकी चाह मेरे प्रति बनी रहे, और यदि आपकी चाह बनी रहेगी हम पर तो हमारा जीवन सरल होगा, सुगम होगा, उत्तम होगा। हमारी सुरीली मेहमान भक्ति धारा के आज की प्रस्तुति में हमारे संग रही एनसीआर दिल्ली की मंजू रैना। मंजू रैना जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सुगम संगीत की गायिका है, और हम मंजू रैना का आभार व्यक्त करते हैं भक्ति धारा की इस प्रस्तुति के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंजू आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जयपुर रेडियो सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं रिजो, जयपुर रेडियो के माध्यम से आओ झूमे गाएं और रॉकिंग रागा प्रस्तुत करने जा रहा है एक खूबसूरत युगल गीत, जिसे अपने सुरों से नवाजा है विद्या विकास और रामकी ने। आपको बताते चले कि लफ्जों की गुजारिश कार्यक्रम में आज का विषय है चल। तो आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गाना। इस गाने को फिल्माया गया था भारतवर्ष और ग्रीस में।

मैंने कब कहा वो मिल जाए मुझे, गैर ना हो जाए, बस इतनी सी हसरत है। आइए दोस्तों अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जिसे गाया है रिजू और सुधी जी ने। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

ये दिल था कि तरसता था मरासीम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे, अपना ये हाल कि जी हार चुके, लुट भी चुके और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। फिर किसी की याद में तड़पा दिया, हम कलेजा थाम कर रह गए। जी हां, दिल कहता है चल उनसे मिल, अकेले हम अकेले तुम, इस मूवी का खूबसूरत गाना जिसे पेश करने वाले हैं मैनाक्षी और केतन जी, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वायदे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए।
1: तो अभी आप सुनने जा रहे हैं श्वेता और संतोष जी के युगल सुरों में ये खूबसूरत नगमा, ओ साथी चल।

दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वादे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए। आइए सुनते हैं आखिरी गाना, जिसे सुरों से नवाजा है मानवेंद्र और पूर्ण जी ने। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मानवेंद्र और पूर्ण जी। सुनते रहिए जयपुर रेडियो

0: अंत में जयपुर रेडियो के माध्यम से आप सभी ने सुना आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के सौजन्य से लफ्जों की गुजारिश। आज का लफ्ज था चल।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, संगीत जिनकी जान और प्राण है, संगीत से जिनका अभिमान है और संगीत से ही जिनका मान है, उनका नाम है संघमित्रा घोष। दिल्ली से हमारे साथ आज इस सुरीले प्रोग्राम की मेहमान, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है संघमित्रा घोष का। आप न केवल ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही हैं, बल्कि वहां की एक ग्रेड आर्टिस्ट रही हैं, और एक ग्रेड आर्टिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही कलाकार का हम आज जयपुर रेडियो के इस मंच पर वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहती हैं संघमित्रा जी, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आप सब सुनने वालों को शुभ संध्या। मेरे इस प्रोग्राम में आप सबका दिल से स्वागत। मेरी संगीत की शिक्षा मूलतः कोलकाता में हुई थी। मेरे गुरु किराना घराने से थे, उनके अतिरिक्त मैंने कुछ और गुरुओं से भी तालीम ली, उनमें से श्रीमती शोभना मित्र और जयश्री घोष शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो के साथ मेरी लंबी सफर रही है, कोलकाता युववाणी, कोलकाता जनरल और दिल्ली जनरल स्टेशंस का मैं एक ग्रेड आर्टिस्ट रही। विदेश चले जाने के कारण ऑल इंडिया रेडियो से नाता टूट गया। मैं मूल रूप से ख्यालिया हूँ, ठुमरे में मेरे तालीम

रेडियो के लिसनर्स के लिए लेके आई हैं अपने गाए कुछ गीत। साहित्य और संगीत में एक रस बहुत प्रधान होता है और उसका नाम है श्रृंगार रस, और श्रृंगार में वियोग श्रृंगार की बहुत प्रधानता है। बहुत सारे गीत वियोग श्रृंगार को लेकर गाए गए हैं। आज कुछ ऐसे गीत लेके आई हैं। पहला गीत बहुत ही लोकप्रिय गीत है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। आइए सुनते हैं ये पहला गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर की आवाज में।

मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, जो कहीं वो मुझ पे गुजर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में।

बेकसी हद से जब गुजर जाए। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की मेहमान सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब एक खूबसूरत नगमा, ना रोए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं, ना रो ए दिल कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

ना रो ऐ दिल, कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। ना रो ऐ दिल, कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। हमने सुना ये खूबसूरत नगमा हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए आप सुने। हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना, हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हाँ जी, दुनिया बड़ी बेईमान। बुरा है जमाना, टूटे ना ये दिल का खिलौना, दुनिया बड़ी बेईमान। आइए सुने ये अगला खूबसूरत गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में।

मारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान हमारे। और जब हम कहते हैं हमारे, आप हमारे, तो कितना इस हमारे शब्द में कितना वजन होता है हमारा कहना। और जब किसी से प्यार हो जाए तो हमारा होना निश्चित है। और ऐसे ही प्यार में एक गीत और गा रही हैं, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, हो नदिया धीरे बहो, चल है नदी की धार, हो नदिया धीरे बहो। आइए सुने ये खूबसूरत गीत संगमित्रा घोष की आवाज में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुपर सिंगर।

हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। भोले भाले रूप में कातिल है मेरे सामने। आइए सुने एक खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। सुन रहे हैं संगमित्रा घोष को।

हाल दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। बिना बादल के कभी आपने बिजली चमकती देखी है, लेकिन गीतों में चमकती है, अपनी रोशनी से सबको सराबोर करती है। डारे नजर हल्के हल्के देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के। आइए सुनते हैं ये बिन बादल बरसात कैसे होती है। आवाज हमारी आज की सुपर सिंगर की।

देखो बिजली डोली बिन बादल के, और जब हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो यूं ही डोलना पड़ता है, जब हम साथ होते हैं तो बात कुछ और ही होती है। और हमारे साथ हैं जयपुर रेडियो के सिंगर संगमित्रा घोष और हमारे वो सारे लिसनर्स जो जयपुर रेडियो और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड को बहुत चाहते हैं। हम उनके लिए यही कहेंगे, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, तुम ही तो नहीं मिलते जाएं तो किधर जाएं, बस में नहीं वरना हम उड़के चले आए। आइए सुने ये सुरीला सॉन्ग।

आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, बस में नहीं है वरना हम उड़ के चले आए। इस खूबसूरत गीत के बाद एक मनभावन गीत, और वो मनभावन के गीत में मनभावन के घर जाने की बेला का ये सुरीला सॉन्ग हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना। बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत में श्रृंगार के दोनों पहलू हैं, वियोग भी है और साथ साथ संयोग भी है कि सजन के घर जाना है और हमें ना भुलाने की बात है। और अब उस पवित्र गंगा की बात करते हैं। हमारी आज की सुरीली मेहमान संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान इस सॉन्ग के साथ।

0: की आवाज आपकी पहचान। सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। इस गीत के बाद तो हम यही कहेंगे कि गंगा को साफ रखें, पवित्र रखें और पाप अपने पास रखें। हमारे साथ रहीं दिल्ली की संगमित्रा घोष, जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार संगमित्रा जी। फिर मिलते हैं इसी रास्ते पर, इसी सफर पे, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब प्रस्तुत है एक बहुत ही सुरीली कहानी, मठाधीश। इसको लेके आई हैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव।
1: नमस्ते, मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। प्रस्तुत है मेरी कहानी मठाधीश। मेरा चातक चितवन उसकी प्रेमिल दृष्टि की नित्य ही प्रतीक्षा करता और वह स्वयं को मेरे दृष्टिपथ से बचाते हुए निकल जाता। मेरा मौन निमंत्रण सदा उसके उच्छ्वासों पर सुगंधी बिखेरता और वह दीर्घ निश्वास भर संगियों के संग ज्ञानालाप के सुर छेड़ता मुड़ जाता। उसका संसार विस्तृत था, हाथों में वेद थे, आंखों में पुराण थे और मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान। मेरे पास क्या था? उसके नाम के मात्र एक झीनी चूनर जिसमें सितारे टके थे उसकी मुस्कानों के, जो मैंने चुराए थे मठ में प्रसाद वितरित करते हुए चुपके से। वह मठ में होने वाली मठाधीश प्रतिस्पर्धा का प्रतिभागी था। 5 ग्रामों के मध्य एक ही मठ था जहां विद्यार्थी आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे तो पुरोहित प्रांगण में बने शिव मंदिर में अर्चन करते थे। वृद्ध परम गुरु के स्थान पर अब नए मठाधीश का चुनाव होना था। परम गुरु अब अस्वस्थ थे, मठाधीश बनना अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। इस युवा ने तो सभी आचार्य महापंडितों को पराजित कर दिया था और बस अब मुख्य शास्त्रार्थ ही बचा था। मेरे पिताजी मुख्य पुरोहित थे मठ के, तो बात हो रही थी मेरे उन दिवसों की जो सजीव थे, वशीकृत थे, उसके नाम से रचे बसरे थे जिसका नाम चंद्रभान था। क्या सचमुच वह विजयी होगा, मठाधीश बनेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा? मुख पर तो मधुमय वसंत बिखरा पड़ा है महोदय के। कोई भी किशोरी नैनों के कानन वन में खो जाए, अधरों की मंद मुस्कानों के पोखर में डूब जाए। ऐसे कितने ही विद्वान मठ में शास्त्रार्थ में हिस्सा ले चुके थे, वे पराजित भी हुए। सदा ही मठ में युवाओं का आना जाना और मेरा सबको प्रसाद वितरण करना सामान्य सा था। पर अब क्या विशेष हुआ, क्यों इस चंद्रभान बाबू के प्रेम में स्वयं को विकल करूं थी? यदि ये विजित हुए तब मेरे प्रेम का क्या होगा? क्या त्रषित नैनों को मात्र दर्शन लाभ से ही संतुष्ट होना होगा? क्या जीवन उनकी रसीली बातों का रसपान भी न कर पाएगा? आह, हृदय ने यह कैसी प्रचंड प्रणय डगर पकड़ ली थी। जब से वह हमारे ग्राम में आया उसका आकर्षण ऐसा कि कुछ दिनों से मेरे ब्रह्मांड में नित्य श्वेत पुष्प खिलने लगे थे। हजारों उल्काओं के मध्य बादलों की धरा पर मेरी झीनी अनुरागी चूनर उन्हें स्वप्न में बीनती और वेणु में गूंथ लेती। तब मेरी विकलता कि हाय, उसकी एक दृष्टि तो पड़ जाए इस रूप श्रृंगार पर, इस यौवन पर, कहाँ छिपाऊं इन मादक क्षणों को कि किसी की दृष्टि ना पड़े। एक परिपक्व स्त्री को तो सब कुछ छुपाना आता है, किंतु एक किशोरी को, उसे तो सपने भी छिपाने नहीं आते। तो यह रहस्य सखियों में खुल गया। कुहुकनी कुकुठी मैना गाने लगी, हास परिहास के मध्य मुझे इंगित किया जाने लगा और दूर कहीं बांसुरी मेरा और उसका नाम पुकारने लगी। मेरे नाम में क्या रखा, कुछ भी हो, बात तो उसकी हो रही है। यह सब एक स्वप्न सा था। एक दिन सखियों ने कहा, अरे बावरी तजदेश चाह को, तू नहीं जानती यह पाप है, वह आयु में तुझसे अधिक है, वह हमारा गुरु बनेगा, मठाधीश बनेगा। तब मैं खिलखिला देती, वह मात्र मेरा बनेगा। क्या यह कसक उसकी उर में न जागी होगी? भला इतना आकर्षक युवक और ब्रह्मचर्य जीवन, प्रेम तो इससे अधिक बड़ी साधना है। ओ मेघमालाओ, रसा वर्षण करो उसके अंतर मन पर। ओ कुसुम धनवा, प्रेम विशिक तानो तनिक, मेरा उर्पुष्प चुरा के ले गया है वह। मैं झूम उठती, ऋतुराज मेरा प्रेम पल्लवित करो इन गदराए फलों में, इन विकसित फूलों में, बस मेरी ही मेरी सुगंध भर दो। सहस्त्रों निर्झरियां फूट पड़े उसके हृदय में मेरे नाम की। हे गंधवा जाओ जाओ, मेरी मधु स्मृति भर दो उसकी सांसों में। हे चंद्रमालिकाओ, उसके मन के कोने कोने में मेरे सपने, मेरी छवि, मेरी मुस्कानें बसा दो। हे गोरी माँ, मुझे यही वर डाल दो झोली में, अर्थात मैं स्वयं चौकी। यह मैंने क्या मांग लिया? क्या उसकी पराजय मांग ली मैंने? वह तो यहाँ विजयी होकर मठाधीश बनने आया है, उसका मनोबल इतना क्षीण तो ना होगा। वह नित्य आता, पिताजी से संवाद करता और चला जाता। पिछले एक माह से एक दृष्टि तक मेरी ओर ना की थी उसने। मेरा श्रृंगार, मेरी कोमल भावनाएं संदेखी को पी रही थी भीतर तक। भावनाओं का विहल सागर आंदोलित हो रहा था। कब भंवर उठे, कब मैं डूब जाऊं उसमें ज्ञात नहीं था। कुछ दिनों से इसी ब्रह्मांड से आग के गोले बरसने लगे थे, तारिकाएं टूटने लगी थी, सभी ग्रह नक्षत्र डोलने लगे थे, नव की दीपावलियां मुझे रास नहीं आ रही थी। मन खूब उलाहने बुन रहा था, पर यह दुशाला किसे उड़ाऊं? फिर वह सांझ आई जो अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी, 16 कलाओं से परिपूर्ण थी, किंतु क्षणिक थी, यह बाद में जान पाए। अवंती मेरी छोटी बहन भागती हुई आई। जी जी जी जी, पिताजी नहीं है घर पर, चंद्रभान बाबू आए हैं, तुम्हें बुलाते हैं। देव देव देव, क्या हो गया यह? वह मुझे बुलाते हैं? बड़ी रहस्यमय सृष्टि है यह। मैं श्वेत पड़े जा रही थी जबकि मुझे गुलाबी होना था, और यह सांझ जिसे यह सूचना पाकर गुलाबी होना था तो वह लाल हुई जा रही थी, संभवतः लाज से। सब रंग उलट पुलट हो रहे थे। क्षण भर पूर्व ही तो मेरा दृष्टिकोण काला सफेद सा था, जो अब हरा हरा सा होने लगा था। अब अवश्य जीवन इंद्रधनुषी हो जाएगा, बैंजदी पुष्प झरेंगे आंचल में मेरे। अवश्य वह आज कहने आए हैं कि वह मुझसे प्रेम करते हैं। सो कपोलों पर चोरी से उभराई हल्की लालिमा लिए सांसें रोक के उनके समक्ष जा खड़ी हुई मैं। यह क्या, वे तो द्वार पर ही थे। जी, मेरा धीमा स्वर गूंजा, स्वर अटका पड़ा था कंठ में, तन कांप रहा था नीचे से ऊपर तक। प्रथम बार हमारी दृष्टि मिली, यूं आभास हुआ शत चषक प्रेम प्रसन्न रसपान कर लिया हो मैंने। बस अभी मत होकर गिरने ही वाली थी कि उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए, फिर प्रभावी कालजयी स्वरों में जो कहा वह सदियों तक मेरे कानों में गूंजता रहा। सदियों तक इसलिए कि उसके पश्चात एक एक क्षण एक सदी एक युग बन गया था। उन्होंने कहा, चंद्रा, हाँ यही नाम तो है मेरा। उनके अधरों से संबोधित होकर मैं ना रही। चंद्रा चंद्रा चंद्रा, बस यही गूंज रहा था सृष्टि में। चंद्रा, उन्होंने पुनः पुकारा तो मेरी सुधी लौटी। तुम पवित्र आत्मा हो चंद्रा, तुमसे अनुरोध करने आया हूँ, ईश्वर से मेरी पराजय ना मांगना। कहते हैं पवित्र आत्माओं की प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं। उनके मुख पर कुछ प्रभावी तत्व था, क्या था नहीं जानती। उन्होंने हाथ जोड़े और तुरंत मुड़कर चले गए। वे चले गए, संसार चला गया, ईश्वर चला गया, सब कुछ तो चला गया, बस रह गया उनका स्वर, मेरी पराजय न मांगना, मेरी पराजय न मांगना। मैं अवाक थी, मैं जड़ थी, मैं पत्थर थी, मैं पानी भी थी, मैं आग बन ही रही थी कि हवा हो गई। हवा बनी तो सूखी पंखुड़ियों से झरने लगी, तब सांझ थरथराने लगी, धरती कांपने लगी। वह फटती ही ना थी कि मैं उसमें समा जाऊं। कहीं से एक ग्लानी का अणु आ बैठा मन में, तो मैं भी एक दीवार के कोने में जा बैठी, दुबकी सी शून्य को निहारती। भीतर कुछ भी नहीं घट रहा था। ऐसा आघात, ऐसा प्रतिदान, आह कि यह क्या बंधन था कि उन्होंने जान लिया कि मैं उनकी पराजय चाहती हूँ। देव, यह अंतरात्मा का एकीकरण नहीं तो क्या था? मेरे अश्रु नहीं बह रहे थे, क्योंकि प्रातः मुख्य शास्त्रार्थ के पश्चात मेरी देह जल अधिष्ठात्री की गोद में समाने वाली थी। उससे पूर्व में ध्यानस्थ हो चुकी थी उनकी विजयी कामना के लिए। उनने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, तो मेरे लिए यह वचन ईश्वर के हो गए। और अब ईश्वर में कहाँ सामर्थ्य रह गया कि वह रंच मात्र हेरफेर कर दे मेरे निर्णय में। ईश्वर को उनके वचनों का मान तो रखना ही होगा, मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार करना ही होगी। मैं कब तक ध्यान अवस्था में रही मैं नहीं कह सकती। दूसरे दिन दोपहर समाधिस्थ होने से पूर्व अवंती का स्वर सुनाई दिया, चंद्रभान बाबू विजित हुए, चंद्रभान बाबू विजित हुए। वह चहक रही थी, ताली बजा रही थी, नाच रही थी। पिताजी कहते हैं वे परम ज्ञानी हैं, उन्हें तो विजय होना ही था। मैंने दो अश्रु बूंदे उनके स्वागत में अर्पित की और एक ओर लुढ़क गई। अवंती चीखी, जी जी। तीसरे पहर नेत्र खुले तो पिताजी की मजबूत हथेलियों का कोमल स्पर्श माथे पर पाया। मैं स्वयं को रोक न सकी। किस तंद्रा में 100 प्रश्न पूछ डाले जिसका एक भी उत्तर न दिया उन्होंने। कहाँ गया था उनका ज्ञान? पिताजी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, द्रोणाचार्य सहित सभी महागुरु तपस्वी गृहस्थ थे, उनकी जीवन संगनियां थी, सहयोगी थी। तब तब मठ में ब्रह्मचर्य पालन क्यों? पिताजी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंतिम प्रश्न पर मैं फफक पड़ी। पिताजी मौन थे। पिताजी संभवतः ठीक से समझ नहीं सके और मेरी तपती देह का ताप उस पर जाकर उड़ेल दिया। बस इतनी ही खबर उड़ी कि पिताजी ने उसे भला बुरा कहा। अवंती ने बताया वह दोषी है, उसने तुम्हें बहकाया है, ऐसा ही कुछ कहते थे पिताजी। मठ के समस्त आचार्य उत्तर मांगते थे, वह मौन था। मैंने तो उसका तप ही स्वाहा कर दिया था। छी, कितनी स्वार्थी थी मैं। उसका नाम खराब हो गया, वह मुझे कोसता होगा। पिताजी के सम्मान में अब उसकी दृष्टि तक न उठेगी। मैंने प्रत्यक्ष पूछा, तब आगे क्या हुआ? आगे पिताजी बोले, मेरी पुत्री कल मूर्छित हो गई थी। तब किसी पुरुष का धीमा स्वर उभरा, मेरी पुत्री भी। तब तीन स्वर और उभरे, मेरी भी। तब सन्नाटा छा गया, हतप्रभ थी। और कौन मूर्छित हुआ और क्यों? तभी पिताजी लौट आए और हम कक्ष में चले गए। अगले दिन ग्राम में सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। हवाएं रुकी थी, जैसे सृष्टि की सांसें रुक गई हों। सूरज तो निकला था, पर अपराध बोध के साथ। क्या अपराध किया होगा उसने, ज्ञात नहीं। मठ द्वार बंद था, चिड़िया तक न चहकती थी। अवंती फुसफुसाई, गई रात चंद्रभान बाबू को मठ से निकाल दिया गया, यह कहकर कि उन्होंने नियम भंग किया। क्या कहती है? मैं चौंकी, कौन सा नियम? मैं पागलों की भांति मठ की ओर दौड़ पड़ी। नहीं नहीं नहीं, यह अन्याय है, द्वार खोलो, वे निर्दोष है। मैं दौड़ी तो अवंती पिताजी भी दौड़े, पड़ोस भी दौड़ा, अन्य प्रतिभागी भी दौड़े, कुछ आचार्य पुरोहित भी दौड़े, कुछ स्त्रियां भी दौड़ी। अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, यह वाक्य हवा दोहराती हुई पूर्व मठाधीश परम गुरु के कक्ष में गई और द्वार खोल दिए गए जैसे खुले थे मेरे केश हवा में लहराते हुए। मैं शिव प्रतिमा के चरणों में जा गिरी। शिव शपथ, वे निर्दोष है, वे निर्दोष है, उन्होंने एक दृष्टि भी मेरी ओर नहीं की। सबको विश्वास करना ही होगा। यह शक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी सत्य थी कि भीड़ अचंभित रह गई। ग्राम अपनी बालाओं का मान करता था, सो कुछ ना बोला। इस शक्ति ने उन चार बालाओं की भी अंतर शक्ति जागृत कर दी और वे भी मेरे पार्श्व में आ खड़ी हुई। यह सच कहती है। समाज स्वयं को धिक करता रहा, अब किस मुंह से उनसे क्षमा मांगी जाए। परम गुरु ने त्वरित हमें कक्ष में बुलाया, आदेश पालन करना अनिवार्य था। सो थके पगों से जा पहुंचे उनके कक्ष में, मठ के पिछले भाग में। मैं दृष्टि चुराती रही पर उनके दर्शन नहीं हुए। वे जा चुके हैं क्या मठ से? उनके विषय में इस रूप में सोचना अब महापाप था। कक्ष में पग रखते ही हृदय धड़क उठा। वे सम्मुख थे, मठाधीश चंद्रभान बाबू सम्मुख थे। वे कहीं नहीं गए थे, उन्हें मठ से नहीं निकाला गया था। परम गुरु की ओर मुड़ी मैं, उन्हें शीश झुकाते हुए मेरे अश्रु उनके चरणों में जा गिरे। उनका मध्यम स्वर निकला, कल तुम्हारे अतिरिक्त चार बालाएं भी मूर्छित मिली देव प्रकोष्ठ में। परम गुरु ने हाथ जोड़े, क्या इसमें चंद्रभान का दोष है? हम पानी पानी थे। वे पुनः बोले, कन्याओं, तुम्हारा हृदय तोड़ने वाला तुम्हारा दोषी इस मठ का मठाधीश नियुक्त हुआ है। यदि इसका कुछ दोष हो तो इसने एक भी दृष्टि नहीं नहीं नहीं नहीं गुरुदेव, मैं उनके चरणों में जा गिरी। यह तो हमारा दोष है, यह तो हमारी नासमझी है। अन्य कन्याएं भी अश्रु बहा रही थी। हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। पाप नहीं चंद्रा, वे आगे बढ़े, मठाधीश चंद्रभान आगे बढ़े। तुमने प्रेम किया है, इन्होंने भी प्रेम किया है, यह पाप कदाचित नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का ही रूप है। तुम सब ग्लानि त्याग दो, बस उस प्रेम का स्वरूप बदल दो, उसकी पवित्रता पर आंच न आए। उन्होंने मेरे शीश पर हाथ रख दिया। देव, कि मैं पवित्र हो गई, कि मेरे मनोभाव परिवर्तित हो गए। देव, कि मेरी आत्मा पुनः देह में प्रविष्ट हो गई एक नए रक्त संचार के साथ। देव, कि मैं सुगंध होकर घुलने लगी सरित सरोवरों में, मेरी दृष्टि विस्तार देखने लगी, मेरा हृदय ब्रह्मांड हो गया, मैं उनके चरणों में झुक गई। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चंद्रा, उन्होंने दोनों बाहुओं से मुझे उठाया। यह स्पर्श नवीन था, स्नेह युक्त था। मैं जीवन भर तुम सबका ऋणी रहूंगा, वे बोले। तुम्हारे पवित्र प्रेम को पूछकर ही कार्य आरंभ करूंगा। बस तुम सब मुझे सदा प्रसन्न दिखो, मठ में प्रसाद वितरित करती दिखो, नृत्य करती दिखो, खिलखिलाती दिखो, इन पेड़ पौधों में जल सींचती दिखो, तब समझूंगा कि मैं दोषी नहीं। कक्ष में अब मात्र सिसकियां थी, जो सांसें थी नवीन जीवन की। ग्रामवासी अश्रु बहाते थे, मुझ सहित वे सभी किशोरियां भी मुस्कुरा दी। अब हमारे मन स्वच्छ थे, यही तो जादू था उनमें कि क्षण में हृदय परिवर्तित कर दिया जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमें अपने इतने निकट कर लिया कि हम बिना संकोच उनसे मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, साथ में अपने हृदय की बातें साझा कर सकते हैं। अब तो हम उनसे रूठ भी सकते हैं, उससे भी अधिक हम ज्ञान पाते हैं उनसे। वे महान हैं, वे हमारे गुरु हैं और हम उनके चंचल चपल प्रिय शिष्याएं, और यही है हमारा अमर प्रेम। धन्यवाद। बताइएगा कहानी कैसी लगी।
0: आपने सुनी कहानी मठाधीश। कहानी आप तक पहुंचा रही थी प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

मैं 2023 में ये गाना सुन रही हूँ, पर ऐसा लगता नहीं है ये गाना 1992 में रिलीज़ फिल्म का है। जब भी सुनो बिल्कुल नया ही लगता है। धन्यवाद वंश की पूरी टीम को जिसने इतना बेहतरीन गाना बनाया। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष और विद्या जी।

अगला गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आनंद बख्शी साहब का मंत्रमुग्ध करने वाला गीत। युगल गायक हैं लता जी और रफ़ी साहब, और सबसे बढ़कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस शानदार रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रशांत नायर और गिरिजा जी।

आवाज़ के मालिक महान रफ़ी जी ने यह सदाबहार गीत गाया है। गीत के बोल है, नज़र न लग जाए किसी की राहों में। यह गीत आज भी उतना ही हरा है जितना 60 साल पहले था और दुनिया के अंत तक रहेगा। संगीत निर्देशक ने इस गीत के लिए संगीत तैयार करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को श्रद्धांजलि। आइए, प्रस्तुत कर रहे हैं संगीता और मनीष जी।

1985 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सागर। इस फिल्म का एक गाना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, सागर किनारे दिल ये पुकारे। किशोर दा की आवाज़ ने इस गीत को अमर कर दिया। हालांकि इस गीत की धुन को वो पहले भी एक बार एक गाने में प्रयोग कर चुके हैं। आइए सुनते हैं संजय जोशी और कविता, यानी कि आपकी होस्ट की आवाज़ में।

अगला गीत है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फिल्म से, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, अनूप दुआ और बिमल जी की आवाज़ में। इस शानदार प्रदर्शन का पूरा श्रेय किशोर दादा को जाता है।

अगला गीत है फिल्म पापा कहते हैं। गीत के बोल हैं घर से निकलते ही। उदित नारायण के अलावा किसी अन्य गायक ने इस गाने को इतना ताज़ा और जीवंत नहीं बनाया होगा। अभी भी ऐसा लगता है जैसे ये आज का ही गाना है। आइए, प्रस्तुत कर रहे हैं राजेंद्र जी और मनीषा जी।

धीरे धीरे सुबह हुई, ग्रेट येसुदास जी का यह मेरा पसंदीदा गीत है। राग भैरवी अहीर, सुपर गीत। आइए प्रस्तुत कर रहे हैं मनवेंद्र त्यागी और अर्पणा जी।

एसी बर्मन साहब और महान गीतकार आनंद बख्शी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। आइए अगला गीत गा रहे हैं मनप्रीत और डॉली जी, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा।

इसी के साथ अगला और आखिरी गीत सुनते हैं, यो यो हनी सिंह, जिसने पूरी पीढ़ी को 2G में कैद कर लिया। 2010 से 2015 यो यो हनी सिंह का स्वर्ण युग कहलाता है। आइए सुनते हैं मनीष और भौमिक को, आज ब्लू है पानी पानी।

0: वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। हाँ, समय को रोक तो नहीं सकते, मगर पलों को यादगार बना सकते हैं, और ऐसे ही पल हमारी शख्सियतें शेयर करती हैं हमसे इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी हैं श्री ओपी शर्मा। ये बात तो हम सभी समझते हैं कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हुआ ना बेहद जरूरी इसका ख्याल रखना। इसमें भी एक जरूरी बात यह है कि शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें खुशी से तरोताजा रखने में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जैन, अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो पिछले 10 वर्षों से अपने चिकित्सकीय कौशल से लोगों को मानसिक सुदृढ़ता के प्रति सचेत बनाकर समाज में एक आवश्यक चेतना जगाने में प्रयासरत हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रीति जैन।
1: नमस्कार सुषमा जी।
0: तो बात करें अच्छे स्वास्थ्य की। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति तो हम धीरे धीरे बहुत सजग हो रहे हैं, मतलब इतने लोग जिम जाना शुरू कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा जो अवेयरनेस है वो इसको लेकर आई है। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, जो हमारे डेली चोर्स में हमें खुश रखने में, एनर्जेटिक रखने में, पॉजिटिव रखने में मददगार है।
1: जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बड़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें है ना अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स। बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ, कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आप आपके इमोशनल जो स्टेट है उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि

0: लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ? वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है. अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं. लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफ लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है. लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
1: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना? कोई खास वाकया इसका कारण बना? कोई खास माहौल? कोई खास प्रेरणा?
0: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था. बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है. हर्ड दिस लाइन अ नंबर ऑफ टाइम्स इवन. तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं. इट इज स्टिल अ स्टिग्मा. इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट. इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम. तो तब मुझे लगा कि यस, देर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड.
1: बहुत तेजी से, वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है। किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
0: देखिए, अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं. अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता. फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसल्टिंग. बट टाइम के साथ साथ कुछ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं. आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होगी. सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजुअली द लॉस ऑफ मेमोरी. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स. सेकेंडली, आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं. पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है, बच्चा हु इज अराउंड 15 to 16 years ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था. एक एम्बिशंस होती है, लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे. और अभी नंबर ऑफ केसेस, दोज आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन, वेयर इवन इफ द पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर ऑन दी स्टूडेंट्स, और दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सच प्रेशर,
1: बिल्कुल।
0: दिस इज द मोस्ट कंसर्न.
1: और मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद बच्चा अपना गोल बना के बैठ जाता है, और अगर उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जो जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में।
0: जी,
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं। उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी। बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरमेंट में परसीव करते हैं, वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है, ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू नो यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो यू नो वी हैव अ ब्रांच ऑफ, न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी।
1: ओके,
0: यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली यू नो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की। सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में, वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी यू नो इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर, जैसा मैंने अभी बात करी, कि यूज ऑफ इंटरनेट, है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे, या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान है कि हम हैंडल कैसे करें।
1: राइट,
0: कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ यू नो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में, वो इसी उम्र के दौरान आती है। जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड स्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड स्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना, तो
1: जी
0: अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स।
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी, मेंटल हेल्थ को किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है। सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 ईयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है। रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा नहीं है। मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए। अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है, लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मेंटल हेल्थ पर आएगा ही।
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है, और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए, अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट। हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं थोड़ा सा, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस, तो ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशंस। अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा, वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है। और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है। तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने।
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं, पिछले 10 सालों के अंदर, दस दस भी बहुत ज्यादा है, पिछले 5-6 साल में भी मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सो रहे हैं अब चीजों के. अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नो, जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज, कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं. तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस. तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस. सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर
1: बिल्कुल
0: हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी. तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशंस ले सकते हैं. रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं. तो दिस इज रिलायबल ऑल्सो.
1: राइट और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं।
0: जी
1: राइट कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की, क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं. पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए. लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. तो उस
1: बिल्कुल
0: केस के अंदर इम्पॉर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सके, वो समझ पाए और वो आपको भी गाइड कर पाए या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाए. सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन. जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है. ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल इमोशन है. लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा मैम फैमिली मेंबर्स को भी कि देर इज सम प्रॉब्लम. वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है. इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है.
1: तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है।
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है. जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए. हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: क्योंकि जब
0: जरूरी
1: तक
0: है.
1: वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी। बिल्कुल तो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली
0: देखिए,
1: स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूँ तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं. तो नॉट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हमें टाइम ही नहीं मिलता. तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल. तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा, तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है. तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे. सेकेंडली, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों. जैसा कि आप देखेंगे, एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, है ना. हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है और हर कोई, आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है. तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटिफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा. और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं. अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी. तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है, तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज लें, तो इट विल बी गुड. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज.
1: राइट. सिर्फ आईक्यू ही नहीं बल्कि ईक्यू की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है ईक्यू, दैट इज इमोशनल कोशेंट. तो कैसे ईक्यू को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी, ईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि आईक्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज की, दे यूज़ से कि 95% अगर आ जाता है तो मतलब यू नो दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास. ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का. एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है. दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं तो कहीं भी उसका बेसिस आईक्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका आईक्यू ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन ईक्यू का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना. तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट. सो इट क्लियरली शोज कि ईक्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आईक्यू.
1: लाइफ को मैनेज करने में ईक्यू बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं. और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना. रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता. हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया है, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें. आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है. इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है। तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है। और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें कि कहाँ से वार्निंग साइन आप देखोगे। तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, वॉट एवर इट इज, बट वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट ऑल दी प्रेशर्स वी आर हैविंग इन आवर लाइफ।
1: एग्जैक्टली और वो कहते भी है ना कि अगर हमें कुछ चीज प्यारी लगती है तो उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को 10 से 15 मिनट जरूर दें हर रोज, और वो कुछ करें जो आपको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है। क्या आपका फाइनल मैसेज होगा सभी के लिए, एक अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है इसको समझाने के लिए?
0: जी, मेरा फाइनल मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा मन है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बगीचा है। जैसे हम अपने खूबसूरत से बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगाते हैं, देख करके ना, पसंद करके लगाते हैं, ऐसे ही अपने इस प्यारे से बगीचे में, इस अच्छे से मन में कोई भी थॉट हम कैसे आने दें। तो बहुत जागरूक रहिए, जो भी आप सोचते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ये बहुत ही अच्छे से रखिए। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे।
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए, अपने आसपास अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ना अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स।
1: राइट,
0: बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आप आपके इमोशनल जो स्टेट है उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है। अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है, लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना? कोई खास वाकया इसका कारण बना? कोई खास माहौल? कोई खास प्रेरणा?
0: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था। बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। आई हर्ड दिस लाइन नंबर ऑफ टाइम्स इवन। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं, इट इज स्टिल अ स्टिग्मा। इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम। तो तब मुझे लगा कि यस, देयर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड।
1: राइट, बहुत तेजी से वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है, किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
0: देखिए अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता। फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसल्टिंग। बट टाइम के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होगी। सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजुअली द लॉस ऑफ मेमोरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स। सेकेंड, आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं। पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है बच्चा हु इज अराउंड 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। एक एम्बिशंस होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे। और अभी नंबर ऑफ केसेस दोज आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ such kind of depression where even if the parents are putting pressure, unnecessary pressure on the students, or they themselves are taking such pressure.
1: बिल्कुल,
0: this is the most concern.
1: और मैं मान सकती हूँ कि parents pressurize करते हैं, उसके बाद बच्चा अपना goal बना के बैठ जाता है और अगर उसे success नहीं मिलती है तो वो depression में आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने आपको साबित करने की जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में।
0: जी,
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं। उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरनमेंट में परसीव करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे। है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू नो यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो यू नो वी हैव अ ब्रांच ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी।
1: ओके,
0: यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली यू नो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की। सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में, वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी यू नो इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर, जैसा मैंने अभी बात करी, कि यूज ऑफ इंटरनेट है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे, या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान है कि हम हैंडल कैसे करें।
1: राइट,
0: कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ यू नो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में, वो इसी उम्र के दौरान आती है, जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करे। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड एस्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड एस्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना, अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स।
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी मेंटल हेल्थ को, किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है। सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 इयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 इयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है। रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर यू नो इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए। अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मेंटल हेल्थ पर आएगा ही।
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। एग्जैक्टली। बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए, अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट। हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं थोड़ा सा, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस,
1: राइट,
0: तो ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशंस। अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा? वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है। और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है। तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने।
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, 10 भी बहुत ज्यादा है, पिछले 5-6 साल में भी, मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सो रहे हैं अब चीजों के। अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नो। जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी। तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन ले सकते हैं। रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं, तो दिस इज रिलायबल ऑल्सो।
1: राइट, और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं। राइट, कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की, क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो उस केस के अंदर इम्पॉर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सके, वो समझ पाए और वो आपको भी गाइड कर पाए या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाए। सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन। जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है, ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल इमोशन है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा फैमिली मेंबर्स को भी कि देयर इज सम प्रॉब्लम, वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है। सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है।
1: राइट, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है।
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है। जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए, हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी। बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूं तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं। तो यू डोंट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल। तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा, तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है, तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे। सेकेंडली, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों। जैसा कि आप देखेंगे, एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, है ना, हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है, और हर कोई आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटीफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क
1: बिल्कुल
0: लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा। और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी। तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है, तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज ले, तो इट विल बी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज।
1: राइट सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EQ की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है EQ, दैट इज इमोशनल क्वोशिएंट। तो कैसे EQ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी EQ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि IQ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज की, यूज होते हैं कि 95% अगर आ जाता है तो मतलब यू नो दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास। ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं तो कहीं भी उसका बेसिस IQ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका IQ ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट। सो इट क्लियरली शोज कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ।
1: लाइफ को मैनेज करने में EQ बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना। रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता। हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया है, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें। आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है, वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रांग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है। तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है ना। और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें, कि कहां से वार्निंग साइन आप देखोगे, तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, वॉट एवर इट इज, बट वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट ऑल दी प्रेशर्स वी आर

0: में, सच्चे से मन में कोई भी थॉट हम कैसे आने दें। तो बहुत जागरूक रहिए, जो भी आप सोचते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ये बहुत ही अच्छे से रखिए। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे करेंगे।
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए, अपने आसपास अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है।
1: चलिए डॉक्टर प्रीति जैन, बहुत खूबसूरत बातें आपने शेयर करी हम सभी से, और जहां तक फिजिकल हेल्थ की बात है वो तो हम सोचते ही हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर ये जरूरत सबके सामने बिल्कुल जग जाहिर हुई है कि मेंटल हेल्थ भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हमें एक खुशनुमा जिंदगी बितानी है। आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर प्रीति जैन।
0: यू माई प्लेजर,
1: थैंक यू सो मच।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम?
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
4: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
6: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण, जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, खंबा खनी केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंद्रा आपके साथ मुंबई से। एक बार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी सिनेमा जगत की एक बेहतरीन, दिलकश और खूबसूरत अदाकारा के गीतों से सजी इस महफिल के साथ। आज मैं जिन मोहतरमा के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ, वो अपने सह कलाकारों से लेकर अपने चाहने वालों तक हर किसी की ड्रीम गर्ल है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुंदरता के प्रतीक हेमा मालिनी जी की। इनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। खूबसूरती के साथ ही साथ वो बेहद आला दर्जा के कलाकार भी हैं। आइए सुनाती हूँ उनके व्यक्तित्व को चरितार्थ करता ये सुरीला नगमा ड्रीम गर्ल, जिसे पेश करने आ रहे हैं मुकेश गुलानी और विमल सोनी जी।
1: होठों पे रंगत है

बेहद मधुर प्रस्तुति। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की, परंतु क्या आपको पता है उनका फिल्मी सफर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म होने के कगार पर था। ऐसा आखिर क्या हुआ था, बताऊंगी। फिल्म कुदरत का ये गीत तूने और रंगीले कैसा जादू किया, जिसे फिल्म में गाया था लता जी ने, और यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं जूही सिन्हा और डॉक्टर अभिजीत शाह अपनी खूबसूरत आवाजों में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गीत बंगाली गाने हाय की कोरे माने निया से लिया गया है।

वाह क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी के फिल्मी सफर के शुरुआती दौर की। 1963 में हेमा जी ने दो तमिल फिल्मों में सह नर्तकी का काम किया। उसी तमिल फिल्म के डायरेक्टर सी वी श्रीधर जी ने उन्हें अपनी फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहा, लेकिन बाद में हेमा जी को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि वे बेहद पतली हैं और फिल्मी पर्दे पर नायिका के रूप में अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन हेमा जी निराश नहीं हुई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 1968 में उन्होंने रजत पर्दे पर आगाज किया राज कपूर जी के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से। आइए सुनाती हूँ अगला गीत फिल्म दुल्हन से, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, जिसे पेश कर रही है बेहद ही आला गायिका इंदिरा जी।

बेहतरीन सुरीली पेशकश। दोस्तों अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म कुदरत से। वैसे क्या आपको पता है इस फिल्म का पहले नाम रखा गया था प्यासा। इस फिल्म का एक बेहद ही चर्चित गीत पेश खिदमत है, हमें तुमसे प्यार कितना, और पेश करने आमंत्रित कर रही हूँ श्रुति और अश्वथ राव जी को।

बेहद खूबसूरत गायकी। दोस्तों, हेमा मालिनी जी द्वारा अभिनीत फिल्म किनारा 1977 में प्रदर्शित हुई। किनारा भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्माण एवं निर्देशन मेघना मूवीज के बैनर तले गुलजार साहब ने किया। आर डी बर्मन के जादुई संगीत से सजी ये फिल्म मध्य प्रदेश के शहर मांडू में एक प्राचीन से किले में फिल्माई गई थी। सुनाती हूँ इसी फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत नाम गुम जाएगा, जिसे यहाँ अपने खूबसूरत स्वरों से सजाया है दीप शिखा जी और अनिंदु घोष जी ने।

बहुत खूब। दोस्तों, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के प्यार के किस्से फिल्मी गलियारों में बेहद मशहूर थे। पर क्या आपको पता है, दो ऐसे कलाकार भी थे जो हमारी प्यारी ड्रीम गर्ल की खूबसूरती के कायल थे। कौन थे वो दो कलाकार, बताऊंगी। सत्य पे सत्ता के इस खूबसूरत गीत के बाद जिसे फिल्म में गाया है आवाज के शहंशाह किशोर कुमार जी ने, और यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना और संजीव कुमार जी।

सुरीली प्रस्तुति। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी की खूबसूरती के मुरीद नायकों की, वो थे जितेंद्र और संजीव कुमार जी। दोनों ही हेमा जी की अदाओं के कायल हुआ करते थे। जी हाँ, और सूत्रों की माने तो दोनों ने ही हेमा जी को शादी का प्रस्ताव भी दिया था। जितेंद्र ने तो हेमा जी को सगाई की अंगूठी तक पहना दी थी, पर अंदाज तो हमारे पंजाबी मुंडे धर्मेंद्र पाजी का था, जिस पर हमारी तमिलियन हेमा जी फिदा हो गई। आइए सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता का ही एक और बेहतरीन नगमा मुकेश चोपड़ा जी और गायत्री जगन्नाथ जी की आवाजों में।

0: चैन कुली की मेन कुली, मेन कुली की चैन।
1: बहुत खूब दोस्तों, अगली पायदान का जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो फिल्म धर्मात्मा से है। ये फिल्म अंग्रेजी फिल्म गॉडफादर का हिंदी रिमेक है और सूत्रों की माने तो धर्मात्मा फिल्म का टाइटल रोल मटका किंग रतन खत्री से प्रेरित था, जिसे फिल्म में प्रेमनाथ साहब ने अभिनीत किया था। सुनते हैं यही कर्णप्रिय गीत क्या खूब लगती हो, विद्या विकास और वरुण पारिक की सुमधुर आवाजों में।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आपकी सखी तनुजा मुंद्रा। आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड के दिलकश और बेहतरीन अदाकारा हेमा मालिनी जी के कुछ बेहद चर्चित गीत और उनकी जीवन के कुछ खट्टे मिट्टे किस्से भी। अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म दर्द से, जिसे संगीत से सवारा है खयाम साहब ने, फिल्म में गाया है लता जी ने, और यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं MD त्यागी और संगीता जी अपनी मीठी आवाजों में। गीत के बोल, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

सुमधुर प्रस्तुति। दोस्तों, एक फिल्म आई थी सीता और गीता, जिसमें हेमा जी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म ने हेमा जी के फिल्मी सफर को एक बेहतरीन आयाम भी दिए। इस फिल्म का संगीत बेहद कर्णप्रिय रहा और क्यों न हो भला, इसमें आर डी बर्मन, आशा ताई और किशोर कुमार, ये तीनों ही संगीत के जादूगर जो थे। आइए सुनाती हूँ आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हवा के साथ साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं विश्वजीत और सिमंतिका।

0: आओ झूमेगा समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया। आभार है जयपुर रेडियो का, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मंच उपलब्ध कराया। इन चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगी। आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, जो कभी ना भूले ऐसी मुलाकात ना हो पाई। फिक्र ना करो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिर हाजिर हो जाऊंगी अगले सप्ताह एक और कार्यक्रम के साथ। तो चलिए इजाजत दीजिए अपनी सखी तनुजा मुंद्रा को, फिर आ जाऊंगी अगले सप्ताह कुछ खट्टे मीठे किस्से कहानी और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। और
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।

0: अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा?
0: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
0: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर
0: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
0: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमें गायन ग्रुप के द्वारा आयोजित इस संगीत में शाम में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम का थीम एक ऐसे स्पेशल कलाकार हैं जिन्होंने अपनी म्यूजिक की जर्नी 1974 में हिट फिल्म खुआरा बाप के म्यूजिक से शुरू की थी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 48 इयर्स नाउ और संगीत से जुड़े रहने का इनका सफर अभी भी बेहद हसीन रूप से चल रहा है। और क्यों ना हो, इनकी फैमिली इतनी म्यूजिकल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राजेश रोशन जी की, जिनके पिता श्री रोशन लाल जी फिल्म म्यूजिक कंपोजर थे और माता ईरा रोशन वॉज अ बंगाली सिंगर। तो चलो शुरू करें अंताक्षरी, मेरा मतलब आज का राजेश रोशन स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ जयपुर रेडियो पर। राजेश जी फिल्म जूली को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इसका टाइटल ट्रैक रोमांस और प्यार में इतना डूबा हुआ था कि इट रिप्रेजेंटेड द यर्निंग्स ऑफ टू पीपल इन लव। लता जी सिंपली स्वेप्ट इन टू द सॉन्ग एज इफ शी ओन्ड इट। It became the anthem of the youth in 1974. And before Julie, Asha Bhosle was the go-to singer for all seductive songs. But Julie ne shrotaon ka Lata ji ki vocal personality ko perceive karne ka nazariya hi badal diya. Chaliye sunte hain ye super duper hit song, Bhul Gaya Sab Kuch, Anuja aur Dushyant se.

वाह अनुजा एंड दुष्यंत, माहौल बना दिया आपने एकदम मस्त वाला। नेक्स्ट सॉन्ग ब्रॉट ऑल द टाइटन्स ऑफ म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री टुगेदर, लता जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, रेखा एंड ऑफ कोर्स राजेश रोशन। उफ क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। अमित जी स्पेशली टुक आउट टाइम टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग, इतना दिल के करीब था ये सॉन्ग उनके। राजेश जी ने लता जी और किशोर दा को बस एक ही बात बोली, ऐसे गाइए जैसे वह एक वैली में गांव के एक युगल जोड़े हैं जो पहाड़ों में गा रहे हैं। बस फिर तो क्या था, रिजल्ट हम सबके सामने है जो हमने हजारों लाखों बार ऑलरेडी सुना है। रेखा और अमिताभ से बेहतर कौन स्क्रीन पर जस्टिस कर पाता है इसे। चलिए सुनते हैं अनदर सुपरहिट सॉन्ग फ्रॉम मिस्टर नटवरलाल, जो सुनाने आ रहे हैं हमें हमारे प्यारे दोस्त रेज और डॉली।

क्या बात है रेज एंड डॉली, इतनी सुंदर गायकी को कैसे दिल ना दे। बोलो दोस्तों, अगला गीत एकदम अलग जॉनर का है। बासु चैटर्जी वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म स्वामी, जो कि 1977 में रिलीज हुई। बासुदा ने राजेश रोशन को गायक चुनने का पूरा पूरा चॉइस दिया। येशुदास जी को चुना गया फ्रॉम डाउन साउथ। इनिशियली बासुदा वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड कॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग रफी साहब टू सिंग दिस वन, बट एक बार फाइनल सॉन्ग सुना, रेस्ट वॉज हिस्ट्री। येशुदास जी का गाया हुआ ये आउटस्टैंडिंग गीत का करूं सजनी सुना रहे हैं हमें आज जगदीश जी, आइए सुनते हैं।

जगदीश जी कमाल ही हो आप। यू नो दोस्तों, जगदीश जी नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग, दैट्स हाउ मच ही लव सिंगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी के परिवार में कई फिल्मी हस्तियां हैं। उनके भाई राकेश रोशन अपने टाइम के पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं और अब तो डायरेक्शन भी करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो राजेश जी इज नेफ्यू ऋतिक रोशन। हिज फर्स्ट फिल्म वॉज वेरी स्पेशल टू हिम, कहो ना प्यार है। टाइटल सॉन्ग वॉज मेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड बिलीव इट और नॉट, ऑर्केस्ट्रा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। और क्या धूम मचाई है इस फिल्म के म्यूजिक ने। और ऋतिक रोशन बिकेम द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन, है ना। कन्फेशन, आई हैड अ स्टार क्रश ऑन हिम टू। इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट थे। आपको आज हम टाइटल ट्रैक सुना रहे हैं मानवेंद्र और मेरी यानी प्रियंका की आवाज में, जिसका ओरिजिनल प्लेबैक दिया है उदित नारायण एंड अलका याग्निक ने। लेट्स डू दिस देवा, होप यू लाइक इट।

वाह, एकदम बीच छोर पे ले जाता है ना ये सॉन्ग। मजा आ गया। राजेश रोशन ने लता जी के साथ बहुत काम किया। लता जी उनकी और हम सबकी भी फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। अगला गीत आओ मनाएं जश्ने मोहब्बत सुनते हैं प्रेरणा और बिमल से, जो लता जी और किशोर कुमार ने गाया है। मूवी दूसरा आदमी और फिल्माया गया था ऋषि कपूर और नीतू सिंह पे।

क्या खूब गाया प्रेरणा और बिमल, छा गए आप लोग। दोस्तों अगला गीत मेरा बहुत ही फेवरेट है। इस गीत के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में आई लव यू बोलना सीख गए। आपने गेस कर ही लिया होगा, फिल्म खुद्दार से अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग। हमें सुना रहे हैं रति और मंदार। ओरिजिनल प्लेबैक था किशोर कुमार और लता जी का। Let's hear it out.

0: वाह क्या पेपर नंबर है ना, मस्ती भरा, फुल ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गीत एक कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग है और इसकी सिंप्लिसिटी ही इस मूवी और इसके म्यूजिक की यूएसपी है। मूवी है बातों बातों में, सॉन्ग सुनिए कहिए। आर्टिस्ट किशोर कुमार आशा भोसले, 1979 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और इसको टीना मुनीम और अमोल पालेकर पर फिल्माया गया था। आज हमको सुना रहे हैं गगन और सुजा, चलिए सुनते हैं।
1: सुनिए
2: कहीं कहीं
1: सुनिए सुनिए

वाह, अच्छे से सुना ना आपने ये सॉन्ग। दोस्तों आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं आओ झूमे गाएं के सुरीले सिंगर्स को जयपुर रेडियो पर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। नेक्स्ट पेशकश है इनकार मूवी का गीत छोड़ो ये निगाहों का इशारा, जो कि रिलीज हुई थी 1977 में। द सॉन्ग इज संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले, और म्यूजिक ऑफ कोर्स राजेश रोशन जी ने दिया है। हमें आज गायत्री और मुकेश जी सुना रहे हैं। लेट्स हियर देम आउट।

वाह वाह दोस्तों, एक बार दाद देना चाहूंगी आओ झूमे गाय के सुरीले सिंगर्स को जो आपके सामने ये अनमोल नगमे पेश कर रहे हैं। मूविंग ऑन, यू विल बी शॉक टू नो राजेश जी प्लेड द डफली फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन द सॉन्ग झूठ बोले कौआ काटे फ्रॉम द मूवी बॉबी, जो कि लता जी ने गाया था और तभी से लता जी को राजेश रोशन पसंद थे। अगला गीत हमें प्रेरणा और संजय सुना रहे हैं एक रास्ता है जिंदगी, जो कि वंस अगेन लता जी का ही गाया हुआ है फिल्म काला पत्थर से, और लता जी का साथ निभाया था इसमें किशोर कुमार ने। लेट्स हियर इट।

1977 में रिलीज हुई दूसरा आदमी का यह गीत क्या मौसम है, प्रेम में आदमी को खो जाने को कहता है। आदमी के इस तरह खोने से ही उसे जिंदगी का मतलब समझ में आने लगता है। What a beautiful thought, है ना? राजेश रोशन के मधुर संगीत और बजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाजें दी। गीत के बोल दरअसल प्रेम को एकांत का सबसे सुनहरा पल कहते हैं। गीत के बोल तथा संगीत की वजह से ही ये गीत इतना पॉपुलर है और काफी लोगों को बहुत पसंद है। और आज हमें ये सुना रहे हैं प्रशांत एंड मनीषा। लेट्स हियर देम आउट।

0: यह पेशकश पसंद आई होगी। आवजू में गाएं ग्रुप की तरफ से आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके, गुड नाइट।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे सितारा से जो कि अपनी बेहतरीन गायकी और जिंदा दिल स्वभाव से हर किसी के दिल को छू लेते हैं। ये हैं ट्विन सिटी अंबाला से किशोर सुशील जी। स्टूडियो में स्वागत है आपका किशोर जी।
2: सपना जी, सबसे पहले तो मैं जयपुर रेडियो और आपका और जगदीश जी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना गायन प्रदर्शन यहाँ कर सकूं।
1: किशोर जी, ये हमारी खुश नसीबी है कि आपके जैसे कलाकार यहाँ पर आए हैं। तो अम्बाला
2: भी खुश नसीबी है
1: जी। अम्बाला शहर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किशोर जी। यहाँ न सिर्फ एक एयरबेस है बल्कि साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ बनते हैं। लेकिन आज हम आपके नजरिए से आपके शहर को देखना चाहेंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक किशोर जी आखिर हैं कौन।
2: सपना जी, जहाँ तक शहर का सवाल है तो मेरा बहुत छोटा सा शहर है, हरियाणा में पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता हुआ अम्बाला शहर
1: जी,
2: जिसमें एयरबेस भी है, मिलिट्री एरिया भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ तक बात की जाती है, पहले ये सारा है अम्बाला कैंट में। लेकिन मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि सिटी ऑफ मिक्सर एंड ग्राइंडर्स का कभी था।
1: अच्छा,
2: इसके नाम से ये जाना जाता था। और जहाँ तक बात आप मेरी कर रहे हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
1: अच्छा,
2: और संगीत मेरा बचपन से मेरा शौक रहा है।
1: क्या बात है। अच्छा, तो अम्बाला को ट्विन सिटी कहा जाता है क्योंकि अम्बाला शहर भी है और अम्बाला छावनी भी। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जो आपने अपना प्रोफेशन बताया है उसमें ट्रैवलिंग काफी रहती होगी, तो आप दोनों ट्विन सिटीज में किसको अपने दिल के करीब ज्यादा मानते हैं? हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि आप अम्बाला शहर से हैं तो इसलिए अम्बाला शहर आपके दिल के करीब है, दोनों में से कौन सा ज्यादा खास है?
2: जी, मेरे लिए वैसे तो अम्बाला कैंट ज्यादा खास है। मैं बिलोंग चाहे मैं अम्बाला सिटी से करता हूँ लेकिन वो वेल प्लान्ड है।
1: अच्छा,
2: अब थोड़ा चेंज हो गया है कि ये अम्बाला सिटी में जो हुड्डा के जो सेक्टर्स बन गए हैं वो भी वेल प्लान्ड हैं, लेकिन फ्रॉम माय चाइल्डहुड जब से मैं अम्बाला में आया हूँ तब से मुझे अम्बाला कैंट ही ज्यादा पसंद रहा है।
1: जी, अम्बाला के छावनी से एक मेरी भी बड़ी प्यारी सी याद जुड़ी हुई है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो कुरुक्षेत्र में NIT में मैं पढ़ी हुई हूँ, तो हमारी जो ट्रेन होती थी अक्सर वहां पे रुकती थी और वहां पर या तो हम ब्रेड पकौड़े या चने, उनके पूरी चने मिलते थे जिसका स्वाद अभी तक हमारी जुबान पे बसा हुआ है।
2: ये सपना जी वो रहेगा, बरकरार रहेगा क्योंकि उनका भी एक अपना एक जैसे कहा जाए कि स्टाइल होता है
1: जी,
2: उनका
1: जी,
2: भी
1: जी,
2: अपना एक अंदाज है बनाने का उसको, जिसके लिए कि आप लोग अपनी उंगलियां भी चाट लें।
1: बिल्कुल सही कहा किशोर जी,
2: जी।
1: इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: किशोर जी आगे चलते हैं, तो हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी। जैसे आपका काम तो कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो कंस्ट्रक्शन और संगीत का देखा जाए तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आपस में, पर आपने इतनी अच्छी जो आपकी गायकी है, क्या आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कभी?
1: सपना जी देखिए, जहाँ तक दिलचस्पी की बात है तो दिलचस्पी तो मुझे बचपन से ही थी, और मेरी मदर बताया करती हैं कि मेरा पहला गाना ही था कि जूली आई लव यू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: और इसके बाद मेरे जब मैंने अपनी स्कूलिंग में अपने आप ये मानिए कि नाइन्थ या एट्थ क्लास में था, तो मुझे रिदम की कोई नॉलेज नहीं थी कि रिदम क्या होती है।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ पे हमारे अम्बाला सिटी में एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे, जिनको के हर स्टेज पे मतलब जिनका के बहुत जम के स्वागत होता था, और बहुत अच्छी गायकी भी खैर वो करते
0: जी,
1: थे
0: जी।
1: अब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार मुझे सुना और मैंने जब गाना स्टार्ट किया तो वहां रिदमिस्ट भी थे, तो उन्होंने रिदम बजाना शुरू किया। मुझे तो मैंने जैसे एज आई टोल्ड यू के मुझे तो रिदम की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक गीत गाया था मेरे लिए जो कि मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, और डिस्करेज मतलब किया गया था मुझे बहुत बुरी तरह से।
0: अच्छा।
1: कि गाना भी नहीं आता बजाना भी नहीं आता।
0: ओहो, अच्छा।
1: और मैं अननोइंगली, मुझे पता ही नहीं था, वो गाना नया नया अभी लॉन्च हुआ था और रिलीज हुआ था
0: जी।
1: तो मुझे उस गाने के बारे में भी इतना नहीं पता था, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि तेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे और तुझे रिदम में आना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिदम की प्रैक्टिस शुरू की, और एक दिन वो भी आया कि फिर वो बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड भी मुझे मिला।
0: अरे क्या बात।
1: उस दिन से मतलब मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, तो आज मैं इतना अच्छा गा पा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: जो
0: आपके आलोचक थे सबसे पहले, वही आपकी प्रेरणा बन गए कि आप संगीत में इतना आगे निकल गए। तो यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि किशोर सुशील जी इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने मंझे हुए गायक हैं कि एक एक सुर की गहराई में वो उतर जाते हैं। अभी आप हमारे श्रोतागण इनकी गीत सुन ही रहे हैं, तो अपने आप ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो स्तर है गायकी का वो कितना ऊंचा है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने कभी कभी इनके साथ ड्यूएट्स गाए हुए हैं, युगल गीत गाए हैं, और इनसे मुझे बहुत सीखने को भी मिला है।
1: तो सपना जी, आप ये आपकी अपनी रुचि थी, ये आपके अपने एफर्ट्स थे जो आप आज एक मानी हुई कलाकारों में मतलब आपकी गिनती
0: है। तो जी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे शब्द मेरे लिए यूज कर रहे हैं। तो किशोर जी, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस तो ऑब्वियसली बहुत जगह दे चुके होंगे अब तक, तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप कहाँ कहाँ दे चुके हैं और सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया?
1: जी देखिए, जहाँ तक तो मेरा सोलो परफॉर्मेंसेस का दौर चला, जब मैं स्कूलिंग में था तो स्कूल में भी प्रोग्राम हुए, उसके बाद कॉलेज में भी हुए, फिर उसके बाद हम कई बार जैसे कहीं प्रोग्राम होता था बहुत बड़ी स्टेज पे, तो मैंने चंडीगढ़ में भी गाया है, शिमला में भी गाया है, जम्मू में भी गाया है।
0: जी जी।
1: तो उसके बाद म्यूल का दौर आया
0: जी।
1: मैंने आपको बताया कि मैं कोई ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं,
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: कुछ भी हूँ बाथरूम में सिंगिंग सीखी, और उस म्यूल तक का सफर ऐसे ही रहा
0: जी। लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज की सौगात तो आपको भगवान से मिली ही है
1: जी। ये माँ सरस्वती की देन है, इसमें मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ
0: जी।
1: तो ये आपका बड़प्पन है जो आप इतनी बात मेरे लिए बोलते हैं और मानते हैं इस चीज को
0: जी।
1: तो सपना जी, ये बहुत से तो शोज ऐसे भी हैं जो मुझे याद नहीं है, मेरे फ्रेंड्स जब मुझे याद कराते हैं तो मुझे याद आता है, बहुत जगह की, और सबसे ज्यादा मजा मुझे आया उज्जैन में।
0: अच्छा।
1: जब स्म्यूल का दौर था
0: जी,
1: वो हमारी बहुत अच्छी मीट थी, और बहुत हर चीज मतलब आप कहें कि पूरी व्यवस्था से किया हुआ काम था हर चीज का।
0: अच्छा।
1: साउंड भी बहुत अच्छी थी, वो कीनल जी ने और मैंने मिलके किया था
0: जी, कीनल त्रिपाठी जी।
1: जी कीनल त्रिपाठी जी,
0: जी जी।
1: तो सबसे ज्यादा मुझे उस मीट में सबसे ज्यादा मजा आया।
0: क्या बात है, बहुत ही दिलचस्प रह रही हैं आपकी बातें, और इसी के साथ हम एक छोटा सा विराम लेंगे और आपका अगला गीत सुनाते हैं
1: जी। बहुत शुक्रिया।

0: किशोर जी, आप एक बहुत ही सफल प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी आपने असिस्ट किया है। आप, जैसे कि आपने खुद ही बताया, आप कई शहरों में अपना एक सिंगिंग में नाम बना चुके हैं, और जब परफॉर्मेंसेस देते हैं, खैर मैं तो इसकी गवाह हूँ, तो लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने परिवार और बिजनेस की या प्रोफेशन की जिम्मेदारियों के साथ आप संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: सपना जी, ये बनाने से नहीं बनता, ये अपनी, देखिए मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी को सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। और मैं सोचता हूँ कि अपने लिए हर इंसान को एक दो घंटा निकालना चाहिए, जो कि शाम को मेरा निकलता था।
0: बिल्कुल सही।
1: और अपने सारे जितना भी मेरे प्रोफेशनली जो मेरे पे जिम्मेदारियां थी, वो मैं शाम को 6 या 7 बजे तक उनको निपटाने की कोशिश करता था। और उसके बाद मतलब मेरा जो टाइम रहता था वो 8 to 10 का ही रहता था हमेशा। इसीलिए आपने शायद स्मूल पे भी देखा होगा, जो भी मेरे कोलैब्स वगैरह इनवाइट्स वगैरह आते थे वो रात को 8 और 10 के बीच में आते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस का टाइम भी वही था मेरा, और मेरा अपना अपने लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वो टाइम था।
0: जी जी, बिल्कुल सही। तो क्या आपके परिवार में किसी और को भी ये रुचि है संगीत की?
1: जी देखिए, वैसे तो ये जो संगीत की रुचि जो आप मुझे कह रही हैं, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से सौगात में मिली है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी मोहम्मद रफी साहब को बहुत अच्छा गाया करते थे।
0: क्या बात है, वाह।
1: और मेरी मदर भी भजन बहुत अच्छे गाया करती थी, तो उनके साथ भजन भी मैंने कई बार गाए हैं।
0: जी जी जी जी। तो आपके बच्चों में आई है ये संगीत?
1: मेरे बच्चों में मेरे सबसे छोटी बिटिया और बेटे को ही ज्यादा शौक है
0: जी,
1: बाकी किसी को नहीं है। मेरी वाइफ तो बिल्कुल इसके हिंदी सॉन्ग के तो बिल्कुल आप मानिए कि वो
0: उनको शौक नहीं है
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाबी हैं। अच्छा, तो उनको पंजाबी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी कि आपके परिवार में अभी जैसे आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, और आपके बच्चे 3 जनरेशन में ये जीन्स में आ गई है संगीत की बात, ठीक है ना?
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। यहीं पर हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: किशोर जी कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो यहाँ जहाँ पर भी आप अपने आप को इस वक्त पा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी का और संगीत का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा किसे देना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ सपना जी,
0: जी
1: तो मैं अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत का, जो मुझे ये रास्ता जिन्होंने दिखाया, वो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं।
0: जी जी,
1: ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: अब अगर हम संगीत की बात करें
0: जी,
1: तो संगीत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं जितना भी गा पाया, जितना भी मैंने जितना भी सीखा, जितना भी मैं कर पाया, वो सारा मैं उन्हीं सिंगर के मतलब वो करना चाहता हूँ, उन्हीं को श्रेय देना चाहता हूँ मैं ये सारा,
0: जिन्होंने आपकी आलोचना की,
1: जिन्होंने मुझे बहुत बैडली डिस्करेज किया था कि गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, तो ये मैं श्रेय उन्हीं को दूंगा। संगीत के मामले में हमेशा मेरा श्रेय उन्हीं को रहेगा।
0: जी, तो हम वो उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पर भी हों, वो शख्सियत इस वक्त ये प्रोग्राम जरूर सुन रहे हों, ताकि वो खुद ही जान सकें कि उनकी एक छोटी सी बात।
1: एक दिलचस्प बात और भी, सॉरी मैं आपको
0: नहीं, कोई बात नहीं, बताइए।
1: वो समय भी आया कि जब उन्होंने आके मुझे गले लगाया और बोला कि मुझसे एक बार सॉरी फील किया कि मेरे वो जो अल्फाज थे वो गलत थे,
0: इससे बड़ी बात
1: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
0: जी,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए कोई भी ट्रॉफी, कोई भी अचीवमेंट मेरे लिए इससे बड़ी नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
1: जिसने मुझे डिस्करेज किया,
0: इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही और कोई नहीं।
1: कंपटीशन में गा के मैंने बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड जीता।
0: क्या बात है, क्या।
1: और फिर उनका गले लगाना, सोने पे सुहागे का काम किया उसने।
0: वाह, तो किस गीत पर आपको अवार्ड मिला था किशोर जी?
1: सपना जी, ये था मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। किशोर जी का बहुत ही लोकप्रिय गीत है और इसे गाना कोई आसान नहीं, क्योंकि इस गाने में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि किशोर जी का
1: जी, वो टाइम था जब मैं सिर्फ 22 साल का था।
0: अरे वाह,
1: आज के टाइम में अगर आप मुझे कहें कि मैं यूडलिंग कर पाऊंगा तो वो मेरे आप बस में नहीं है, क्योंकि किशोर जी भी, किशोरदा हमारे जो थे, वो भी 50 के बाद यूडलिंग नहीं कर पाए थे।
0: अच्छा,
1: तो नाउ आई
0: नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा,
1: नाउ आई एम आल्सो इन 50।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत मजेदार रही
1: आपके साथ। सपना जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जयपुर रेडियो और जगदीश अरोड़ा जी, और आपका तहे दिल से
0: धन्यवाद।
1: मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे आपने ये इतना माना और मुझे ये मौका दिया कि मैं जयपुर रेडियो के माध्यम से अपने गाने सुना पाऊँ।
0: आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कहते जाइए।
1: देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे जो भी हमारे जयपुर रेडियो के श्रोता हैं उन सबका आभार धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो अपने बहुत ही अपने बिजी टाइम में से अपना टाइम निकाल के जो सुनते हैं।
0: जी जी।
1: और श्रोताओं में से मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे जो स्म्यूल के सिंगर्स भी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: स्पेशली उन सिंगर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए स्म्यूल हमारा स्ट्रेस बस्टर है।
0: जी।
1: हम अपना गाना गा के यहाँ पे अपनी जो दिन भर की टेंशन है, दिन भर का जो भी हमारा ऊंच नीच हुआ हमारे साथ, उसमें हम निपट के उससे हम ये अपना टेंशन दूर करने के लिए हम उसको अपना स्म्यूल पे आए।
0: जी बिल्कुल।
1: अब कई सिंगर्स का क्या रहता है कि वो अपने इनवाइट्स खोलते हैं, किसी को रिस्पांस नहीं देते।
0: जी।
1: ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खुशी बांटेंगे तो खुशी लौट के भी आएगी आपके पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो मैं हर सिंगर से यही कहूंगा कि आप अपने ज्वाइनर्स को जरूर सपोर्ट करें, डिस्करेज ना करें। किसी ने अगर बुरा भी गाया तो उसको भी दो शब्द उसके लिए एनकरेजमेंट के लिए बोल दिए कीजिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और आपस में प्रेम प्यार वाली भावना मन में रख के कमेंट करें उनको।
0: जी बिल्कुल, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए। अगर जी, कोई जी, अपने
1: मेरे शब्द आपने कह दिए मेरे शब्द,
0: कोई अपनी व्यस्त जिंदगी में से दो मिनट भी निकाल के अगर हमारे साथ गाना गाने आ रही है तो खैर, पहली बात तो ये कि हम ये बोलने वाले या ये टोहने वाले, मापदंड करने वाले कोई भी नहीं है कि कोई अच्छा गा रहा है या बुरा, क्योंकि हम उस स्तर पर हम नहीं गाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई हमें ज्वाइन कर रहा है तो जरूर उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने सपना जी,
0: बहुत खूब। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात अम्बाला के किशोर सुशील जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मनपसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Oh no, no need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं एक बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड गायिका सोनिका को, जो कि शहर अंबाला की शान है। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सपना, एंड थैंक यू सभी श्रोताओं गण को मेरा नमस्ते, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वाले बेताब हैं ये जानने के लिए कि आज की जो हमारी जगमगाता सितारा हैं, उनकी पहचान क्या है और आपके शहर अंबाला की खासियत क्या है।
2: मेरी पहचान छोटी सी पहचान है सोनिका। आई एम सोनिका
1: जी,
2: और बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर। कानपुर शहर से हूँ और मेरी शादी अंबाला में हुई है
1: जी,
2: और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। दो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं।
1: तो आपकी जो सारी परवरिश हुई है वो कानपुर की ही हुई है?
2: सारी परवरिश कानपुर की हुई है, मेरे पेरेंट्स कानपुर से ही हैं।
1: अच्छा अच्छा, तभी आपकी हिंदी जो है इतनी अच्छी है,
2: शुद्ध है।
1: जी, तो खैर ये तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर एक लड़की को अपना मायका बहुत ही पसंद होता है, पर आपके लिए इन दोनों शहरों में से आपके दिल के कौन से ज्यादा करीब है, अम्बाला या कानपुर?
2: एक्चुअली मैं बोलूँ तो अंबाला ज्यादा करीब है, कानपुर पसंद है। वहाँ पे मैंने बचपन बिताया है, लेकिन वो क्राउडेड ज्यादा लगता है मुझे।
1: अच्छा,
2: और मुझे
1: अच्छा।
2: पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है, तो अंबाला मुझे बहुत छोटा सा और पीसफुल शहर लगता है
1: जी।
2: तो इसलिए मुझे अंबाला ज्यादा पसंद है कानपुर से ज्यादा।
1: वैसे आपने जो ये शब्द यूज किया है छोटा, कहने को तो शायद ये छोटा हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हरियाणा के लिए भी और भारत के लिए भी। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि आप अंबाला को किस तरह देखती हैं।
2: अंबाला हिस्टोरिकल अगर आप देखा जाए तो हिस्टोरिकल में भी, मतलब कि जब जिस टाइम पर ब्रिटिश और मुगल ने यहाँ पर रूल किया था उस टाइम से है
1: जी।
2: तो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ये उस टाइम का
1: जी।
2: और अंबाला फोर्ट है यहाँ पे
1: जी, जी।
2: जो 14th सेंचुरी से है।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: हाँ जी, और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, इंक्लूडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब लोग बहुत अच्छी हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: इकोनॉमिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं।
1: अच्छा,
2: कपड़ा यहाँ बहुत फेमस है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि खासकर पंजाब के लोग, अगर किसी के घर में कोई शादी आती है तो वो पंजाब को छोड़ के सीधा रवाना हो जाते हैं अंबाला की तरफ शादी की शॉपिंग के लिए।
2: राइट। यहाँ के कुछ एक दो फेमस शॉप्स हैं।
1: अच्छा,
2: तो जहाँ पर लोग स्पेशल शॉपिंग करने आते हैं।
1: क्या बात है। तो सोनिका, इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: सोनिका, अपनी बातों का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संगीत के बारे में कुछ बताइए कि आपकी रुचि क्या संगीत में शुरू से ही थी या इसके अलावा भी कुछ शौक रखती हैं आप?
1: हाँ, मैं शौक रखती हूँ, बहुत सारे शौक रखती हूँ। संगीत में मेरी रुचि सच में स्टार्टिंग से ही थी, और एक्चुअली मैं सिंगिंग से ज्यादा डांस करती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो डांस का ज्यादा शौक था, लेकिन हाँ, सिंगिंग भी साथ साथ चलती रहती थी। मुझे म्यूजिक सुनने का बचपन से ही बहुत शौक था
0: जी।
1: बट हाँ, कभी कोई स्टेज प्रोग्राम तो नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी से मुझे ये गिफ्ट में मिला, आवाज मिली है।
0: अच्छा, वो गाती हैं आपकी मदर?
1: थी।
0: ओहो, अच्छा।
1: बहुत अच्छा गाती थी
0: जी।
1: और मींस 80 इयर्स में वो गए हैं, तो 80 इयर्स में भी उनकी वॉइस बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बच्चा गा रहा हो।
0: अरे वाह, मतलब क्रिस्टल क्लियर वॉइस थी उनकी।
1: हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल
0: क्लियर वॉइस में ही मिली है ये सौगात।
1: हाँ, ये मुझे जीन्स में मिली है
0: जी।
1: बिल्कुल, तो ये मेरी माँ का गिफ्ट है मेरे लिए।
0: तो आपके पिताजी को भी शौक रहा है संगीत?
1: नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल सोशल वर्कर थे।
0: अच्छा।
1: वो बीजेपी की साइड थे और बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं मेरे पापा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो आपके हस्बैंड को है शौक संगीत का?
1: सुनते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन हाँ, मुझे मना नहीं करते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो स्पेशली मेरे से बिना पूछे अनाउंस कराते हैं कि सोनिका गाएगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज स्पाउसेस में बड़ा कम होता है कि एक दूसरे को इतना प्रोत्साहन मिले। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं, और हमारी यही भगवान के आगे भी यही प्रेयर रहेगी कि इसी तरह आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो सोनिका, आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंसेज शादी के बाद दिए हैं?
1: मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेज ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, 2-3 मीट्स में, ऐसे गेट टुगेदर में मैंने 1-2 बार गाया है
0: जी। जी, जी.
1: स्टेज पे।
0: तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके दिल को छू गया हो, या कोई हंसी वाली बात हुई हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं?
1: ऐसा तो कुछ खास मुझे याद नहीं है।
0: तो यहाँ मैं अपने श्रोताओं को सोनिका की तरफ से इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि मैंने इनकी मीट का एक वीडियो देखा था, जहाँ पर ये अपनी ऑडियंस से पूछ रही थी कि माइक कैसे पकड़ना है, कम से कम मुझे ये बता दो।
1: यस यस यस, मुझे सच में माइक पकड़ना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी 1-2 बार ही मीट्स में मैं गई हूँ और मैंने वहाँ पे स्टेज में परफॉर्म किया है, तो मैं जब भी माइक पकड़ती हूँ तो वो वॉइस सबके तक जाती ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माइक पकड़ना सिखा दो।
0: वैसे सोनिका, आप इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इसमें माइक की गलती है कि वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, आपकी गलती नहीं है।
1: ठीक है।
0: चलिए, इसके साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं।

0: सोनिका, आप स्म्यूल के जगत में एक जाना माना नाम है। वर्सेटिलिटी में आपका कोई जवाब ही नहीं। अलग अलग जॉनर्स के गीत आप बड़ी कुशलता से गा लेती हैं और ये मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं अक्सर आपको सुनती रहती हूँ।
1: थैंक यू सो मच।
0: कई ग्रुप्स की भी आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत के परिवार का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: बहुत सिंपल है
0: जी।
1: जब पहले घर का काम देखती हूँ
0: जी,
1: जो मेरी प्रायोरिटी है,
0: हाँ,
1: सुबह से उठकर, तो उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो वो टाइम मैं खुद को देती हूँ, वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी देता है, और म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है
0: जी। हम सबकी रूह की खुराक है संगीत, और इसके बगैर तो खैर हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात बोली कि प्रायोरिटी तो हमेशा हर किसी की पहले परिवार ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, नहीं तो
1: जिंदगी
0: बड़ी नीरस हो जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने शौक की जिंदगी कुछ टाइम अपने लिए हमें देना है, देना है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनिका, आप संगीत के साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अब अपने जीवन में कदम बढ़ाया है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसे उस तरफ इंटरेस्ट बना।
1: स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान बनकर रहना है
0: जी,
1: जिसमें लाइक मैं समझती हूँ कि नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट
0: जी,
1: नो जेलसी, नो एंगर, इन शॉर्ट कि मुंह से कुछ भी निकालने से पहले हमें एक सेकंड का पॉज लो, फिर बस मुंह से निकाला हुआ ये शब्द सोच लो कि सामने वाले को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहा।
0: और कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसे तीर की तरह होता है जो वापस नहीं आप कभी ले पाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: जी जी जी। एंगर की आपने बात की, तो एंगर को तो खैर काबू में रखना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त और इतनी तेज हो गई है। इवन अगर हम रोड पर भी जा रहे हो, कोई तेजी से हमें गलत तरीके से ओवरटेक कर जाए तो भी गुस्सा आ जाता है। तो
1: मुझे नहीं आता
0: है। आप अच्छा
1: आता ही नहीं है,
0: आता ही नहीं है।
1: नहीं आता, आसानी से नहीं आता।
0: अच्छा,
1: बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है मुझे।
0: और जब आता है
1: आता है तो फिर थोड़ी देर का होता है, निकल जाता, फिर मैं बस वो रोती हूँ।
0: ओहो, मतलब आप अपने आप को ही तंग करती हैं, दूसरों को तंग नहीं करती।
1: नहीं, पर ठीक भी जल्दी होती हूँ।
0: जी जी, बहुत ही प्यारी इंसान हैं आप। हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सोनिका के साथ स्म्यूल में कई ड्यूएट्स भी गा चुकी हूँ, अक्सर इनको सुनती तो रहती ही हूँ। ये जितनी प्यारी इंसान है उतनी ही इनकी प्यारी आवाज है, शख्सियत है। खैर, हमारे श्रोता अब तक तो ये जान ही चुके होंगे आपके गीत सुनकर, तो इन दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपका अगला गीत सुनते हैं।

0: सोनिका, आज आपके डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने से यहाँ आपकी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीतों से सारा माहौल महक उठा है। आपका दिल से आभार कि आपने अपनी व्यस्त जिंदगी से इतना वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में स्पेशली हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपने इतने बेशकीमती नगमे लेकर आई हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए आप दो शब्द जरूर कहते जाए।
1: बिल्कुल, मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी
0: जी,
1: चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए मतलब चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ हैप्पीनेस को चूज करो, आपको खुश रहना है। और इसके लिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालकर अपनी पसंद का अपना पसंद का काम जरूर करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि हम सबके लिए तो जीते ही हैं। अपने लिए जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार, खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया बात कही। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपना नंबर हमारा सबसे पीछे होता है। स्पेशली जो भारत की गृहणियां हैं, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनके ऊपर तो खैर ये बात बहुत ही 100% सही उतरती है। इनफैक्ट हम तो खाना भी जब बच्चे छोटे होते हैं तब खाते हैं कि चलो ठीक है, अगर इनका कुछ छूटा है तो वो खा लो।
1: यस, बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ,
0: तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे श्रोताओं को बोली।

0: आपका बहुत धन्यवाद सोनिका.
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन.
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अंबाला से सोनिका जी के साथ. मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी. जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ. यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए. रब राखा.
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन. अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी. जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो.

0: लाइफ में है, बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें कुछ सिंगल लड़कियां भी आती हैं जो बैचलर हैं अभी, तो सभी ने अपनी डिशेस को आप तक पहुंचाया है, आप सब तक शेयर किया है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हैं अलका जी, और अलका जी से ही हम सीधा बात करते हैं। और चूंकि हम उनके किचन में पहुंच चुके हैं, तो किचन में रेसिपी बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है, ये तो सब आपको पता ही है आप सबको। तो पहले तो हम अलका जी से ही पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए लिसनर्स को।
1: हाँ, नमस्ते जी. प्रीत जी नमस्कार, और जयपुर
0: नमस्कार।
1: रेडियो को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे सांझा चूल्हा में ऐड किया, और मेरा एक अच्छा सा इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला.
0: जी बिल्कुल, स्वागत है आपका हमारी जयपुर रेडियो की पूरी टीम की ओर से। आरजे प्रीत वेलकम कर रही है आपका। तो अलका, आप कहाँ से हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: मैं एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ. बट मैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का ये होता है ना कि वो, फिर मैं हैदराबाद में ही सेटल हूँ, और मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में काम करते हैं, एक्चुअली डिफेंस
0: ओके।
1: में है. तो मेरा तो ऑल ओवर इंडिया घूमना चलता रहता है, बट फाइनली अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ, कि अब हैदराबाद में
0: हैदराबाद,
1: फाइनली सेटल हो गई.
0: आप
1: हाँ
0: अलका हैदराबादी हो गई हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती हैं मी हैदराबादा. एक्चुअली एक्चुअली जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हैदराबादा बोलते हैं यहाँ
0: हाँ, तो कानपुर
1: पे
0: से हैदराबाद का सफर बहुत लंबा है, तो
1: बहुत
0: बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा होगा आपको वहां पे।
1: बहुत बहुत. एक्चुअली मेरी जर्नी जो है वो कानपुर से हैदराबाद नहीं थी. आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जगह रहना पड़ा. कानपुर से मैं भुज गई, भुज से फिर बंगाल गई, बंगाल से फिर मैं राजस्थान गई, राजस्थान से फिर जम्मू कश्मीर गई, देन लास्टली मैं हैदराबाद सेटल हो गई हूँ.
0: मतलब कुछ फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे हैं घूमने को मिल रहा है
1: बहुत बहुत
0: आपको।
1: बहुत, ऑल ओवर इंडिया बहुत
0: और
1: ज्यादा मैंने देख लिया
0: हाँ,
1: है.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं अलका। अलका, आपके मतलब फुल नेम प्लीज।
1: अलका सक्सेना.
0: ओके, तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स सुन रहे हैं अलका सक्सेना को, जो हैदराबाद से हैं और हमारे कुकिंग शो में आई हैं, जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। तो लिसनर्स जानते हैं, उनका मूड तभी बनता है किचन में जाने का जब मॉम्स एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हैं। तो मैं सारे लिसनर्स की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज कोई सुन, पहले शुरुआत हो जाए किसी सॉन्ग से। श्री गणेश
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: श्री गणेश करते हैं एक दिल के सॉन्ग से. तो
0: बिल्कुल
1: मैं एक लाइन आपको गुनगुना के सुनाती हूँ फिर.
0: जी, बिल्कुल।

0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को, जो है हैदराबाद से, और एक प्यारा सा सॉन्ग से उन्होंने श्री गणेश कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं रेसिपी की ओर। तो अलका जी, आज क्या आप शेयर करने वाली हैं लिसनर से?
1: हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छी सी रेसिपी बताऊंगी और मैं चाहूंगी आप सब एक बार जरूर ट्राई करें इसको। और एक ऐसी रेसिपी है, जैसे कि होता है कि हम जैसे भूल जाते हैं कि सडनली मुझे याद आता है कि मुझे आज इडली खाने का मन हो रहा है,
0: हाँ
1: बट मैं भूल गई कि मैंने नारियल भी नहीं भिगोया, नारियल की चटनी कैसे बनाऊंगी। फिर मैंने बैटर नहीं भिगोया, चावल नहीं भिगोए, दाल नहीं भिगोया, फिर मैं कैसे बनाऊंगी इडली। तो
0: करेक्ट,
1: वही थोड़ा सा क्या है कि उसको फटाफट वाला, कि बस
0: ट्विस्ट
1: तो
0: लेकर
1: उसको,
0: आई हैं आज आप। हाँ
1: हाँ बिल्कुल, हैदराबाद का तो है, हैदराबाद का फेमस
0: हाँ
1: है इडली सांभर डोसा।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैंने कहा यहीं से ही शुरुआत करती हूँ एक बार।
0: हाँ
1: देखिए
0: जी जी
1: मैं एक्चुअली वो इंस्टेंट इंग्लिश इडली है कि फटाफट आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल लेना है। मटेरियल है फर्स्ट कि आपको 1.5 कप चावल का आटा लेना है। जनरली चावल का आटा मिल जाता है हैदराबाद में, तो बहुत मिलता है,
0: हाँ,
1: बट
0: यहाँ
1: अगर
0: हर जगह मिलता है वो तो, चावल का आटा हर जगह मिलता है। हाँ
1: हाँ चावल का आटा हर जगह मिलता है, तो आप एक नाप रख लीजिए, जो भी नाप आपकी कटोरी है या कप है, कुछ भी एनीवन, तो
0: जी
1: नाप रख करके 1.5 कप चावल का आटा ले लीजिए। फिर उसमें 1/2 कप सूजी, थोड़ी मोटी वाली सूजी भी दो
0: ओके।
1: प्रकार की आती है, एक पतली आती है और एक मोटी
0: हाँ
1: आती है,
0: हाँ करेक्ट। हाँ
1: बट थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे तो उससे पफ जो होता है ना थोड़ा सा अच्छा आएगा उसमें।
0: ओके। हाँ
1: हाँ तो वो मिलाकर, और उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली नमक डाल करके, और फिर उसमें 1 कप दही डाल
0: ओके।
1: करके, और उसको पानी धीरे धीरे डालते जाइए और उसको मिलाते
0: का
1: जाइए, सेकते
0: बैटर
1: जाइए
0: बैटर ऐसा बनना है जो
1: बैटर।
0: इडली
1: हाँ
0: वाला
1: हाँ
0: हो।
1: बैटर जब ये वाला इतना डाल करके आप उसको फेंट लेंगे, देख लीजिए ये बैटर आपको कैसा लग रहा है, थिक लग रहा है या थोड़ा सा थिन लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है इसमें, वो बैटर बना के आप 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए।
0: ओके।
1: उसके बाद उसमें फिर आप सोचेंगे चटनी कैसे बनाऊं, अब मैं तो नारियल को वो नहीं किया है, कैसे बनाऊंगी तो कैसे खाऊंगी, बट उसका भी एक प्रोसेस है कि चटनी कैसे बनानी है।
0: अलका जी, लेकिन हमें बैटर को मतलब कि रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और उसके बाद आप चटनी के प्रोसेस की ओर जा रही हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: अभी जो
0: मैं
1: दस
0: चाह रही
1: मिनट
0: हूँ कि बैटर को तब तक के रेस्ट करने दीजिए। और इस बीच हम सुनते हैं अलका सक्सेना जी का एक सॉन्ग और, तो कुछ
1: बिल्कुल
0: गुनगुनाएंगे
1: बिल्कुल
0: आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रुके रुके से कदम।

0: बहुत अच्छी सिंगिंग है, एवन सिंगिंग करती हैं आप, बहुत ही प्यारे सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत ही अच्छे। जो जयपुर रेडियो के लिस्टेंस है ना, जो थोड़े से मतलब ओल्ड सॉन्ग्स पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन लेकर आई हैं अलका सक्सेना, जो
1: थैंक यू
0: हैदराबाद से हैं। तो हमने अभी इडली के बैटर को रखा हुआ है रेस्ट करने के लिए, देन कंटिन्यू प्लीज।
1: बिल्कुल। हाँ तो मैंने इडली के बैटर को 10 मिनट्स के लिए रखा था, आपने एक गाना भी सुन लिया उसके बीच में।
0: जी बिल्कुल।
1: अभी मैं उसकी चटनी पे आती हूँ। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए जरा सा, उसमें मूंगफली, कच्ची मूंगफली होती है ना,
0: हाँ
1: तो कच्ची मूंगफली को उसमें डाल दीजिए, छिलका नहीं
0: ओके,
1: उतारना है, सिंपल डाल देना है।
0: अच्छा, हाँ,
1: एंड जो रोस्टेड चना दाल होती है, जैसे वो वाली चना दाल, थोड़ी सी, जितना
0: हाँ,
1: मूंगफली लिया है उसका आधा जस्ट।
0: ओके ओके,
1: तो हरी मिर्च डाल दीजिए, एक अदरक ले लीजिए, और थोड़ा सा उसको जैसे चटपटा बनाने के लिए एक छोटी सी इमली डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, और उसको फ्राई कर लीजिए हल्का सा।
0: ठीक है, हाँ
1: बहुत थोड़ा सा तेल डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि फिर चटनी में तेल ही तेल नजर आएगा। बहुत
0: हाँ
1: ही हल्का सा
0: लाइट
1: डाल
0: सा,
1: दीजिए।
0: लाइट सा,
1: हाँ
0: कुछ
1: बस, कि
0: ड्रॉप
1: बस बस हाँ, जस्ट
0: ड्रॉप,
1: जस्ट वन वन स्पून समझ लीजिए, ताकि वो
0: ओके
1: हमारा बस भून जाए, जो भी मटेरियल
0: ओके,
1: डाल रहे हैं उसमें एक हल्का सा सौंधापन आ जाए।
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: कानपुर में एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं, सौंधापन आ जाए,
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: खुशबू जो आती है ना, वो आपको खुद से पता
0: बहुत आ रही है, आ रही
1: चलेगी।
0: है, आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, नहीं लिसनर्स के भी मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी तैयारी करिए फटाफट से
1: बस
0: इंस्टेंट
1: उसके बाद
0: इडली
1: आपका,
0: बनाने
1: तो
0: के
1: आपका
0: लिए।
1: बस भुन गया, आपको खुशबू आ गई है। अब बस उसको थोड़ा सा ठंडा करके रखिए, उसके बाद ठंडा करने के बाद उसको पीस लीजिए। बस पीस करके आपको उसमें अच्छा सा तड़का देना है, उसको बढ़िया वाला तड़का, जो कड़ी पत्ता से तड़का दिया जाता है।
0: ओके
1: तो उसमें तड़का देने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तड़का कैसे देना है। तो उसको पीसने के बाद आपको एक ऑयल फिर से एक बाउल में गरम करना है, उसके बाद राई एंड थोड़ी सी उड़द दाल हाफ स्पून, एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लाल मिर्च फुल वाली जो सजी हुई होती है, जिनको
0: ओके
1: हमारे तड़का मिर्च बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ लाल तड़का वाली मिर्च बोलते हैं। तो
0: ओके
1: उससे तड़का दे करके बस उसको चटनी के ऊपर डाल देना है। आपकी चटनी रेडी हो गई, एकदम गर्मा गर्म।
0: वाह, मैं क्या करूं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसी डिश है जो हर तरफ से बनाई जा सकती है
1: बिल्कुल,
0: ये।
1: अभी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के टिफिन के लिए, और इतनी इंस्टेंट है कि फटाफट बन जाइए, हाफ एन आवर में आपकी डिश आप खा भी लेंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: तो
1: वो
0: हमने
1: बहुत।
0: चटनी तो देख ली, सुन ली, पर अभी हमें इडली के बारे में थोड़ा सा जानना है कि इडली का बैटर फूल चुका है और
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसकी रेसिपी भी सुन लेते हैं। हम चलते हैं इडली बनाने के लिए। आपके कैसे, ओवन में या गैस में कैसे बनाती हैं, बताइए।
1: जिसके पास ओवन नहीं है वो भी बना सकते हैं, कि आप एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख सकते हैं, उसके ऊपर इडली के पैन आते हैं, या फिर वैसे बने हुए आते हैं खांचे जैसे इडली के, जिसमें कि इडली का शेप होता है,
0: जी
1: उसको आप ले सकते हैं, और उसमें पानी गर्म करके उसकी स्टीम में ही डालना है उसको, एक्चुअली वो स्टीम से ही पकता है। फिर उसको ऊपर
0: ओके
1: से ढक करके आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट ओवन में भी बन सकता है आपको जैसा। इडली के वैसे भी प्रॉपर स्टैंड भी आते हैं जो इडली मेकर होते हैं, तो जिसके
0: हाँ,
1: पास जो भी
0: तो करेक्ट,
1: अवेलेबल है, जिसके पास नहीं भी अवेलेबल है तो वो भी इजीली बना सकता है उसको।
0: हाँ, तो फिर उसको इडली को हमें चेक करने के लिए एक स्टिक डाल के और चेक करना है कि वो पक गई है ना।
1: हाँ, वो जब आप ओवन के अलावा बनाते हैं तो आपको एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में।
0: बिल्कुल
1: ओवन में
0: बिल्कुल,
1: तो हमें पता होता है कि क्या होता है, कैसे डालना है, कितना मिनट लगाना है, कितने सेकंड्स लगाना है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा।
0: हाँ, तो मतलब ये बहुत ही टेस्टी सी इडली, उसके साथ डिप यानी चटनी भी शेयर कर चुकी हैं अलका सक्सेना जी। तो जब तक ये लिस्टर्स कर रहे हैं ना तैयारी, क्योंकि उनको तो टाइम लगने वाला है, ये सब घर में ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा ये डिब्बे खोलना, वो डिब्बे खोलना, सब कलेक्ट करना, तो जब तक वो
1: जी
0: ये करेंगी ना, तब तक के चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं आपका, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हो जाए।
1: चलिए हो जाए।

0: की रेसिपी शेयर करी है अलका सक्सेना जी ने, उनके जादू से कोई नहीं बच पाएगा। और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स जरूर से जरूर अलका सक्सेना जी की बनाई हुई रेसिपी इडली विद चटनी जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। उनको अपना फीडबैक दीजिए, उनको अच्छा लगेगा अगर आपका फीडबैक आएगा। इनफैक्ट अगर आप उसमें कुछ वेरिएशन करना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, तो वो भी हमें शेयर करिए। हमारा संजय चूल्हा की टीम आपके हर एक मैसेज का इंतजार करती है जो आप हमें देते हैं। और रेटिंग रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए जयपुर रेडियो को। और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर डिश में कुछ भी स्किप हुआ है तो प्लीज, हमारा रिपीट ब्रॉडकास्टिंग आता है डेली, दिन में 2 बजे, शाम 5 बजे, आप बिल्कुल सुनना ना भूलें। और अपनी इडली और चटनी दोनों की, ये जो मुंह में पानी आ रहा है ना लिस्टर्स, मेरे भी आ रहा था, क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसी डिश है कि क्या ही करें। तो बनाने की तैयारी करिए और मस्ती से गाते गाते, सुनते सुनते जो अलका जी ने सॉन्ग सुनाए हैं उनको आराम से बनाइए। तो अलका, आप क्या कोई टिप शेयर करना चाहेंगी जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ, किचन
1: बिल्कुल
0: टिप?
1: टिप शेयर करूंगी। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने स्किप का नाम लिया तो मैंने तो 10 मिनट बैटर रखा था, 10 मिनट बाद एक और प्रोसेस है वो मैं
0: हाँ
1: बताना भूल गई हूँ, वेरी सॉरी।
0: हाँ हाँ बताइए बताइए,
1: वो
0: अभी टाइम
1: प्रोसेस ये
0: है।
1: कि 10 मिनट के जैसे ही आप उसको, चटनी आपकी रेडी हो गई है, उसमें आप जैसे ही बनाने जाएंगे, जस्ट 2 मिनट्स पहले एक इनो का पाउच उसमें डालेंगे, बिकॉज हमें उसका फर्मेंटेशन चाहिए। और मैं फर्मेंटेशन किसी से नहीं ले रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा
0: राइट
1: नहीं डाल रही हूँ। तो जस्ट
0: करेक्ट
1: एक इनो का पाउच डालेंगे, और डालते ही थोड़ा ही हिलाना है, बहुत ज्यादा फेंटना नहीं, क्योंकि वो फर्मेंटेशन उसका खत्म हो जाएगा। फटाफट बस हिला करके उसको चढ़ा देना है, बस इतना ही था। इन केस आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो सोडा भी यूज कर सकते हैं।
0: हाँ, तो अगर इनो नहीं है घर में तो आप सोडा यूज कर सकते
1: जी
0: हैं, पर
1: बिल्कुल,
0: बनानी तो जरूर है, अलका जी की
1: बनानी
0: बनाई।
1: जरूर है, बहुत टेस्टी है, और
0: हाँ
1: हैदराबाद की तो स्पेशल
0: करेक्ट,
1: डिश
0: यस
1: एक्चुअली यही है।
0: हाँ। तो अलका जी के बनना देख लीजिए आप, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स की खबर लेने वाली हैं अलका जी, तो बनानी जरूर है, फीडबैक जरूर देना है। टिप्स,
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल,
0: टिप्स आपने शेयर करें वो जरूर
1: हाँ
0: से
1: एक,
0: जरूर फॉलो करना है। एक और टिप है ना?
1: हाँ हाँ जी, बस एक एक टिप जरूर बताना चाहूंगी जो अच्छा है लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग, जनरली हम लोग कानपुर के यू हैं, तो पूड़ी पराठा ये सब घर में बनता रहता है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो पूड़ी बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आटा माड़ के मैं रख देती हूँ, बट वो थोड़ी देर में जब पूड़ी बनाने जाओ तो एकदम वो गीला गीला सा हो जाता है। पूड़ी का आटा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड माड़ो तो फटाफट पूड़ी बनती है,
0: जी
1: विदाउट मतलब परथन यूज करे हुए। परथन
0: हाँ,
1: समझ रहे हैं ना आप,
0: जी
1: परथन?
0: जी जी हाँ हाँ रोटियां
1: जी
0: बनाने के लिए तो हर घर में यूज
1: बिल्कुल,
0: होता है।
1: जी
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो परथन यूज करे बगैर आपका कड़े आटे में अच्छा बनता है, बट अगर आपका थोड़ा लूज हो जाएगा तो आप या तो उसको इतना भी करेंगे वो बात नहीं आ पाती है। तो आपका जब आप पूरी सेकते हैं परथन के साथ बेल करके, तो वो पूरा ऑयल खराब हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है उससे, पूरा परथन चला जाता है। तो उसके लिए एक टिप है कि अगर आप परथन में पूरी सेक रहे हैं तो एक चुटकी नमक आप अपनी कढ़ाई में डाल लीजिए ऑयल में, पूरी सेकने से पहले, तो आपका ऑयल कभी भी खराब नहीं होगा।
0: हाँ, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि ये परथन, ऐसे कुछ ऐसे शब्द है ना कुकिंग में
1: जी
0: जो हर घर में यूज होते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें कई कई नामों से जानते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्राई आटा
1: हाँ
0: जो हम
1: बिल्कुल,
0: है ना उसको, जो रोटियां बनाने में यूज करते हैं, उसे हम भी परथन ही बोलते हैं। आपका पता नहीं है क्या बोलते हैं, पर आपको समझ आ रहा होगा जो टिप आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट टिप है, यूजफुल टिप है, इसको जरूर से जरूर यूज करिए और जरूर से जरूर अलका जी के रेसिपी को ट्राई करिए। अलका जी, जाते जाते एक सॉन्ग और आपका और सुनेंगे, फिर वापस आते हैं हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाय शर्मा, हाय शर्मा, हाय शर्मा, किस किस को बता।

0: जी हाँ बता चुकी हैं, अपने खाने की कहानी बता चुकी हैं, अपनी डिश की कहानी बता चुकी हैं, और ये कहानी जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच चुकी है। और जयपुर रेडियो जो हमारी हर जगह कोने कोने में दुनिया देश में सुना जाता है, स्मॉल टाउन्स में, गांव में, देहात में, कस्बे
1: वाह
0: में, मेट्रो सिटीज में, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह पर जयपुर रेडियो सुनते हैं लोग। तो जयपुर रेडियो सुनना ना भूलें, और साथ में कुकिंग शो सुनना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। आज आप सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को। तो अलका सक्सेना जी,
1: जी
0: प्यारी सी
1: बोलिए। थैंक
0: सिंगिंग सुना करी आपने, मतलब सॉन्ग्स हम सबको सुनाए अच्छे अच्छे और
1: यू थैंक यू।
0: डिश भी बहुत अच्छी शेयर करी, टिप्स यूजफुल थे। तो क्या अब आप जाते जाते लिसनर्स को कुछ बोलना चाहेंगे?
1: बस यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले आप तो जो मैंने डिश बताई है 100% ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भूल जाते हैं, और भूल नहीं भूलते हैं तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं, बट अगर भूल जाते हैं तो आपको हाफ एन आवर में आपको पसंदीदा आपको टिफिन बॉक्स में मिल जाएगा, बच्चों को आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। तो ये जरूर ट्राई कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गानों को सराहने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: मैं एक बार जानती हूँ कि ये ऐसी डिश है जो ब्रेकफास्ट में, लाइट लंच में, और डिनर जो लोग हल्का करते हैं, जो चाहते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी ना मिलके कुछ हल्का सा
1: हाँ
0: मिले, तो उस जगह पर ये बहुत यूजफुल डिश है। इसको आप
1: जी
0: ट्राई
1: जी
0: कीजिए
1: बिल्कुल
0: और जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए, जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलिए। अलका जी, जाते जाते एक तड़का मारिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जाते जाते मुलाकात पे ये गाना सुना देती हूँ।

0: जी बिल्कुल ललका जी, आपसे हमारा दिल का याराना और प्यार का सिलसिला पुराना है और चलता रहेगा। तो
1: क्या बात है।
0: जयपुर रेडियो में हम आपको दोबारा से फिर से जल्दी ही आमंत्रित करेंगे ताकि आप एक और नई डिश के साथ आए और हमारे जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच जाए और उनके किचन के
1: थैंक
0: अंदर धावा दे दें। तो
1: यू,
0: थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। कुछ
1: थैंक यू सो मच।
0: जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत, और आरजे प्रीत आज लेकर आई थी अलका सक्सेना जी को। तो जल्दी ही हम एक नई मॉम के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ नई नई डिशेस बनाते रहिए जो जयपुर रेडियो से प्रसारित हो रहा है कुकिंग शो फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। उसमें जो नई नई मॉम्स आ रही हैं उनकी बताई हुई डिश को ट्राई करते रहिए। तो जल्दी ही फिर वापस कल से मिलते हैं। गुड बाय।
2: आपने सुना प्रोग्राम फ्यूजन सांझा चूल्हा, और आज अपनी बात साझा कर रही थी हैदराबाद से अलका सक्सेना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आप सुनते हैं संगीता माल्या को दुबई से।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। आज हम भारत के जिस शहर से अपना सितारा लेकर आए हैं उसकी तारीफ में अमीर खुसरो साहब ने लिखा है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती हमारे स्टूडियो में लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न पंडिता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार सपना जी, आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
0: जी ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वालों को प्रद्युम्न जी आप अपने बारे में कुछ बताइए और साथ में ये भी बताइए कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी, कि क्या किसी खास घटना ने आपको प्रेरित किया या फिर आप ये विरासत में लेकर ही जन्मे थे।
1: जी देखिए मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी जी।
1: तो मेरा बचपन कश्मीर में बीत गया, तो पूरी स्कूलिंग मेरी कश्मीर से है। और उसके बाद जब कॉलेज का टाइम आया तो मेरा एडमिशन हुआ था आरईसी श्रीनगर में, जो एनआईटी श्रीनगर कहलाता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहां तक संगीत का सवाल है, देखिए संगीत में रुचि तो थी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत विरासत में तो डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं तो उनको गाना गाने का गुनगुनाने का ये तो शौक तो था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो शायद वही एक वजह है कि मेरी कई सिबलिंग्स में और मेरे में वो एक है रुचि म्यूजिक की तरफ।
0: मतलब आपका बचपन जो है वो काफी संगीतमय रहा।
1: संगीतमय मतलब ज्यादातर सुनने में हम विश्वास करते हैं, कभी ये लगा नहीं कि हम गा सकते हैं, बट हाँ ये तो आप ये कहिए कि क्योंकि आजकल एनीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी।
0: जी जी।
1: तो शायद एनीबॉडी कैन बिकम अ सिंगर।
0: कुछ
1: शायद अब वो किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट तो आजकल टेक्नोलॉजी
0: बहुत हेल्प करती है, तरह तरह की एप्स डेवलप हो रही हैं, तो लोग अपनी कला को अपने हुनर को सबके आगे लाने में काफी सफल हो रहे हैं। तो प्रद्युम्न जी सुनने में आया है कि हालांकि स्कूल और कॉलेज में आप बहुत ही शर्मीले से थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन हमने सुना है कि दोस्तों के उकसाने पर आप एक बार गर्ल्स हॉस्टल किसी शरारत के इरादे से गए थे और वहां पर किसी खूबसूरत लड़की के झुमकों में उलझ कर रह गए थे, तो क्या हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे?
1: नहीं ये तो खैर ये तो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो ये बात जरूरी है, जो आप दोस्तों के साथ जो आपका व्यवहार होता है और जो पब्लिकली आपका व्यवहार होता है तो काफी अंतर होता है। मैं दोस्तों के साथ आप बेझिझक बिल्कुल अपने मस्ती में होते हो रहे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब ये घटना ऐसी है, जब हमारी माइग्रेशन हुई आ रही थी श्रीनगर से, क्योंकि वहाँ टेररिज्म के कारण वो कॉलेज बंद हुआ एक डेढ़ साल, तो हमें फिर ऑप्शन दिया गया कि आप जो इंडिया के बाकी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आप माइग्रेशन ले सकते हो और अपना जो प्रोफेशनल स्टडीज है वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: जी,
1: तो फिर हमें कुरुक्षेत्र बुलाया गया उसके लिए। तो वहां पे अब कई चीजें, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा वो पहली बार ऐसा था कि मैं कश्मीर से बाहर आ रहा, तो काफी सारी चीजें ऐसी लगी कि ये नई नई है। और फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ जो साइकिल रिक्शा होता है
0: जी।
1: तो वहां

0: तो जब हमने कुरुक्षेत्र के कैंपस में देखे कि लोग वो साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, हमारे लिए नई चीज थी। अब जब हम वेट कर रहे थे बाहर मतलब ग्राउंड में, तो फिर ऐसा लगा कि यार हम ये ट्राई करें, कोई नई चीज है।
1: जी
0: इसलिए शायद वो वहां लड़कियों ने देखा होगा भाई, ये कई लोग आए हैं ये रिक्शा चला रहे हैं, तो शायद आप उस बात का जिक्र कर रहे होंगे।
1: यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एक किस्मत की बात कह लीजिए या कुछ फेट कह लीजिए, तो जिस वक्त की प्रद्युम्न पंडिता जी बात कर रहे हैं, तो उसी वक्त मैं भी NIT कुरुक्षेत्र का ही एक हिस्सा थी। मैं वहां पे स्टूडेंट थी और वाकई सारी लड़कियों में बड़ी सनसनी की तरह ये खबर फैल गई थी कि बहुत ही गोरे गोरे से लड़के आए हैं कश्मीर से जो कि रिक्शा चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े अजूबे की बात थी कि क्या इन्होंने आज तक रिक्शा नहीं देखा। तो इसी शरारती सी बात पर हम आपका पहला गीत लेते हैं। प्रद्युम्न जी, क्या सुनवा रहे हैं आप?
0: देखिए, मेरे मन में अभी आ रहा है कुछ ना कहो,
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत
0: है ना।
1: गीत है।
0: ये जो आप शरारत की बात कर रहे हैं ना, तो बस इतना काफी है। तो कुछ ना कहो वाला गाना जो मेरे को बहुत ही
1: जी
0: दिल के करीब है,
1: जी
0: कुमार सानू जी
1: लेते
0: का,
1: हैं
0: तो
1: उस
0: ये
1: गाने को।
0: हम सुनाते हैं।

0: बहुत ही मिठास के साथ आपने इस गीत को निभाया प्रद्युम्न जी, मजा आ गया। तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं और जैसे कि आपने बताया कि आप भारत के बेहद प्रसिद्ध कॉलेज NIT वारंगल से आपने अपनी तालीम हासिल की है, तो कश्मीर के एक छोटे से गांव और अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स की बड़ी बड़ी फार्म से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? कुछ खट्टी यादें होंगी, कुछ मीठी यादें होंगी, कुछ चुनौतियां आपके जीवन में रही होंगी, तो वो थोड़ा संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी जरूर। देखिए, यादें तो बहुत है। मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा बचपन मेरा बीता है वहाँ।
0: जी जी।
1: तो बचपन की यादें तो बहुत ही मीठी होती हैं। तो चाहे वो, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में ये था कि मतलब वहाँ एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज है, मतलब चाइल्ड चाहे मतलब खेलना कूदना, ये नहीं है कि घर पे ही बैठना पढ़ाई करना। तो पढ़ाई इनफैक्ट मेरे लिए एक साइड एक्टिविटी होती थी। हमारे बाग, और ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे बाग बगीचे गाय, फिर खेलना अलग, फिर आपकी पढ़ाई अलग। तो क्या होता था,
0: पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती थी आपकी एक दिन में
1: पूरी। तो वो तो इनफैक्ट वहाँ कोई घरों में अगर बैठता था तो कहता क्यों सब ठीक है, बीमार तो नहीं है कोई। तो उस हिसाब से देखिए, आई एम वेरी लकी कि जो बचपन बीता है वो काफी अच्छा बीता है, काफी अच्छी यादें हैं। फिर आपके दोस्तों के साथ यादें, जैसे जो फ्री टाइम मिलता था खेलने जाते थे, चाहे वहाँ तो देखिए नेचुरल रिसोर्स की तो भरमार है, चाहे आप वाटर बॉडीज ले लो, दरिया ले लो, नदियां ले लो, स्प्रिंग ले लो। तो हमारा ये था कि चलो दरिया तैरना है, स्विमिंग करनी है। अब ये वही है जो लाइफ स्किल्स आप पिक करते हैं ऑन द गो, कोई आपको सिखाने नहीं आता, चाहे वो बड़े बड़े दरिया है उनको क्रॉस करना, चाहे वो बागों में जाना सेब चिराने, किसी के
0: पेड़ पे चढ़ना,
1: पेड़ पे चढ़ना, तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ तक कि हमारे एक टीचर साहब थे, वो अभी हैं
0: जी,
1: तो जो हमारा स्कूल था तो उनका जो सेबों का बाग बिल्कुल पास में था स्कूल के,
0: अच्छा
1: हायर सेकेंडरी स्कूल था। अब हम जो

0: ब्रेक का टाइम होता था तो हम उनके कई बार उनके बाग में घुस जाते थे, वहां उनके फादर साहब होते थे। अब ऐसा होता था कि हम पेड़ पे चढ़ के सेब उतार रहे हैं, अब वो एल्डरली थे, अब वो कितना भागते हमारे पीछे, और जब तक वो आते हमारे पीछे भागते तब हम खा पी के निकल जाते थे। अब उनके जो बेटे साहब थे वो हमारे टीचर थे, इनफैक्ट मैथ्स टीचर थे।
1: अच्छा
0: और हमारी जो एक पलटन होती थी, इसमें एक लड़का ऐसा था जिसके बाल वो ब्लॉन्ड से थे, मतलब वो
1: अच्छा
0: ब्राउन कलर के
1: सुनहरी।
0: होते थे,
1: हाँ जी
0: सुनहरी। अब क्या होता था, अब वो अपने बेटे को बोलते थे घर जाके, यार आपके स्कूल से बच्चे आए थे, और एक लड़का ये था सुनहरी बाल वाला। अब अगले दिन क्या
1: अच्छा
0: होता था, वो टीचर साहब उसको खड़ा करते थे और एक दो चांटे मारते थे कि बता कौन था तेरे साथ, और वो सबके नाम देता था, फिर हमारी सबकी पिटाई। तो ये ऐसी खट्टी मीठी यादें, मतलब बहुत
1: जी
0: सारी मेरे दिमाग में आती हैं।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: फिर ऐसे बचपन बीतते बीतते फिर एक ऐसा स्टेज आया जब हम कॉलेज में गए कि
1: जी
0: सडनली वैली में वो अनरेस्ट हो गया,
1: जी वो बहुत ही
0: और
1: दुखदायी
0: फिर
1: वक्त था, बहुत ही दुखदायी वक्त था।
0: ऐसी एक काली रात आ गई कि हमें सब छोड़ छाड़ के, ये काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं
1: जी
0: इसको बिल्कुल संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि हमें बच्चों बच्चों को हमारे माँ बाप ने बोला कि आप बिल्कुल जो घर के कपड़े हैं इसी में निकल के तुम निकल जाओ और जम्मू पहुंच जाओ। अब उस टाइम ये भी था कि देखिए ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई फोन था, और बच्चे निकल गए, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे, मरे। तो कई बार ये भी हमें, ये मतलब हम भगवान का बड़ा
1: जी
0: शुक्रिया अदा
1: जी
0: करते हैं कि हम जीवित हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: मतलब जिस तरह के हालात उस टाइम बने थे, तो
1: जी
0: वो सब देख के फिर अगेन ये भगवान की कृपा ही रही हम पे कि सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, और
1: आपके माता
0: स्कूल।
1: पिता ने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और बड़ी हिम्मत दी उन्होंने, क्योंकि ये हमारे, मैं कहूंगी हमारे जेनेटिक भी होता है ये, कि अपने माँ बाप को देख देख कर ही हम कभी सीखते हैं, कुछ हमारे जीन्स में आता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी चुनौतियों भरी जिंदगी जी है और यहाँ तक, इस मुकाम तक आप पूरी अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं प्रतिबन जी।

0: यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी प्रतिमन जी, कि आपके कश्मीर में इंडिया में से जगह जगह से टूर्स आते हैं, लोग स्पेशली इस जगह को देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि कितना खूबसूरत, जितना खूबसूरत हमने इसको सुना है, पढ़ा है, तो क्या ये वाकई में इसकी खूबसूरती उतनी है। तो हम तो बहुत ही हैरत से वहां पर जाकर सारी चीजें देखते हैं। तो एज अ होस्ट, जब आपके शहर में, आपकी स्टेट में ये सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें तो अच्छा लगता था, कोई आता था वहाँ, मतलब हम आइडिया शेयर करते थे, हमें भी ये पता चलता था कि ये कहाँ से आए, इनका क्या कल्चर है। और फिर ये भी होता था, एक रौनक भी वहाँ होती थी, और जैसे
0: साथ में रिसोर्सेज तो फिर गवर्नमेंट को मिलते ही हैं टूरिस्ट से,
1: और एक टूरिज्म का वो एक सपोर्ट, देखो एक इकोनॉमी का वो होता है। तो हमें तो अच्छा ही लगता था, ऑनेस्टली बोलूंगा। अभी भी हम जाए, देखिए अब चाहे हमारा देश है, अब हम एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश ये तो हम सब में एक ये बात है कि अगर कोई चीज है तो इसको हमें संभाल के रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हमारा देश है, हमें संभाल के रखना चाहिए। कोई जगह सुंदर है, इसकी सुंदरता को कायम करना चाहिए। तो ऐसे वो एक पब्लिक में, जनता में ये जागरूकता होना बड़ा
0: बहुत
1: जरूरी
0: है। ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये रहने वालों की, जो पब्लिक है, जनता है, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। आसपास सफाई रखें ताकि टूरिज्म को हम ज्यादा प्रमोट कर सकें, विनम्र रहें। तो प्रद्युम्न जी, आप कश्मीरी में गीत और भजन भी लिखते हैं, तो कैसे वक्त निकालते हैं आप इस शौक के लिए?
1: देखिए, शौक तो थोड़ा बहुत था, बट अभी तो टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले ये था कि पहले जब भी मैं मतलब अकेले में होता था, तो कोई इनफैक्ट ये बिल्कुल बचपन में ही ऐसा होता था कि कोई ट्रिगर आपको हो जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, बट मेनली मेरा वो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था। और कुछ कभी फ्लो बन जाता था और मैं अपना वो जॉट डाउन करता था थॉट्स, तो उसमें से चाहे थोड़ा बहुत शायरी बने या भजन बने, तो पहले थोड़ा बहुत मैं लिखता था
0: जी,
1: बट या आई विश आई कुड डू मोर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप अभी भी वक्त निकालते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ कश्मीरी में ही गुनगुना दीजिए, जो आपने

आयोजित की गई है। आज के कार्यक्रम का सूत्रधार मैं मनु मृदुल आओ झूमे गाएं समूह की ओर से इंटरनेट रेडियो पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मुकेश चंद्र माथुर से, जो कि अपने एकार्थ पद मुकेश के नाम से जाने जाते थे, हम सब अच्छी तरह से अवगत हैं। मुकेश न सिर्फ अपने समय के बल्कि अपने समय के बाद भी उतने ही मशहूर हैं। शायद इसी को कहते हैं अमरत्व। आज की शाम की शुरुआत हम मुकेश जी के एक दो गाने से करते हैं जिसे फिल्म धर्मात्मा में उन्होंने तंचन के साथ गाया था। प्रस्तुत है वही गाना संजय गुप्ता जी और तनुजा मुंद्रा की सुरीली आवाज में।

पूजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी से ये दो गाना सुनने के बाद ये कहना मुश्किल है कि ये गाना फिल्म में मुकेश ने और कंचन ने गाया था या इन दोनों ने। चलिए मुकेश जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। मुकेश जी दिल्ली के रहने वाले थे और उनके परिवार में गाना बजाना चलता ही रहता था। संगीत का उन्हें बचपन से ही शौक था। उनकी बहन जब संगीत सीखती थी वो दूसरे कमरे में छुपकर सुनते थे। एक बार अपनी बहन की शादी में काफी रात गए मुकेश जी अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ में गा बजा रहे थे। सवेरे दो साहबान उनके घर आए और उनके पिताजी से कहा कि हम इसे अपने साथ मुंबई ले जाना चाहते हैं। पहले तो पिताजी ने मना कर दिया, मगर फिर कुछ दिनों बाद में

एक टेलीग्राम के जरिए उन्हें फिर बुलाया गया। तब पिताजी ने उनको जाने की इजाजत दी, कहा कि हो सकता है तुम्हें कुछ टैलेंट हो, जाओ अपनी किस्मत आजमा लो। और यह था पहला कदम जो मुकेश जी ने आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए बढ़ाया था। बाद में क्या हुआ ये बताऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत गाने के बाद, जो मुकेश ने फिल्म मिलन में लता मंगेशकर के साथ गाया था, जिसे आज ला रहे हैं आपके सामने स्वप्ना जी और संदू जी।

ये सावन जिन्होंने मुकेश की कला को पहचाना फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्ती मोतीलाल थे। वैसे तो मोतीलाल अपनी फिल्म में गाने खुद गाया करते थे, मगर एक पिक्चर थी जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगर लेने की शर्त को मंजूर कर लिया था और मुकेश की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन फिर फिल्म कंप्लीट होने के बाद में उस गाने को निकालने की बात चली। मुकेश जी को कहा गया कि फिल्म में हीरो मोतीलाल अपनी चंचल भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं और सैड सॉन्ग उनकी फिल्म में नहीं चलेगा। मगर फिर काफी समझाने के बाद में उन्होंने उस गाने को फिल्म में रखने की इजाजत दे दी। उनका कहना था कि यह गाना फिल्म में एक सप्ताह तक चलेगा, यदि ये दर्शकों को पसंद नहीं आया तो फिर निकाल दिया जाएगा। यकीन मानिए वो गाना न सिर्फ फिल्म के चलने के दौरान बल्कि सदियों तक मशहूर हुआ और आज तक गाया जाता है। वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। इसी के साथ सुनते हैं गौतम खोना और आभा माथुर की आवाज में फिल्म पहचान का ये गाना, जो कि मुकेश जी ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था।

अपने शुरुआती दिनों में मुकेश जी ने फिल्मों में भी एक्टिंग की। एक फिल्म बुरी तरह से पीटी और उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वे शेयर ब्रोकर बने, ड्राई फ्रूट सेलर बने। मगर 1942 के बाद जब हिंदी फिल्म जगत में पार्श्व गायकी का चलन शुरू हुआ, तब मुकेश जी को धीमे धीमे काम मिलना शुरू हुआ। बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इट इज बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास सिंगर देन अ सेकंड क्लास एक्टर। चलिए सुनते हैं जूही सिन्हा और डॉक्टर आदेश सक्सेना से फिल्म कभी कभी का एक गाना।

0: से बहुत प्रभावित थे और गाना अक्सर उन्हीं की आवाज में गाते थे।
1: कहते हैं कि केएल सहगल को जब मुकेश का गाया एक गाना सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये गाना कब गाया।
0: जी हाँ, ये वही गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, जिसके संगीतकार थे अनिल विश्वास। अनिल विश्वास ने मुकेश की गायन शैली को एक नई पहचान दी।
1: सुनते हैं मानविंद्र त्यागी उर्फ MD और मारिया दुर्रानी से फिल्म धर्मात्मा का एक और गाना जिसे मुकेश ने कंचन के साथ गाया था।

मुकेश कितने मशहूर थे और अपनी अल्पायु में ही देश विदेश में कितनी प्रसिद्धि पाली थी ये बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। बहरहाल आज मैं मुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आपको बताऊंगा। जब मुकेश 23 बरस के थे तब उन्हें अपनी जीवन संगिनी सरल देवी से मोहब्बत हुई, मगर क्योंकि उन दिनों में गाने बजाने वालों को बहुत इज्जत नहीं दी जाती थी इसलिए सरल देवी के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। तब दोनों ने घर से भागकर एक मंदिर में जाकर शादी की। शादी के बाद अक्सर जो हर पति अपनी पत्नी से कहता है वो मुकेश ने फिल्म सफर में अपने गाने से कहा। वो आज भी और कई सदियों तक हर पति अपनी पत्नी से मुकेश के अंदाज में ही कहेगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देखते हैं अनिल झुमका वाला किस तरह से इस बात को रखते हैं आप सब।

मुकेश के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनके पुत्र नितिन मुकेश भी एक गायक हैं और नितिन मुकेश के पुत्र नील नितिन मुकेश बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। मुकेश ने अपनी फिल्म संगीत के जगत में अपनी आवाज चोटी के कलाकारों को दी, जिनमें से दिलीप कुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और बाद में राज कपूर, और राज कपूर की करीब करीब तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। चलिए सुनते हैं सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया हुआ मुकेश और लता मंगेशकर का गाया गीत, जो आज हमारे सामने पेश करेंगे डॉक्टर अभिजीत शाह और इंग्लैंड से सविता जी।

मुकेश की जोड़ी ने एक दूसरे की जरूरत बनकर सेलुलॉइड के इतिहास में मिसाल कायम की। इसी के साथ सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का एक गीत, जिसे मनोज कुमार और जीनत अमान पर फिल्माया गया था। आवाज है मुकेश चोपड़ा और सूर्य।

ना सिर्फ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बल्कि कई और ऐसी फिल्में हैं जिनमें मुकेश के गाए गीत उनके मरणोपरांत रिलीज किए गए। 1977 में फिल्म धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, खेल खिलाड़ी का दरिंदा, चांदी सोना, और 1978 में आहूति, परमात्मा, तुम्हारी कसम, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुकेश के गाए प्यार के एहसास को रंग देने वाले कुछ ऐसे गाने हैं जो भुलाई नहीं भूलते। सुनते हैं ऐसा ही एक गीत इंदिरा जी अमेरिका से और राजेश शर्मा जी से, फिल्म साथी से, जिसे मुकेश ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था।

देश के गाए गीतों में जहाँ संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं निजी जिंदगी में भी एक बेहद संवेदनशील इंसान थे और दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। एक बार एक बीमार लड़की हो गई, उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया कि मुकेश तो बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय है, और अगर वे आते भी हैं तो उसके लिए काफी पैसे लेंगे। जब डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया तो मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए और उसे गाना गाकर सुनाया, और इसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, यह लड़की जितनी खुश है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। चलिए इसी भावना से जुड़ा एक गाना सुने जो मुकेश जी ने लता मंगेशकर के साथ गाया था फिल्म शोर के लिए, जो आज यहां पेश करेंगे श्वेता जी संजय हारने के साथ।

मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गीतों के बिना अधूरी है। उनकी आवाज ने दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा उसे दुनिया कभी नहीं भूल सकेगी। मुकेश का कहना था कि यदि उन्हें 10 लाइट सॉन्ग्स दिए जाएं और एक सैड सॉन्ग दिए जाएं तो 10 लाइट सॉन्ग नहीं गाएंगे और वो एक सैड सॉन्ग गाएंगे। दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश ने जिंदा हूं मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा, जैसे गानों से दर्द के बेताज बादशाह बन गए। ऐसा ही एक दर्द भरा गीत आपको सुनाने जा रहा हूं डीएस रामाकृष्णन और लक्ष्मी बालाचंदन की आवाज में।

0: ऐसे कलाकार थे जिन्हें फर्स्ट फिल्म फेयर मेल सिंगर का अवार्ड मिला। उसके बाद मुकेश जी को कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। मुकेश की आवाज को द गोल्डन वॉइस और उन्हें खुद सुर सम्राट कहा जाता था। उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी थे। ऐसे ही एक विदेश यात्रा के दौरान मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी। उनके गीत हम सब के लिए प्रेम, हौसला और आशा का वरदान है। मुकेश जैसे महान गायक न केवल दर्द भरे गीतों के लिए बल्कि वो हम सबके दिलों के लिए सदा में बसने के लिए बने थे। उनकी आवाज का अनोखापन भीगे स्वर के संग हल्की सी नासिका लिए हुए न जाने कितने संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती है। वो एक महान गायक तो थे ही, साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। सदा मुस्कुराते रहते थे और खुशी खुशी लोगों से मिलते थे। इनके निधन पर राज कपूर ने कहा, मेरी आवाज और आत्मा दोनों चली गई है। इसी के साथ मैं मनु मृदुल आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूँ और आओ झूमे गाएं समूह की ओर से आपका व इंटरनेट रेडियो का आभार प्रकट करता हूँ। कामना करता हूँ आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
1: आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: स्वागत है आप सब श्रोतागण का आज की संध्या में, जो कि पार्श्व गायक मुकेश जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। आज के कार्यक्रम का सूत्रधार मैं मनु मृदुल आओ झूमे गाएं समूह की ओर से इंटरनेट रेडियो पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मुकेश चंद्र माथुर से, जो कि अपने एकार्थ पद मुकेश के नाम से जाने जाते थे, हम सब अच्छी तरह से अवगत हैं। मुकेश न सिर्फ अपने समय के बल्कि अपने समय के बाद भी उतने ही मशहूर हैं। शायद इसी को कहते हैं अमरत्व। आज के शाम की शुरुआत हम मुकेश जी के एक दो गाने से करते हैं जिसे फिल्म धर्मात्मा में उन्होंने कंचन के साथ गाया था। प्रस्तुत है वही गाना संजय गुप्ता जी और तनुजा मुंद्रा की सुरीली आवाज में।

पूजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी से दो गाना सुनने के बाद ये कहना मुश्किल है कि ये गाना फिल्म में मुकेश ने और कंचन ने गाया था या इन दोनों ने। चलिए मुकेश जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। मुकेश जी दिल्ली के रहने वाले थे और उनके परिवार में गाना बजाना चलता ही रहता था। संगीत का उन्हें बचपन से ही शौक था। उनकी बहन जब संगीत सीखती थी वो दूसरे कमरे में छुपकर सुनते थे। एक बार अपनी बहन की शादी में काफी रात गए मुकेश जी अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ में गा बजा रहे थे। सवेरे दो साहबान उनके घर आए और उनके पिताजी से कहा कि हम इसे अपने साथ मुंबई ले जाना चाहते हैं। पहले तो पिताजी ने मना कर दिया, मगर फिर कुछ दिनों बाद में एक टेलीग्राम के जरिए उन्हें फिर बुलाया गया। तब पिताजी ने उनको जाने की इजाजत दी, कहा कि हो सकता है तुम्हें कुछ टैलेंट हो, जाओ अपनी किस्मत आजमा लो। और यह था पहला कदम जो मुकेश जी ने आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए बढ़ाया था। बाद में क्या हुआ ये बताऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत गाने के बाद जो मुकेश ने फिल्म मिलन में लता मंगेशकर के साथ गाया था, जिसे आज ला रहे हैं आपके सामने स्वप्ना जी और संदूर जी।

ये सावन जिन्होंने मुकेश की कला को पहचाना फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्ती मोतीलाल थे। वैसे तो मोतीलाल अपनी फिल्म में गाने खुद गाया करते थे, मगर एक पिक्चर थी जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगर लेने की शर्त को मंजूर कर लिया था और मुकेश की आवाज में गाना रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन फिर फिल्म कंप्लीट होने के बाद में उस गाने को निकालने की बात चली। मुकेश जी को कहा गया कि फिल्म में हीरो मोतीलाल अपनी चंचल भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं और सैड सॉन्ग उनकी फिल्म में नहीं चलेगा, मगर फिर काफी समझाने के बाद में उन्होंने उस गाने को फिल्म में रखने की इजाजत दे दी। उनका कहना था कि यह गाना फिल्म में एक सप्ताह तक चलेगा, यदि यह दर्शकों को पसंद नहीं आया तो फिर निकाल दिया जाएगा। यकीन मानिए वो गाना न सिर्फ फिल्म के चलने के दौरान बल्कि सदियों तक मशहूर हुआ और आज तक गाया जाता है। वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। इसी के साथ सुनते हैं गौतम खोना और आभा माथुर की आवाज में फिल्म पहचान का ये गाना, जो कि मुकेश जी ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था।

अपने शुरुआती दिनों में मुकेश जी ने फिल्मों में भी एक्टिंग की। एक फिल्म बुरी तरह से पीटी और उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वे शेयर ब्रोकर बने, ड्राई फ्रूट सेलर बने। मगर 1942 के बाद जब हिंदी फिल्म जगत में पार्श्व गायकी का चलन शुरू हुआ, तब मुकेश जी को धीमे धीमे काम मिलना शुरू हुआ। बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इट इज बेटर टू बी ए फर्स्ट क्लास सिंगर देन अ सेकंड क्लास एक्टर। चलिए सुनते हैं जूही सिन्हा और डॉक्टर आदेश सक्सेना से फिल्म कभी कभी का एक गाना।

0: केएल सहगल से बहुत प्रभावित थे और गाना अक्सर उन्हीं की आवाज में गाते थे।
1: कहते हैं कि केएल सहगल को जब मुकेश का गाया एक गाना सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये गाना कब गाया।
0: जी हाँ, ये वही गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, जिसके संगीतकार थे अनिल विश्वास। अनिल विश्वास ने मुकेश की गायन शैली को एक नई पहचान दी।
1: सुनते हैं मानविंद्र त्यागी उर्फ एमडी और मारिया दुरानी से फिल्म धर्मात्मा का एक और गाना जिसे मुकेश ने कंचन के साथ गाया था।

0: मुकेश कितने मशहूर थे और अपनी अल्पायु में ही देश विदेश में कितनी प्रसिद्धि पाली थी ये बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं।
1: बहरहाल
0: आज मैं मुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आपको बताऊंगा। जब मुकेश 23 बरस के थे तब उन्हें अपनी जीवन संगिनी सरल देवी से मोहब्बत हुई, मगर क्योंकि उन दिनों में गाने बजाने वालों को बहुत इज्जत नहीं दी जाती थी इसलिए सरल देवी के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। तब दोनों ने घर से भागकर एक मंदिर में जाकर शादी की। शादी के बाद अक्सर जो हर पति अपनी पत्नी से कहता है वो मुकेश ने फिल्म सफर में अपने गाने से कहा, वो आज भी और कई सदियों तक हर पति अपनी पत्नी से मुकेश के अंदाज में ही कहेगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देखते हैं अनिल झुमका वाला किस तरह से इस बात को रखते हैं आपसे।

मुकेश के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनके पुत्र नितिन मुकेश भी एक गायक हैं और नितिन मुकेश के पुत्र नील नितिन मुकेश बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। मुकेश ने अपनी फिल्म संगीत के जगत में अपनी आवाज चोटी के कलाकारों को दी, जिनमें से दिलीप कुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और बाद में राज कपूर, और राज कपूर की करीब करीब तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। चलिए सुनते हैं सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया हुआ मुकेश और लता मंगेशकर का गाया गीत, जो आज हमारे सामने पेश करेंगे डॉक्टर अभिजीत शाह और इंग्लैंड से सविता जी।

राज कपूर मुकेश की जोड़ी ने एक दूसरे की जरूरत बनकर सेलुलॉइड के इतिहास में मिसाल कायम की। इसी के साथ सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का एक गीत, जिसे मनोज कुमार और जीनत अमान पर फिल्माया गया था। आवाज है मुकेश।

न सिर्फ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बल्कि कई और ऐसी फिल्में हैं जिनमें मुकेश के गाए गीत उनके मरणोपरांत रिलीज किए गए। 1977 में फिल्म धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, खेल खिलाड़ी का दरिंदा, चांदी सोना, और 1978 में आहूति, परमात्मा, तुम्हारी कसम, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुकेश के गाए प्यार के एहसास को रंग देने वाले कुछ ऐसे गाने हैं जो भुलाई नहीं भूलते। सुनते हैं ऐसा एक गीत इंदिरा जी अमेरिका से और राजेश शर्मा जी से, फिल्म साथी से, जिसे मुकेश ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था।

देश के गाए गीतों में जहाँ संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं निजी जिंदगी में भी एक बेहद संवेदनशील इंसान थे और दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। एक बार एक बीमार लड़की हो गई, उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया कि मुकेश तो बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय है, और अगर वे आते भी हैं तो उसके लिए काफी पैसे लेंगे। जब डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया तो मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए और उसे गाना गाकर सुनाया, और इसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, ये लड़की जितनी खुश है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। चलिए इसी भावना से जुड़ा एक गाना सुने जो मुकेश जी ने लता मंगेशकर के साथ गाया था फिल्म शोर के लिए, जो आज यहाँ पेश करेंगे श्वेता जी संजय हारने के साथ।

मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गीतों के बिना अधूरी है। उनकी आवाज ने दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा उसे दुनिया कभी नहीं भूल सकेगी। मुकेश का कहना था कि यदि उन्हें 10 लाइट सॉन्ग्स दिए जाएं और एक सैड सॉन्ग दिए जाएं तो 10 लाइट सॉन्ग नहीं गाएंगे और वो एक सैड सॉन्ग गाएंगे। दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश ने जिंदा हूं मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे गानों से दर्द के बेताज बादशाह बन गए। ऐसा ही एक दर्द भरा गीत आपको सुनाने जा रहा हूं डी एस रामाकृष्णन और लक्ष्मी बालाचंदन की आवाज में, जो कि

0: ऐसे कलाकार थे जिन्हें फर्स्ट फिल्म फेयर मेल सिंगर का अवार्ड मिला। उसके बाद मुकेश जी को कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। मुकेश की आवाज को द गोल्डन वॉइस और उन्हें खुद सुर सम्राट कहा जाता था। उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी थे। ऐसे ही एक विदेश यात्रा के दौरान मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी। उनके गीत हम सब के लिए प्रेम, हौसला और आशा का वरदान है। मुकेश जैसे महान गायक न केवल दर्द भरे गीतों के लिए बल्कि वो हम सबके दिलों के लिए सदा में बसने के लिए बने थे। उनकी आवाज का अनोखापन दीघे स्वर की संग हल्की सी नासिका लिए हुए न जाने कितने संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती है। वो एक महान गायक तो थे ही, साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। सदा मुस्कुराते रहते थे और खुशी खुशी लोगों से मिलते थे। इनके निधन पर राज कपूर ने कहा, मेरी आवाज और आत्मा दोनों चली गई है। इसी के साथ मैं मनु मृदुल आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूँ और आओ झूमे गाएं समूह की ओर से आपका व इंटरनेट रेडियो का आभार प्रकट करता हूँ। कामना करता हूँ आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, खंबाकणी केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंडरा आपके साथ। आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं उसका अभिनय का शौक कुछ 10 साल से ही उभरने लगा था और 19 वर्ष की कम सिन उम्र में अपनी पहली फिल्म भी साइन की इन्होंने। अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों की वजह से ही इनका नाम भारत कुमार भी पड़ा।

जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार जी की। आइए सुनते हैं पूरब और पश्चिम का वो बेहद चर्चित गीत जिसने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई।

बेहद खूबसूरत आवाज और उससे भी खूबसूरत गायकी का अंदाज रवि शर्मा जी का। दोस्तों, अगला गाना मनोज कुमार जी की उस फिल्म से जिसे उन्होंने निर्देशित तो किया ही, साथ ही साथ उसकी पटकथा भी लिखी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म शोर की। और क्या आप जानते हैं, जो गाना मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ, वो गाना संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने बेटे पीको की, वो जो छोटे बच्चे हारमोनियम बजाया करते हैं ना, उस पर बनाया था। और जिस गाने के लिए मुकेश जी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए नामांकन भी मिला था। आइए सुनते हैं वही गीत।

एक प्यार का नगमा है, खूबसूरत गीत और अपनी सुमधुर आवाजों से सजाया इस गीत को देवयानी और कौस्तुभ ने। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था जब नायिकाओं को नायकों से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और मेहनताना भी। फिल्में चलती थी नायिकाओं के नाम पर और ऐसा ही कुछ हुआ था हरियाली और रास्ता फिल्म के दौरान। दरअसल इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को 11,000 रुपए में साइन किया गया, जबकि माला सिन्हा को लाखों रुपए मेहनताना के रूप में मिले। ये सब जानने के बावजूद भी मनोज कुमार जी ने अपने काम पर इस बात का बिल्कुल प्रभाव नहीं आने दिया। आइए सुनाती हूँ इसी फिल्म का एक सुंदर गीत।

बेहतरीन गायकी प्राची और संतोष के द्वारा। फिल्मों में आने से पूर्व मनोज कुमार दिलीप साहब की फिल्में देखा करते थे। फिल्म शबनम में दिलीप जी ने अपना नाम रखा था मनोज कुमार, और मनोज जी इस नाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि जब भी वो फिल्म में काम करेंगे तो अपना नाम मनोज कुमार ही रखेंगे, और इस तरह से हरि कृष्ण गोस्वामी जी बन गए हमारे मनोज कुमार। आइए सुनते हैं अगला गीत।

1961 में प्रदर्शित फिल्म पत्थर के सनम का ये बेहद चर्चित गीत यहाँ प्रस्तुत किया संजय जोशी और प्रदेश ने अपनी खूबसूरत आवाजों में। फिल्म पत्थर के सनम के सभी गाने बेहद पसंद किए गए, तो आइए सुनाती हूँ एक और मधुर गीत इसी फिल्म से।

वाह, बेहद सुरीली प्रस्तुति डॉली और मंदार के द्वारा। शुक्रिया ए खुदा जिसने ये मुकाम दिया, शुक्रिया ए खुदा जिसने ये मुकाम दिया, जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान दिया। गुजारिश है खुदा से ऐसा सभी को मुकाम दे, गुजारिश है खुदा से ऐसा सभी को मुकाम दे, जरूरतमंदों को रोटी कपड़ा और मकान दे। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लगभग सभी गीत बेहद चर्चित रहे। पंडित जी मेरे मरने के बाद, हाय हाय ये मजबूरी, महंगाई मार गई, मैं ना भूलूंगा। आइए सुनते हैं मैं ना भूलूंगा।

प्रस्तुति जीनी पटेल और दुष्यंत जोशी जी के द्वारा। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 1970 में प्रदर्शित फिल्म यादगार से है। वैसे कहने को तो इस फिल्म का निर्देशन एस राम शर्मा जी ने किया, परंतु फिल्म पर मनोज कुमार जी की कार्यशैली की छाप स्पष्ट झलकती है। चलिए सुनते हैं जिस पथ पे चला।

बेहद मधुर प्रस्तुति मनु मृदुल जी और खुशबू के द्वारा। दोस्तों, फिल्म गुमनाम 1965 में बनी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसने सफलता के झंडे लहराए। फिल्म की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि अंत तक पता ही न चलता कि असली कातिल है कौन। पेशे खिदमत है राजा नवाथे द्वारा निर्देशित इसी फिल्म का ये चर्चित गीत।

वाह सुबोध और लक्ष्मी एस, आपने तो समय ही बांध दिया। दोस्तों आपको मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम तो जरूर याद होगी। फिल्म की कहानी पूरब की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता का फर्क बताने वाली थी। पूरब और पश्चिम में बोली भाषा खान पान रहन सहन से लेकर सोच और बर्ताव तक में जमीन आसमान का फर्क है। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में पश्चिमी सभ्यता और भारतीय जीवन दर्शन के बारे में इसी फासले को पेश किया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

बेहद रूहानी गीत और कितने सुकून के साथ गाया सुदीप्तो और अनुजा दास ने। दोस्तों, मनोज कुमार अपना आइडल दिलीप साहब को मानते थे और उनका सपना था कि वो दिलीप साहब को अपनी फिल्म में निर्देशित भी करें। और वो समय भी आया जब मनोज कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म क्रांति में दिलीप साहब को काम करने के लिए राजी कर लिया। यहाँ ये बताना ना होगा कि क्रांति फिल्म बेहद चर्चित रही। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बेहतरीन गीत।

कितना मधुर गीत और उतनी ही मधुरता के साथ प्रस्तुत किया डॉक्टर शरद और श्वेता अय्यर ने। आशा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आया होगा। समय का खेल निराला है दोस्तों, ये कब रुका है किसी के लिए। समय आ चला है आपसे विदा लेने का। अब अपनी सखी तनुजा मुंदड़ा को इजाजत दीजिए, पुनः उपस्थित होंगी एक और संगीत में प्रस्तुति के साथ अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए। सुनते रहिए जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

और नीरज ने अपने आने का परिचय तो दे ही दिया है, लेके गीतों का ये खजाना, ये सौगात हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ। अहमदाबाद गुजरात से नीरज कौर अपने सुरीले गीतों के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो पर हम सुनने वालों को कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो हर तरह के सिंगर्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये रेडियो ही उन्हीं जो सीखने वाले हैं, जो शौकिया हैं, उन्हीं के लिए है, जो एक्सपर्ट है ना, उनके लिए तो हमने बस यही पैगाम दिया है कि आप तो हर चीज के तलबगार हैं, फिर भी हम आपके गुनाहगार हैं और आप तो हर गीत के तलबगार हैं। और ऐसे ही तलबगार, ऐसे ही सुरीले आवाज के धनी जिन्होंने लगा दी है किशोरदा के गीतों की छड़ी, तो आइए सुनते हैं आपका अगला गीत।

रस का फूलों का मैं बीमार हूं, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूं। और गीतों के तलबगार को सुन रहे हैं आप, यानी हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं नीरज गौड़ अहमदाबाद गुजरात से, आपकी आवाज आपकी पहचान प्रोग्राम में। और अगले गीत में क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं

डिजिटल वॉइस वर्ड के जयपुर रेडियो वर्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के कलाकार और हमारे साथ हैं आज नीरज कोड़ अहमदाबाद गुजरात से। आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस मस्ताने से गीत के बाद आप क्या सुनना चाहेंगे?

और हम यही कहते हैं गीत गा लिया तो क्या, गीत है खता नहीं। किसी गायक ने, किसी सिंगर ने तो बहुत अच्छी तरह से इस गीत को गाया, लेकिन जो गाने वाला है, जिसे शौक है और जो गाना चाहता है, उसको भी हम यहां आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। इसी का नाम है जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान, इसीलिए हमारी ये टैगलाइन है। और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार आपकी आवाज आपकी पहचान में, अहमदाबाद गुजरात के जयपुर रेडियो पर आज गाने आए हैं नीरज गोड़। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत आपकी आवाज में।

किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों हैं खामोशी बरसों हैं तन्हाई। और समय किसी का रास्ता नहीं देखता, वो कहता है कि मैं आ गया हूँ और आप का समय यहीं तक है, इसलिए आप जा सकते हैं। बार बार यही कहता है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, जैसे कि वो दिल है कि मानता नहीं, गीत है ना, उसी तरह से। तो हम चलते चलते बताना चाहेंगे कि नीरज के गीतों को हमारे किन किन श्रोताओं ने पसंद किया है। वडोदरा गुजरात से मंदाकिनी शाह, कोलकाता वेस्ट बंगाल से श्याम बिहारी शर्मा, और फाल्गुनी दबे जूनागढ़ गुजरात से, और जूनागढ़ गुजरात से ही सोनल पारिख। सुबोध शेट्टी दिलिक विदेश से है, अब्रॉड से। पल्लवी आचार्य वडोदरा गुजरात से, हीना मनीष मेहता सुरेंद्रनगर गुजरात से, भारती गुप्ता जगह का नाम नहीं लिखा है, अर्चना सविता जगह का नाम नहीं लिखा है, राजू यादव, वंदना स्नेकुंड महलोत्रा आपने भी जगह का नाम नहीं लिखा है, आप सबका आभार और धन्यवाद। और साथ साथ में धन्यवाद नीरज का कि वो इस मंच पर आए और आपके लिए अपने प्यारे से गीतों की ये सौगात आप तक पहुंचाई, उसके लिए आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: नरगिसे साहिर हो तुम नूर नजर हो जिसे देखकर ही खो जाए ऐसा असर हो पुर नूर हो गया जो भी मिला एक बार तुमसे मैं तुम्हारा काफिया और तुम मेरी बहर हो अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस जिन्हें सिनेमा की क्वीन भी माना जाता है अपनी सौम्यता आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी नमस्कार वड़कम सत श्री अकाल खम्बा खड़ी मैं तनुजा मुंद्रा आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं

फिल्म चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया MD त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों, जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा, आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेनतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत, दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो। फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनुजी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा भी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी न छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का जिक्र हुआ है तो चलिए सुनते हैं ये शाम की तन्हाई।

वाह सज्जाद जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थीं और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गईं। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओ, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

धरती हुई बावरिया, दादुर पपिहा शोर मचाए।

सावन आया, दूर गगन में बिजुरी चमके, दूर गगन में

0: सावन आया तुम ना आए, डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ आरजे भूमिका। कैसे हैं आप जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स, आप सभी को आदाब नमस्कार, वणक्कम प्रणाम। और मेरे साथ है जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चना अग्रवाल, हमेशा की तरह अपने को सिंगर्स के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो की ये टैगलाइन आपको देती है एक सुरीली पहचान। अर्चु रानू के संग इस पहले गीत में रिमझिम की बात हो रही है, सावन के आवन की बात हो रही है, और ये बात कर रहे हैं अर्चु रानू के संग महालेसम। तो आइए सुनते हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का ये पहला गीत, महालेसम और अर्चु रानू की आवाज।

ओ बेचैन करने वाली कहानी हमने सुनी महालेसम और अर्जुन रानू के संग, लेकिन तेरा साथ है तो फिर गीतों की बौछार है, संगीत की बहार है। वो गीत है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और ये मस्त नगमा लुटाने के लिए आ गए हैं अर्जुन रानू के संग अजमेर किंग 124। तो आइए

अंबर को देख के धरती मुस्कुराए और धरती को देख के अंबर, हवा की गूंज में गूंजता है तुम्हारा नाम। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस गीत में आपने सुना अजमेर किंग

आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का एपिसोड और इसमें आवाज के रूप में आपके संग रहती है अर्चना अग्रवाल यानी अर्चू रानू 16। नाजुक सा गीत हमने सुना और इस गीत में राजेश यादव साथ दे रहे थे अर्चू रानू 16 का। और अब आपसे हुए वादे की बात कर लेते हैं। जब भी करते हैं हम वादा आपसे, बस भूल जाते हैं निभाना आपसे। लेकिन ये गीतों का वादा है और इस गीत को तो गाना ही पड़ेगा और सच में मर के भी निभाना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं अजमेर किंग 124 के साथ अर्चू रानू का ये गीत।

अजमेर किंग 124 और अर्जुन रानू की आवाजों में हमने सुना ये सुरीला गीत। तेरे वादे पे अगर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये गीत सुन के हमें चाचा गालिब की याद बरबस आ ही गई। सच में वादा भी क्या इरादा होता है, और हमें तो यही लगता है कि हर वादा टूट जाने के लिए ही होता है। बारिश ने कहा था कि रुकना, मैं फिर आऊंगी, लेकिन प्रतीक्षा में पलक पावड़े अब भी पीछे हैं। शायद ये पहली बयार लेके आई है सावन की ये छड़ी। अगले गीत में हरी नारायण और सुपर सिंगर अर्जुन रानू को सुनते हैं।

वही सावन आएगा, यूं ही हवा का आंचल लहराएगा, धरती की हरियाली और कोयल की कूक का ना भूलने वाला आवाहन, सावन की हर घड़ी और वो सावन की झड़ी हमें याद आती रहेगी। इस गीत में हमने सुना हरि नारायण और अर्जुन रानू की सुरीली आवाजें, और अब सुनते हैं एक ना भूलने वाला गीत भूपेंद्र कौरव और सुपर सिंगर अर्जुन रानू की आवाजों में।

0: भूपेंद्र कौरव और अर्चू रानू 16 को आपने सुना इस ना भूलने वाले गीत में। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी आवाज में गाए हुए गीत अर्चू रानू के संग। अगर आप मेल सिंगर हैं या आप फीमेल सिंगर हैं, तो आप भी अर्चू रानू 16 स्मूल आईडी को ज्वाइन करके उस गीत को जयपुर रेडियो प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के लिए अर्चू रानू के संग गाए हुए उस गीत को हम इसी प्रोग्राम में आपके लिए प्रसारित करेंगे।
1: और भूमिका अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग गाते हैं अकेले, और आइए सुनते हैं अनुराग का ये सुरीला सॉन्ग।

और हमारे श्रोताओं को अनुराग का गीत कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो आइए सुनते हैं। प्यार में जिएंगे और प्यार में ही खो जाएंगे और हो जाएंगे आपके। आइए सुनते हैं अनुराग का ये अगला सॉन्ग।

दुनिया से ना डरने वाले साबित करते हैं, और यही कह रहे थे अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग को अपनी आवाज के साथ। और अब अनुराग का अगला गीत।

बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। और आने की खुशी में गीत गा रहे थे हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं अनुराग की आवाज यहीं तक।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिर वही सावन आएगा, यूं ही हवा का आंचल लहराएगा, धरती की हरियाली और कोयल की कूक का ना भूलने वाला आवाहन, सावन की हर घड़ी और वो सावन की झड़ी हमें याद आती रहेगी। इस गीत में हमने सुना हरि नारायण और अर्जुन रानू की सुरीली आवाजें, और अब सुनते हैं एक ना भूलने वाला गीत भूपेंद्र कौरव और सुपर सिंगर अर्जुन रानू की आवाजों में।

भूपेंद्र कौरव और अर्जुन रानो 16 को आपने सुना इस ना भूलने वाले गीत में। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी आवाज में गाए हुए गीत अर्जुन रानो के संग। अगर आप मेल सिंगर हैं या आप फीमेल सिंगर हैं, तो आप भी अर्जुन रानो 16 स्मूल आईडी को ज्वाइन करके उस गीत को जयपुर रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के लिए अर्जुन रानो के संग गाए हुए उस गीत को हम इसी प्रोग्राम में आपके लिए प्रसारित करेंगे। तो आज का ये एपिसोड आपके संग यहीं तक। आरजे भूमिका और सुपर सिंगर अर्जुन रानो को अनुमति दें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों।

की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हरने जी।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंदे जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता। आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

ही सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे और हमारे गीत ही जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का नाम है किस लिए इसलिए, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके मन में बड़े सवाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर सवाल कम हो जाते हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे मासूम, कई क्यों से भरे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे जैसे हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, और किसी के लिए दिल क्यों धड़कता है। ऐसे ही मासूम सवालों से भरे हम आपका स्वागत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो है क्यों चल।

भाई अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं, आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तो ही प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे और हमारे गीत ही जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का नाम है किस लिए इसलिए, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके मन में बड़े सवाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर सवाल कम हो जाते हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे मासूम, कई क्यों से भरे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जैसे हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, और किसी के लिए दिल क्यों धड़कता है। ऐसे ही मासूम सवालों से भरे हम आपका स्वागत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो है क्यों चल।

भाई, अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं, आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी प्यार में दुख भी होता है और एक एहसास होता है इंतजार का, या कभी कभी ऐसे भी एहसास होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, तो ऐसे में दिल गाता है किस लिए, किसका रास्ता देख रहे हैं हम।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तो ही प्यार दूं, गोरी भैया तो पेवार दूं, किस लिए तू

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम भक्ति धारा, और भक्ति धारा में अपनी भक्ति भरे भजनों को लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से अलका उपाध्याय। वेलकम है अलका जी आपका, आपके सुरीले भजनों का।

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि जो सुंदर है, जो शिव है, जो सर्वज्ञ है और जो अनिवर्चनीय है, उसको प्रणाम है, उसको हरि ओम है। और ये सुरीला स्वर आपने सुना इस भजन में, अलका उपाध्याय हमारे संग कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, भक्तिधारा प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगला भजन अलका जी से।

राम का स्वागत कर रही हैं अलका उपाध्याय जयपुर रेडियो के इस मंच पर। और ये भी संगीत का घर है, मेरा ही घर है। और यहाँ राम पधारे हैं, स्वागत है हमारी आज की सिंगर

जयपुर रेडियो की चौखट पर चल के आ जाई हैं अलका उपाध्याय अपने सुरीले भजनों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान। पहली बार अपने भजनों के साथ हमारी सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय। राम जी के स्वागत और अलका जी के स्वागत के बाद अगली प्रस्तुति अलका जी की।

वृंदावन धाम पधारो, वृंदावन का आमंत्रण इस भजन के माध्यम से दे रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की सुरीली सिंगर। अपनी आवाज में आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का प्रोग्राम भक्ति धारा। आइए सुने अलका उपाध्याय का ये अगला सुरीला भजन।

आना आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मुझे चाहकर समझ निहार, और मुझे चाहकर समझ निहार। चाहकर का मतलब आप जानते हैं, और चाहकर का मतलब भी, उसका अर्थ भी आप जानते हैं, और दोनों में वो प्रेम है, वो रस है, और उसी रस से सराबोर है ये भजन। अलका जी की आवाज में हमने सुना, आइए सुनते हैं आपका अगला सुरीला भजन, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से।

मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, अब तो मुझे पहचान। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दे तान। और ये मधुर वचन कह रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की मेहमान। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम।

कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शंभु, कोटि कोटि नमन दिगंबरा, जो सत्य है, जो सुंदर है, जो शिव है, उसको सदा कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। और ये वंदन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम। शिव

दुर्गा चालीसा का पाठ सुना रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं भक्ति धारा का ये अगला सोपान। आवाज फिर एक बार हमारी आज की सिंगर अलका

वाले ने तो सारी दुनिया को ही घेर लिया है, तो पनघट की बात ही क्या करें। फिर जाइए और फिर पानी लेके आइए। मुरली वाले का तो यही कमाल है, पूरी दुनिया को घेर लिया है उसने और उसी के वश में है हम, उसी के वशीकरण में है। भक्ति धारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और हमारी भक्ति धारा की सिंगर है आज अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आइए सुनते हैं अगला सुरीला भजन।

भवसागर से बेड़ा पार उतारना है तो हमें अलका जी के भजनों को सुनना है और शिव शंकर के ध्यान में मगन होकर यदि हम इसी तरह से गाते रहेंगे तो सच में इस संसार सागर से अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम। हमारी आज की भक्ति गायन की सिंगर हैं, गायिका हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज़

संगीत के मन मंदिर की, शिव के मन मंदिर की पूजा कर रही थी। इस मंच पर जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, प्रोग्राम भक्ति धारा में आज की सुरीली भक्ति गायिका रही अलका उपाध्याय, अपने सुरीले गीतों के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हम पुराने जमाने के हमारे टाइम चला करते थे रेडियो, अब जमाना इंटरनेट का है, पॉकेट में एंड्रॉइड फोन का है और दुनिया भर के ऐप आ गए हैं और तो रेडियो भी अब ऐप पे आ चुका है, उसका नाम है जयपुर रेडियो। अरे ऐप डाउनलोड कर लो।
2: दोस्तों, कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन।

A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful episode of Rocking Raga with Jaipur Radio Station. I am Gunja and today I have the pleasure of being your hostess of the day. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगी, बल्कि आप सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हमारा आज का ये खास प्रोग्राम मोहब्बत की चाशनी में भिगोया हुआ है। तो आज की हमारी थीम है मोहब्बत। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई साथी सिंगर्स, एक से बढ़कर एक सिंगर्स, जो हमारे लिए ला रहे हैं प्यार भरे गीतों की माला। तो आइए हमारे इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और हमारे बीच सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे सिंगर्स जोड़ी को, जिनमें ज्योतिर्मयी और मैं गुंजा, आपकी दोस्त और आज आपकी होस्ट, हम दोनों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म बॉर्डर से ये प्यारा सा गीत।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे और हमारे गीत ही जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का नाम है किस लिए इसलिए, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके मन में बड़े सवाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर सवाल कम हो जाते हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे मासूम, कई क्यों से भरे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जैसे हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, और किसी के लिए दिल क्यों धड़कता है। ऐसे ही मासूम सवालों से भरे हम आपका स्वागत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो है क्यों चल।

भाई, अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं। आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी प्यार में दुख भी होता है और एक एहसास होता है इंतजार का, या कभी कभी ऐसे भी एहसास होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, तो ऐसे में दिल गाता है किस लिए, किसका रास्ता देख रहे हैं हम।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तो ही प्यार दूं, गोरी भैया तो पेवार दूं, किस लिए तू

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए आज से सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और मैं आज आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई हूं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम का विषय है किस लिए इसलिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में, हमारे मन में हमारे साथ सवाल चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, और इनके जवाब कभी हमें मिल जाते हैं और कभी हमें गीतों की पंक्तियों में इनके जवाब मिलते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें हमारे गीत ही सवाल पूछेंगे और हमारे गीत ही जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का नाम है किस लिए इसलिए, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके मन में बड़े सवाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर सवाल कम हो जाते हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे मासूम, कई क्यों से भरे सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जैसे हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, और किसी के लिए दिल क्यों धड़कता है। ऐसे ही मासूम सवालों से भरे हम आपका स्वागत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो है क्यों चल।

भाई, अब जब जिंदगी के सवाल दिल तक पहुंच गए हैं तो सवाल हवा मौसम तक नहीं रहते, वो बात दिल तक पहुंच जाती है और सवाल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्यार में पड़े हर इंसान ने कभी ना कभी ये अपने आप से प्रश्न जरूर किया होगा कि आखिर मैंने प्यार क्यों किया। तो आइए सुनते हैं

कहते हैं हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब इश्क हो ही गया है तो मोहब्बत अपनी मौजूदगी का एहसास धीरे धीरे दिखाने लगता है और दिल भी मुस्कुरा के ये समझ जाता है कि हाँ इसलिए शायद मुझे प्यार हुआ है, और दिल ये समझ जाता है कि हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा।

अब ये बात तो हम सबको ही पता है कि प्यार में पड़ना कोई फूलों की चादर तो है नहीं। आपको इश्क है और इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इंसान का मन कभी कभी दुखी भी होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी प्यार में दुख भी होता है और एक एहसास होता है इंतजार का, या कभी कभी ऐसे भी एहसास होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, तो ऐसे में दिल गाता है किस लिए, किसका रास्ता देख रहे हैं हम।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब, अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए। सुन रहे हैं आप समृद्धि चतुर्वेदी के साथ, सियाटल यूएसए से हमारे साथ, हमारे संग अपनी प्रतिक्रियाएं यानी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?

तो हर इंतजार का अंत होता है, और जब दुखी मन होता है तो फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को भी समझ आता है और वो एक पुकार लगाते हैं और हमारा भारी मन फिर से खुश हो जाता है। आज के हमारे किस लिए इसलिए प्रोग्राम के हम समापन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं। इसलिए आजा पिया तो ही प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपने सुना प्रोग्राम किस लिए इसलिए, और इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लेके आई थी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये आज का आयोजन, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ आरजे भूमिका। कैसे हैं आप जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स, आप सभी को आदाब नमस्कार, वणक्कम प्रणाम। और मेरे साथ है जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चना अग्रवाल, हमेशा की तरह अपने को सिंगर्स के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो की ये टैगलाइन आपको देती है एक सुरीली पहचान। अर्चु रानू के संग इस पहले गीत में रिमझिम की बात हो रही है, सावन के आवन की बात हो रही है, और ये बात कर रहे हैं अर्चु रानू के संग महालेसम। तो आइए सुनते हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का ये पहला गीत, महालेसम और अर्चु रानू।

बेचैन करने वाली कहानी हमने सुनी महालेसम और अर्जु रानू के संग, लेकिन तेरा साथ है तो फिर गीतों की बौछार है, संगीत की बहार है। वो गीत है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और ये मस्त नगमा लुटाने के लिए आ गए हैं अर्जु रानू के संग अजमेर किंग 124। तो आई

अंबर को देख के धरती मुस्कुराए और धरती को देख के अंबर, हवा की गूंज में गूंजता है तुम्हारा नाम। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस गीत में आपने सुना अजमेर किंग और अर्जु रानू का स्वर। कांपते होठों की एक और कहानी सुनते हैं अर्जु रानू

आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का एपिसोड और इसमें आवाज के रूप में आपके संग रहती है अर्चना अग्रवाल यानी अर्चू रानू 16। नाजुक सा गीत हमने सुना और इस गीत में राजेश यादव साथ दे रहे थे अर्चू रानू 16 का। और अब आपसे हुए वादे की बात कर लेते हैं। जब भी करते हैं हम वादा आपसे, बस भूल जाते हैं निभाना आपसे। लेकिन ये गीतों का वादा है और इस गीत को तो गाना ही पड़ेगा और सच में मर के भी निभाना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं अजमेर किंग 124 के साथ अर्चू रानू का ये गीत।

अजमेर किंग 124 और अर्जुन रानू की आवाजों में हमने सुना ये सुरीला गीत। तेरे वादे पे अगर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये गीत सुनके हमें चाचा गालिब की याद बरबस आ ही गई। सच में वादा भी क्या इरादा होता है, और हमें तो यही लगता है कि हर वादा टूट जाने के लिए ही होता है। बारिश ने कहा था कि रुकना मैं फिर आऊंगी, लेकिन प्रतीक्षा में पलक पावड़े अब भी पीछे हैं। शायद ये पहली बयार लेके आई है सावन की ये छड़ी। अगले गीत में हरी नारायण और सुपर सिंगर अर्जुन रानू को सुनते हैं।

फिर वही सावन आएगा, यूं ही हवा का आंचल लहराएगा, धरती की हरियाली और कोयल की कूक का ना भूलने वाला आवाहन, सावन की हर घड़ी और वो सावन की झड़ी हमें याद आती रहेगी। इस गीत में हमने सुना हरि नारायण और अर्जु रानू की सुरीली आवाजें, और अब सुनते हैं एक ना भूलने वाला गीत भूपेंद्र कौरव और सुपर सिंगर अर्जु रानू की आवाजों में।

0: भूपेंद्र कौरव और अर्चू रानू 16 को आपने सुना इस ना भूलने वाले गीत में। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी आवाज में गाए हुए गीत अर्चू रानू के संग। अगर आप मेल सिंगर हैं या आप फीमेल सिंगर हैं, तो आप भी अर्चू रानू 16 स्मूल आईडी को ज्वाइन करके उस गीत को जयपुर रेडियो प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के लिए अर्चू रानू के संग गाए हुए उस गीत को हम इसी प्रोग्राम में आपके लिए प्रसारित करेंगे।
1: और भूमिका अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग गाते हैं अकेले, और आइए सुनते हैं अनुराग का ये सुरीला सॉन्ग।

और हमारे श्रोताओं को अनुराग का गीत कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो आइए सुनते हैं। प्यार में जिएंगे और प्यार में ही खो जाएंगे और हो जाएंगे आपके। आइए सुनते हैं अनुराग का ये अगला सॉन्ग।

दुनिया से ना डरने वाले साबित करते हैं, और यही कह रहे थे अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग को अपनी आवाज के साथ, और अब अनुराग का अगला गीत।

बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। और आने की खुशी में गीत गा रहे थे हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं अनुराग की आवाज यहीं तक।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिर वही सावन आएगा, यूं ही हवा का आंचल लहराएगा, धरती की हरियाली और कोयल की कूक का ना भूलने वाला आवाहन, सावन की हर घड़ी और वो सावन की झड़ी हमें याद आती रहेगी। इस गीत में हमने सुना हरि नारायण और अर्जु रानू की सुरीली आवाजें, और अब सुनते हैं एक ना भूलने वाला गीत भूपेंद्र कौरव और सुपर सिंगर अर्जु रानू की आवाजों में।

भूपेंद्र कौरव और अर्चू रानू 16 को आपने सुना इस ना भूलने वाले गीत में। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी आवाज में गाए हुए गीत अर्चू रानू के संग। अगर आप मेल सिंगर हैं या आप फीमेल सिंगर हैं, तो आप भी अर्चू रानू 16 स्मूल आईडी को ज्वाइन करके उस गीत को जयपुर रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के लिए अर्चू रानू के संग गाए हुए उस गीत को हम इसी प्रोग्राम में आपके लिए प्रसारित करेंगे। तो आज का ये एपिसोड आपके संग यहीं तक। आरजे भूमिका और सुपर सिंगर अर्चू रानू को अनुमति दें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, अभिव्यक्ति का आंचल। और हमारे संग है, हमारे साथ हैं विनीता राहुरीकर।
1: नमस्ते आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। मेरा
0: साहित्यकार हैं आप, आज को लिखती है, बीते कल को कहती है और समय की साक्षी बनकर सच का बयान करती है। एक ऐसी कथाकार, उपन्यासकार, कवित्री और न जाने क्या क्या, लगभग प्रत्येक साहित्यिक विधा को आपने अपने शब्दों से आकार दिया है। आज हम वेलकम कर रहे हैं विनीता जी का, और अभिव्यक्ति का आंचल में आज हम बातचीत करेंगे विनीता जी से। जितना मैं जानता था उतना तो मैंने कह दिया, अब आप और श्रोता हैं और मैं भी सुनने वाला हूं, श्रोता ही, तो अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय जरूर दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोपाल से हूँ और गृहिणी हूँ, लेकिन मन में बचपन से कुछ अभिव्यक्ति की छटपटाहट थी और अक्षर मुझे बहुत प्रभावित करते थे। जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था तब से मुझे अक्षर प्रभावित करते हैं। जब माँ मुझे बच्चों की किताब में से कहानी पढ़कर सुनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे वो कहानी ऐसी याद हो गई थी कि मैं पढ़ना नहीं आता था लेकिन उस लाइन पर रखकर बराबर वही लाइन दोहराती थी, तो माँ को भी बहुत आश्चर्य होता था। फिर पिताजी का मेरे विदेश में चयन हो गया, वो गणित के प्रोफेसर हैं, और हम सब लोग विदेश चले गए। जी, तो एक तरह से मतलब मेरा स्कूलिंग, जो प्राथमिक मेरी शिक्षा थी, वो रुक गई, लेकिन साथ में माँ पुस्तकें लेकर गई थी तो थोड़ा सा मुझे घर पर पढ़ाती रहती थी। और 9 बरस की उम्र में मुझे याद है जी कि मैं बहुत छोटी सी थी, भाई मेरा भारत में था, पिताजी कॉलेज गए हुए थे, माँ अपने काम में लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में पेन आ गया और एक कोरे कागज पर मैंने ऐसी कुछ चित्र बनाए और एक चित्र कथा सी लिख दी, शायद वहीं से कुछ लेखन का बीज पड़ गया। तो इस तरह से वो खैर वो कागज भी खो गया, वो कहानी भी खो गई, लेकिन जो अभिव्यक्ति का बीज था वो शायद कहीं मन में दबा रह गया था। 2010 में,
0: बिल्कुल
1: जी, 2010 में पता नहीं क्यों मन से एक आवाज आई कि कुछ करना चाहिए। मैंने ऐसे ही अपने स्वांत सुखा एक कहानी लिख के रखी थी
0: जी।
1: तो मेरे भाई ने पढ़ी और मेरी एक सहेली ने पढ़ी, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम अच्छा लिखती हो, इसे कहीं भेज के देखो। तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि कोई पढ़ेगा तो मतलब मैं किसी पत्रिका में भी भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये क्या लिख के रखे
0: जी।
1: तो इस तरह से मैंने किसी तरह से उसको टाइप करवाया कहानी को, और फिर मैंने उस पत्रिका में भेज दिया और मैं भूल गई, मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन वो कहानी छप गई। और फिर इस तरह से एक मन में आत्मविश्वास आया, अभिव्यक्ति की इच्छा और बलवती हुई और इस तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई।
0: एक लेखक के रूप में आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, इसका यहाँ से शुरुआत मान सकते हैं हम। ऐसा लगा तुम कहीं आसपास ही हो, ऐसा लगा कि तुम कहीं आसपास ही हो, अभी अभी बासंती हवा का एक झोंका मुझे छू गया। आपने फेसबुक पे, शायद आपको याद आया होगा या नहीं आया,
1: जी,
0: ये पंक्ति आपने लिखी थी, और
1: जी,
0: उसके साथ जो आपने स्केच बनाया था वो बहुत खूबसूरत था। इन शब्दों को कहूं या उस स्केच को कहूं, वो दोनों ही मन में उतर रहे थे, और जिसका भी साहित्यिक मन हो या शायद कहीं ईश्वर से जुड़ी कोई प्रेरणा हो तो वो उसे पढ़ के सच में लगता है कि हाँ, कुछ बात तो है इस लेखन में, कुछ बात तो है इस चित्रांकन में।
1: जी।
0: तो हमें ऐसा लगा था। तो ये चित्रों के साथ लिखना, और बाल साहित्य भी आजकल आप बहुत लिख रही हैं और सामाजिक साहित्य भी लिख रही हैं, तो क्या क्या आप लिख लेती हैं और किस तरह से ये साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ी, उसको हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, तो मार्च 2010 में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद फिर मुझे एक पत्र मिला कि अपना फोन नंबर दीजिए पत्रिका की तरफ से। फिर मैंने उन्हें फोन नंबर भेजा। तब तक मुझे मेल वगैरह करना नहीं आता था, मैं टाइप करके
0: जी
1: बाय पोस्ट भेजती थी कहानी जी। फिर उन्होंने मेरा फोन, और फिर जब उनका फोन आया संपादक का वहां से, तो उन्होंने, मतलब बहुत खुश थी मेरी कहानी पढ़कर कि अरे आप कहाँ थी अब तक, अभी इससे पहले क्यों नहीं मिली। तो वो उनकी जो खुशी थी मेरी रचना के ऊपर, तो वो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। तो कभी ऐसा भी होता है कि पत्रिकाओं में कहानियां चयनित नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा मन हताश भी हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन फिर भी जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का एक आशीर्वाद सा लगता है कि ये लेखन मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। तो उसे और उनकी इच्छा है, तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी है। तो लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं लिखती रही हूं।
0: कहानी की बात हुई, कविताएं भी आप रचती हैं और इनकी शुरुआत तो आपने बताई, लेकिन जो बड़े स्तर की कहानी है और कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनका श्री गणेश कब हुआ, कब शुरुआत हुई उनकी?
1: जी, लगभग वही 2010-11 से शुरुआत हुई है। फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती गई। पहले मैं कहानियां और कविताएं ही लिखती थी।
0: जी
1: फिर 2015 में लघु कथा से मेरा परिचय हुआ। एक लघु कथाकार भोपाल में आई थी, तो
0: जी
1: उनके साथ जब एक गोष्ठी हुई तो लघु कथाओं से परिचय हुआ। तो मैंने फिर उस समय उनसे प्रेरणा लेके लघु कथाएं लिखना शुरू किया, और फिर ऐसे ही फेसबुक समूहों में ही उन्हें पोस्ट करती थी। वहां पे कुछ बड़े लघु कथाकारों ने पढ़ा, उन्होंने सराहा, और बहुत जल्दी ही भारत के 100 लघु कथाकारों में एक नाम भगवान की आशीर्वाद से मेरा भी रहा। तो
0: बधाई।
1: इस तरह से जी धन्यवाद, लघु कथाएं लिखना शुरू हुआ। फिर कुछ गोष्ठियों में, एक हैं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक आदरणीय महेश सक्सेना जी भोपाल में, उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ों के लिए इतना अच्छा लिखती हो, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती। मैंने कहा मैंने बच्चों की कहानियां कभी लिखी नहीं और कभी सोचा भी नहीं उस दृष्टि से। बोले नहीं, तुम लिखो और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा लिखोगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। ये बात है फरवरी 2016 की, और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में संस्था का एक वार्षिकोत्सव है, बोले उसमें किताब ले आओ। आप सोच सकते हैं कि जिसने कभी बच्चों की कहानी नहीं लिखी, उसके लिए 2 महीने में कहानी लिखकर किताब भी ले आना,
0: ले आना,
1: बोले
0: बिल्कुल
1: हाँ, बहुत असंभव सा काम था। लेकिन पता नहीं क्यों
0: वो प्रेरणा
1: मुझे
0: भी थी
1: इतनी
0: एक साथ
1: प्रेरणा
0: साथ में।
1: मिली।
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने न सिर्फ कहानियां लिखी, उनके चित्र भी बनाए और उसका आवरण चित्र भी बनाया, और वास्तव में अप्रैल के कार्यक्रम में पता नहीं कैसे, लेकिन पुस्तक का विमोचन भी हो गया। तो इस तरह से बाल साहित्य की शुरुआत हुई, लिखने की, बच्चों के लिए लिखने की शुरुआत हुई।
0: ये कौन सी विधा है जो कुछ लिखा हुआ आपका वो सीधे दिल को छू जाता है, तो उसमें आप तो लिखती हैं, उसके साथ और कौन होता है जो आपको लिखवाता है?
1: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब लिखने के बाद मेरी कहानी या कोई कविता कुछ भी रचना छपती है, जब मैं उसको पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कैसे लिख लिया, कब लिख लिया। तो
0: बिल्कुल
1: ये तो लगता है कि जी बिल्कुल, कि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई तो एक प्रेरणा है या कोई तो एक दिव्य शक्ति सी है जो मुझसे लिखवा लेती है,
0: भीतर बैठी हुई है। जी
1: भीतर बैठी हुई है, जो बिल्कुल जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बिल्कुल अपने आप के साथ या मेरे साथ वही दिव्य शक्ति होती है और कुछ भी नहीं होता, और उस समय ही कुछ लिखा जाता है। फिर मैं जब उठती हूँ लिखकर, तो फिर मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लिखती हूँ। तो कोई तो शक्ति है जो लिखवा लेती है मुझसे।
0: साइंस और विज्ञान की शब्दावलियां जो है आपके उस कविताओं में, रचनाओं में आता है, प्रेम, प्यार, विरह, कही अनकही टीस, जून की छुट्टियां, ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो आपके दिमाग के कोश में कहीं घर की हुई हैं, वो कहां से निकल के आ जाती है और कैसे लिखती हैं आप?
1: जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, हाँ मेरी कहानियों में मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं विज्ञान की छात्रा रही हूँ। मैंने बॉटनी में MSc किया है और
0: बिल्कुल
1: प्लांट पैथोलॉजी और एयर माइक्रोफ्लोरा में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो अपने विषय से मुझे बहुत प्यार था जी, बॉटनी से मतलब जो विज्ञान विषय था उससे मुझे बहुत प्यार था। तो पढ़ाई मैंने उसी में की है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं विदेशों में भी इतने साल रही, दुनिया के 17-18 देशों में घूमी, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी से और अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार था, हिंदी भाषा से। मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरे घर में पूरे समय बस मराठी में ही बात की जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए मुझे हिंदी भाषा बहुत, मतलब एक अंदर से जो अभिव्यक्ति निकलती है वो हिंदी भाषा में ही निकलती, तो मुझे अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्रेम है।
0: बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे कि साइंस और साहित्य का समागम कैसे हो गया।
1: ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साइंस मेरे जीवन में आने से पहले शायद साहित्य मेरे मन भीतर था, क्योंकि 8 या 9 साल की आयु में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, और चित्रांकन की भी शुरुआत लगभग वहीं से हुई कि माँ ने एक बार भाई की पुस्तक से यशोदा मैया का चित्र बनाया था, तो उनको चित्र बनाते देखकर मैं इतना प्रभावित हुई, तब तक मैंने कभी चित्र नहीं बनाया था, मैं बहुत छोटी सी थी, तो उनको चित्र बनाते देख मैं इतनी प्रभावित हुई कि उसके बाद बस पेन और कागज लेके मैं सारा दिन प्रयत्न करती रहती थी। मैं यशोदा मैया और कृष्णा का ही चित्र बनाती थी, और कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कहीं ना कहीं मेरी सारी कविताओं में, विशेषकर जो प्रेम कविताएं मैं लिखती हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मेरे कान्हा जी की छवि होती है, या कहीं ना कहीं मन में उनके लिए एक भाव होता है, आप उसको भक्ति कहिए या प्रेम कहिए, तो कहीं ना कहीं कविताओं में वही अभिव्यक्ति पाता है।
0: बिल्कुल, वो चित्र के साथ जो सामंजस्य होता है ना, वो बड़ा अनूठा होता है, बड़ा दुर्लभ सा होता है, सबके साथ ऐसा हो,

0: में का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे एआई का युग कहने लगे हैं, वो साहित्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे में हम उसका समायोजन आप कैसे करती हैं और हमें कैसे करना चाहिए, आज के सब जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, उनके लिए एक नसीहत हो सकती है, एक प्रेरणा हो सकती है, तो आप इसके बारे में हमें जरूर बताइए।
1: जी देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो हमारे सामने नए नए विषय आते हैं, नई नई सामाजिक परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ व्यक्ति भी बदलता है, समाज भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं। 2010 में जैसे हम रचनाएं में टाइप करवा कर और बाय पोस्ट भेजती थी, फिर व्हाट्सएप आया, फिर मेल आया, फिर मुझे मतलब टाइपिंग करना सीखा हमने, तो इस तरह से फिर इसी तरह से जब हम तकनीकी रूप में या इस परिवेश में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने और ज्यादा विषय खुलते जाते हैं कहानियों के और रचनाओं के लिए, अभिव्यक्ति के, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हमारे सामने आते हैं, तो उन सबका हमारे लेखन पर प्रभाव तो पड़ता है। पहले फेसबुक नहीं था, तो अब कहानियों में के विषय में हमको फेसबुक मिल गया है, जी मतलब मेल मिल गया है, उसके बाद में अभी जो बहुत करंट रूप से चल रहा है वो एआई का जमाना है, कुछ लोग एआई से रचनाएं लिखवा लेते हैं। मुझे लगता है कि आपकी रचना भले ही आप कम लिखो लेकिन वो आपकी जो मन के भीतर की से आती है, जो आपकी मौलिक अभिव्यक्ति है, वो रचनाओं में आनी चाहिए।
0: उसकी बिल्कुल बिल्कुल मौलिकता रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए,
1: मौलिकता रहनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप जो सोचते हो सारी परिस्थितियों को लेकर वो आपका अपना मौलिक दृष्टिकोण है, आपके मौलिक विचार है। मुझे याद आता है जब मैंने बिल्कुल नया नया लिखना शुरू किया था, तो उस समय जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, कथाकार है देश की, मालती जोशी जी,
0: जी बिल्कुल
1: जी जी, तो मैं उनसे मिलने गई थी, उनसे मार्गदर्शन लेने गई थी, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि विनीता कम लिखना, भले ही एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने निकल जाए कि तुम कुछ लिख नहीं पाओ, लेकिन जब भी लिखना तो ऐसा लिखना जो सीधे तुम्हारे मन से आ रहा हो, जब तक बिल्कुल अंतर्मन से अभिव्यक्ति न आए तब तक मत लिखना, क्योंकि जो अंतर्मन से अभिव्यक्ति आएगी वही तुमको पहचान दिलाएगी या वही समाज में मतलब लोगों को भी मन तक पहुंचेगी। तो मुझे उनकी ये बात, उस बात ने बहुत प्रभावित किया।
0: बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे तो, वही ईश्वरीय अभिव्यक्ति है जो आपके द्वारा समाज में और समय के साथ बह रही है।
1: बिल्कुल, तो बस ऐसे ही कि कोई बहुत लिख रहा है तो हम भी बहुत सारा लिखें या हर विषय पर लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लेखक को वही लिखना चाहिए जो बिल्कुल उसके अंतर्मन की अभिव्यक्ति है, तो वही उसको भी संतुष्टि देगी और वही पाठक के मन तक भी पहुंचेगी।
0: बिल्कुल, आपकी रचनाओं में ये चीज देखने को मिलती है कि आपने कहीं कोई जो है किसी का पीछा नहीं किया है, किसी की देखा देखी नहीं की है, एक अद्भुत मौलिकता जो होती है और जो है, जो देखा, जो सहा, जो महसूस किया, उसी सब चीजों को आपने अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप आकार दिया, तो ये खास बात आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है और वही किसी लेखक की मौलिकता की पहचान बन सकती है, हो सकती है मेरे ख्याल में।
1: जी,
0: क्या सोचते हैं आप?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, बिल्कुल सही है जी।
0: एक कथाकार के रूप में उसको अपनी बात तो कहनी ही है, उसके साथ साथ उसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने साथ रखना है और आसपास के लोगों के मन में छुपी बातों को कहना है, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कविता रच रहा हो या किसी अन्य विधा में लिख रहा हो, तो क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ और इसलिए मैं मतलब मुझे कहानी विधा में अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत सरल सहज लगता है, तो उस पर मैं अगर कोई कोई घटना है या कोई समस्या है या कोई उलझने हैं जैसे रिश्तों की या जीवन की, तो उसके लिए मैं यही प्रयत्न करती हूँ कि उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप में पात्रों के माध्यम से कहानी में उसको अभिव्यक्त करके उसका कोई उस

0: समस्या का कोई एक निदान दूं पाठकों को, या समाधान, बिल्कुल जी, उसका कोई समाधान प्रस्तुत करूं पाठकों को, या मैं ये प्रयत्न करती हूँ कि मेरी कहानियों में कोई एक अच्छा संदेश जाए। मैं इसका जरूर कोशिश करती हूँ कि कहानियों के माध्यम से समाज को या लोगों को एक अच्छा सा संदेश जाए, फिर उनके रिश्ते सुलझ जाए, या उनकी मन की कोई गांठ सुलझ जाए, उनके कोई किसी समस्या का समाधान उनको मिल जाए, तो मुझे वहां पर अपना लेखन सार्थक लगता है। एक घटना सुनाती हूँ आपको। मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी स्पर्श की भाषा,
1: जी
0: तो जी उसमें मैंने ये बताया था कि एक माँ है, वयोवृद्ध हो चुकी है, बच्चे अपने अपने दुनिया में हैं, तो बेटी मिलने जाती है। उस दिन बेटी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो एक माँ का हाथ पकड़ के उनके कंधे पर सिर रख दूं, तो बेटी ऐसी पास बैठ जाती है, माँ का हाथ पकड़ कर कंधे पर सर रख देती है। वो उस बात को उतना महत्व नहीं देती, लेकिन दूसरे दिन माँ का फोन आता है और माँ बिल्कुल भीगे स्वर में वो कहती है कि बेटा तुमने कल मुझे, मेरे पास बैठी, मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पर सर रखा। बोले मन को इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। तो बोले बहुत धन्यवाद। तो उसको लगता है कि अरे स्पर्श भी कितना महत्वपूर्ण
1: है। जरूरी
0: जी,
1: है,
0: बिल्कुल जी। ये कहानी पढ़कर मुझे एक माँ का संदेश मिला फेसबुक पर कि विनीता जी, बोले मैं भी ऐसी थी, लेकिन कल मेरी बेटी आई तो मतलब मैंने अपनी बेटी को पास बिठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसको प्यार किया, तो बोले इतनी खुश हुई मेरी बेटी, बोले माँ आज तुमको क्या हो गया। और बोले फिर हम दोनों ने उस पल को बहुत मन से मतलब जिया, तो बोले हम दोनों माँ बेटी को इतना अच्छा पल देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल,
0: मुझे बहुत अच्छा
1: वो जो स्पर्श होता है वो हम आशीर्वाद के रूप में बच्चों को या बड़ों से हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, देते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, तो वो जो है उसमें एक मनोवैज्ञानिक समझ तो है ही, उसके साथ कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि हम रोमांचित हो जाते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, हक करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो वो अपने आप में एक जरूरी प्रक्रिया है। हम उससे यदि दूर होते हैं तो हमारे संबंध, हमारे रिश्ते भी शायद दूर या ज्यादा नजदीक नहीं होते, दूरी बना लेते हैं शायद।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरा सोचना तो यही है जी।
0: हाँ, और कहीं ना कहीं हम भी स्वयं में अकेले से होते चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, किनारा किनारे पे हो जाते हैं एक दूसरे, एक दूसरे के छोर पे जाके हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन उनको महसूस नहीं कर सकते। महसूस हम तभी करेंगे जब हम बिल्कुल पास होंगे, आसपास होंगे। तो इस बात पे तो हम कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी कोई कविता, कोई रचना, कोई ऐसी विधा की बात जो हमारे श्रोता भी उस चीज को अपने कानों से स्पर्श कर सके।
0: जी जी बिल्कुल, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हाँ, कविता का शीर्षक है यादों की कतरने।
1: वाह।
0: आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने, आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने, बिखेर देती हूँ पलंग पर और फिर एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से, एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से, सहलाती हूँ। सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, मगर तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों की ये यादें ही हैं, जिनकी कतरनों के साथ जी लेती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा साथ भी।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत सजीव सी कविता और सजीली सी, बिल्कुल महकती सी रचना है ये। इसको सुन के हमारे श्रोता भी अपने अपने कोने में चले गए होंगे और उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया होगा।
0: धन्यवाद।
1: कहानी के बाद जो कुछ लिखा और कुछ पढ़ा आपने, तो कुछ कहानियों के नाम, कुछ कविताओं के, रचनाओं के नाम हमारे श्रोताओं के लिए, और वो कहाँ अवेलेबल हो सकती हैं, किन किन पत्रिकाओं में आप, वैसे तो फेसबुक पे दिखाई देती हैं आप सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र। एक वो आया करता था अखबार में पहले कॉलम, पर आजकल नहीं आता। तो इसी तरह से जो है वो आपकी रचनाएं आजकल यत्र तत्र सर्वत्र देखने पढ़ने को मिल जाती है। तो हमारे जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन के आपको पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ बताएं, आपके कहाँ अवेलेबल होंगी आपकी रचनाएं?
0: जी मैंने दो उपन्यास भी लिखे हैं, वैसे तो पांच लिखे हैं जी, लेकिन दो प्रिंट माध्यम में है। तो एक उपन्यास से जो भारत के मतलब कमांडो फौजी कमांडो के जीवन पर है,
1: बहुत बढ़िया,
0: वो उसका नाम है जी एक जिंदगी दो चाहते, हिंदी में है
1: जी।
0: और यही इसी का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित है डायमंड बुक्स दिल्ली से, टू लव्स ऑफ माय लाइफ, ये अमेजन पर उपलब्ध है। और दूसरा उपन्यास कर्म चक्र है, ये भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और अमेजन पर दर्शकों श्रोताओं को मिल सकता है, पाठकों को
1: जी।
0: और इसके अतिरिक्त जो कर्म चक्र हिंदी वाला जो संस्करण है
1: जी,
0: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुकू FM, काफी
1: लोकप्रिय
0: है, प्रसिद्ध है। हाँ कुकू FM काफी लोकप्रिय, उस पर ये इसका ये ऑडियो रूप में पूरा उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त प्रतिलिपि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मेरी काफी सारी रचनाएं और पांचों उपन्यास वहां पढ़ने में मिल सकते हैं। वहां पर काफी सारी कहानियां भी हैं और पांचों उपन्यास मेरे प्रतिलिपि पर लिखे हुए हैं। तो अगर पाठक चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मातृभारती पर है और इसके अलावा मैं गृह शोभा, मेरी सहेली और पहला अंतरा और कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखती रहती हूँ। अभिभूम स्वर में लिखती हूँ तो यहाँ पर भी मेरी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। और कुछ बाल पत्रिकाएं भी हैं जिनमें कहानियां आती हैं, जैसे अभी बाल किलकारी में है, बालवाणी है, बाल प्रहरी है, चिरैया है, तो यहाँ मैं बाल कहानियां लिखती रहती हूँ तो समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, यहाँ पढ़ी जा सकती है।
1: तो ये
0: और
1: तो
0: एक कहानी संग्रह है
1: जी,
0: कहानी संग्रह है इत्र में भीगी हथेलियां, जो अभी हाल ही में इंडिया नेट बुक से प्रकाशित हुआ है, ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है।
1: बहुत ही खूबसूरत शीर्षक है उसका, टाइटल है, और
0: जी
1: ये सुन के हम तो जो है उसको दो तीन बार सुनेंगे तब हमें याद रहेगा, नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। तो हमारे श्रोताओं ने जरूर सुन लिया होगा कि एक क्या था हथेलियों पे उसका शीर्षक,
0: इत्र में भीगी हथेलियां।
1: हाँ, खुशबू इत्र जो है उसकी खुशबू, शब्दों की खुशबू है उसमें विनीता जी की। तो हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और आज इस आंचल में इतना कुछ है कि हम खुद भी मालामाल हो गए हैं और उसको समेटने में हमें भी जोर आ रहा है। पता नहीं हम सब कुछ इस प्रोग्राम में समेट पाएंगे या नहीं। विनीता, हमने जो बात की उसमें आपके जो स्केच बनाना, चित्रांकन करना, लघु कथा लिखना, साहित्य से जुड़ी बातें, ये सब तो है, उसके साथ आपके जीवन में संगीत, गीत, ऐसी कुछ चीजें हैं?
0: हाँ, गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाने सुनती हूँ। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, लता जी के गाने, आशा जी के, किशोर कुमार जी के, यशुदास जी के। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं गाने लगा लेती हूँ सारेगामा पर या यूट्यूब पर, अपने मनपसंद के गाने मैं चला लेती हूँ
1: जी।
0: तो मुझे हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुरू से, हाँ जी, बहुत शुरू से गाने सुनती
1: हूँ। उनके साथ साथ आप गुनगुनाती हैं मतलब, है ना?
0: कभी कभी
1: हाँ, तो आज उनके उनके बिना थोड़ा सा सुनाइए ना हमें।
0: नहीं देखिए, मैं गाना तो बहुत अच्छा गाती नहीं।
1: एक अंतरा तो चलेगा ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा।
0: जी जी, कोशिश करती हूँ एक लता जी का एक गाना गाने की।
1: जी स्वागत।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: और हम यही श्रोताओं को बतलाना चाह रहे थे कि जो लिखता है, जो साहित्यकार है, जो चित्रकार है, वो संगीतकार भी है और वो गायककार भी है, क्योंकि उसका दिल ही ऐसा होता है। और दिल कभी फूलों पे, कभी पत्तों पे, कभी हवा के संग, और कभी कभी जो है हम बादलों के साथ बातें करते हैं। तो यही साहित्य और साहित्यकार की विधा का एक मौलिक परिचय हो सकता है हमारी दृष्टि में। आप क्या कहेंगी कि एक साहित्यकार को कैसा होना चाहिए, और उसे कोई साहित्यकार बनना चाहता है तो बन सकता है क्या, या जन्मजात पैदा होता है उसके अंदर, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, क्या कहेंगी आप?
2: जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपको मन में अभिव्यक्ति की इच्छा है, छटपटाहट है, तो बहुत अच्छी बात है। सब में एक कोई ना कोई अभिव्यक्ति का गुण होता है, जो अपने आप को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो कोई गाकर करता है, कोई कविता लिखकर करता है, कोई चित्रांकन में करता है, तो कहीं ना कहीं तो हम सबके अभिव्यक्ति निकलती है। और लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार का दायित्व इन सब में थोड़ा सा ज्यादा है। उसको एक बहुत बड़े वर्ग की, एक मतलब पूरे मानवता की उसको संवेदना छूनी चाहिए। उसका मन बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि आप लोगों की भावनाओं को, उनकी दुख दर्द को, उनके अच्छे बुरे को समझ सके, समझकर उसे अपने भीतर महसूस कर सके, तभी तो वो आप अभिव्यक्त कर पाएंगे।
1: यानी एक मास को रिप्रेजेंट करता है वो व्यक्ति,
2: मास को रिप्रेजेंट करता है। और आप जब भी लिखे तो ऐसा ना हो कि आप आत्मालाप कर रहे हैं या अपनी जो है अपना दुख दर्द ही उड़ेल रहे हैं। आपकी जो रचना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सबके मन तक पहुंचे और सबको अपनी सी लगे, जो भी पाठक उसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, मैं ये अपने अपनी कुछ बात पढ़ रहा हूँ, यहाँ ये मेरे लिए कुछ लिखा गया है। पाठक को ये ना लगे कि अरे ये तो लेखक के अपनी वो है, तो अपनी भड़ास निकल गई है या अपना दुख दर्द ही, अपनी ही वेदना उसने उड़ेल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से। और दूसरा ये है कि आप अपने जो साहित्यकार है, वह देखिए भारत की जो साहित्यिक परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। दो जीवन कम पड़ जाएंगे लेकिन आप वो जो साहित्य है वो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप अगर आपको साहित्यकार बनना है, लेखक बनना है, तो मुझे लगता है आपको अपने पुराने जो हैं, जैसे अमृता प्रीतम जी हैं, शरद चंद्र जी को आप पढ़िए, बंकिम चंद्र जी को पढ़िए, आशापूर्णा देवी जी को पढ़िए, आप मालती जोशी जी को पढ़िए, इतना अच्छा लिखा है। और इनको पढ़कर, विशेषकर मैंने बंगाली जो साहित्यकार हैं, जैसे शरद चंद्र जी हैं, बंकिम चंद्र जी हैं और आशापूर्णा देवी हैं, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य मन की जो बिल्कुल भीतरी सूक्ष्म भाव है ना, या उनकी जो मनोवृत्ति है कि कोई व्यक्ति बाहर से कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उस बाहरी व्यवहार के पीछे भीतरी कारण क्या है, वो उन्होंने इतने सुंदरता से उसको अभिव्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मानव मन की गहराइयों को सीखने का उनके मन उससे बहुत सीखने को मिलता है बंगाली लेखकों से। और प्रेम को कितने रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक ही भावना है उसको कितने रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आपको अमृता प्रीतम को समग्र पढ़ना पड़ेगा। अद्भुत है उनकी साहित्य की यात्रा, बहुत अद्भुत है। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार चमत्कृत करती है। मैंने बहुत पढ़ा है इन लोगों को, अभी भी पढ़ती रहती हूँ। मैंने इन बड़े लेखकों से बहुत कुछ सीखा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे लेखन में उनकी बूंद भर भी स्याही उतर पाई है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो अगर किसी को लेखक बनना है, मुझे लगता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए और फिर तब लिखिए।
1: बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। समझने वाले को विचार करना पड़ेगा, और जिन लेखकों का नाम आपने लिया है, सच में उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जैसे शरद चंद्र का शेष प्रश्न आप पढ़िए तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न उठे हैं जीवन के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में। तो ऐसी चीजें जो हैं वो समाज को जोड़ती है, हमें दुनिया से एकीकार करती है। और ऐसी ही अमृता जी के प्रेम की कथा और व्यथा हम सुनेंगे, तोलेंगे, नापेंगे, तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: ये जो आपने नाम लिए हैं वो सच में वो स्तंभ है साहित्य के, जिनको हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लेखन की और लेखक की गूढ़ गहराइयां क्या हो सकती हैं उनको हम समझ सकते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल हमारा सोचना है। तो आजकल जो पढ़ने का की जो परंपरा है, सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि लोग किताबों से दूर हटते जा रहे हैं, दूर ही दूर होते जा रहे हैं, तो क्या होगा इनका, इसके बारे में, इसके भविष्य के बारे में हमें चिंता होती है, आपको होती है क्या?
2: जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी तो होती है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कभी कुछ युवाओं के, जैसे प्रतिलिपि है या ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत लोगों ने पुराने लेखकों को भी प्रकाशित किया हुआ है।
1: जी, हाँ।
2: जी बिल्कुल। और वहां पर जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स में शरद चंद्र जी या प्रेमचंद जी इनके नाम पढ़ती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है कि चलो युवा मतलब अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से, और वो इनको भी पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो छपी हुई किताब भले ही हाथ में लेकर न पढ़ रहा हो, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से और इनकी रचनाओं से, वो इनको पढ़ रहा है। जैसे हाल ही में मुझे एक लिंक में चेखव की पूरी कहानियां मिली डिजिटल उसमें, हाँ इंटरनेट पर, गूगल पर ऐसे ही मैं कुछ सर्च कर रही थी तो पूरी अंतोन चेखव का पूरा जो कहानियां है, तो वो पूरा उनका रचना संसार इंटरनेट पर उपलब्ध है। और वहां पर युवाओं के भी और पाठकों के काफी कमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब ही पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि हमें बहुत दुख होता था कि जैसे चंदा मामा बढ़ गई है, मैं बचपन से विदेश में रही तो मैं बाल पत्रिकाएं नहीं पढ़ पाई, वो मेरा एक आज भी मुझे वो टीसता था कि अरे मैं चंदा मामा ये सब नहीं पढ़ पाई। लेकिन एक दिन यूं ही सर्च करते करते मुझे गूगल पर चंदामामा.in पर पहली चंदा मामा से लेके 2013 तक की सारी चंदा मामा उन्होंने स्कैन करके डाली हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम में सच में पढ़ने की इच्छा है तो हमारे लिए रास्ते भी खुल रहे हैं और बहुत अच्छे खुल रहे हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं इनकी बहुत सी किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी, या विभिन्न वेबसाइट्स पर, या जैसे प्रतिलिपि वगैरह हैं तो इन पर काफी रचनाएं हैं। तो और इसके अतिरिक्त मतलब छपी हुई पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध हैं, तो अगर युवा पढ़ना चाहे तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसके सामने तो दोनों माध्यम हैं।
1: विनीता, बात कवि से हो रही है, साहित्यकार से हो रही है, और कविताओं का आनंद श्रोताओं को न मिले ऐसा हम नहीं चाहते, हमारे श्रोता भी नहीं चाहते, तो हो जाए।
3: छत के कोने पर आंचल के छोर में बंधी एक कतरन यादों की जाने कैसे तकिए पर उतर आई, जब तुम्हारे मोती से अक्षरों में ढली प्रेम की अभिव्यक्ति को कागज ने अपनी हथेली पर सहेज लिया था, और दौर पड़ते थे मेरे पैर अपने आप छत पर सुनहरी दोपहरियों और सिंदूरी शामों में सीने से लगाए उस कागज को पढ़ने के लिए बार बार, प्रेम की वो अनुभूति आज भी छत के उस कोने में शाम के सिंदूरी रंग में रंगी खड़ी हुई है। खिड़की के सरिये पर आज खिड़की से सूखे पत्तों के साथ उड़कर यादों की एक कतरन भी अटक गई सरिये पर, वो दिन जब यूं ही बेमतलब गुजरा करते थे तुम सड़क से गली के मोड़ तक, और नजरें ढूंढती थी खिड़की के सरियों के भीतर, दीवार से सटकर मैं देखा करती थी तुम्हारी बेचैनी, एक झलक मुझे देखने की, दो जोड़ी आंखें आज भी अटकी हुई है सरिये पर, एक बार नजर मिल जाने की राह देखती हुई। कुंज, यादों के इस कुंज में कितनी कोमल लताएं लिपटी हुई हैं, सुंदर सुवासित पुष्पों से भरी हुई, मन के तने से कितनी प्रेम कविताएं भरी उकेरी हुई हैं हरे भरे पत्तों पर, तुम्हारे स्पर्श सी अनुभूति है पुष्पों की इन पंखुड़ियों की, सुन रही हूं मैं बांसुरी की मीठी धुन के साथ उगती कोयलिया को, इस नरम धूप पर आज भी अंकित है तुम्हारे चरण चिन्ह, ओ कुंज बिहारी मेरे, भटक रही हूं मैं देह के कानन में इन लताओं बीच वो पुष्प ढूंढती हुई जो तुमने लगाया था मेरे बालों में अपनी प्रीत का, जन्मों के इस चक्र में समय की धाराओं में जो मुझसे जाने कैसे कब खो गया।
1: स्मृतियों के साए में लिपटी लबरेज कविताएं हमने सुन, इतना खूबसूरत बयान दे रही हैं, बोल रही हैं आप, कि मैं आपको सुनूं या आपसे कोई अगला प्रश्न करूं मैं भूल जाता हूं, तो मैंने जो भूल की है उसको आप संशोधित कर दीजिए कि कहां मैंने आपके व्यक्तित्व को छूने में कहीं कोई कोर कसर रखी हो तो आप जरूर बताइएगा। और साथ साथ में प्रोग्राम के समापन से पहले आप जो कुछ कहना चाहें वो कहिएगा, और फिर एक स्वर में एक गीत तो हम आपसे दो लाइनें फिर भी सुनेंगे, उसको भी याद कर लीजिए। एक साथ तीन चार प्रश्न हैं।
2: जी, तो अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, बहुत सीधा सरल सा व्यक्तित्व है। परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है, और जिस तरह से सांस लेना जरूरी है मुझे लगता है मेरे लिए पढ़ना और लिखना जरूरी है। तो क्योंकि अक्षर, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बचपन से मुझे अक्षर बहुत प्रभावित करते हैं, और लिखना ऐसा लगता है कि वो ईश्वर की इच्छा है और मुझे उनको पूर्ण करना चाहिए। तो लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा या पुरस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे मन में कुछ नहीं रहता, या वो रचना छपेगी कि नहीं छपेगी। बस मेरे मन में जब अभिव्यक्ति की इच्छा होती है तो मैं लिखती हूँ, और पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो मुझे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं पढ़ती नहीं हूँ। और अभी भी प्रकाशित पुस्तकें, छपी हुई पुस्तकें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइब्रेरी में अभी भी कम से कम 400-500 किताबें हैं बड़े लेखकों की, प्रेमचंद जी का काफी सारा रचना संसार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रचना संसार, मृदुला गर्ग जी हैं, और अमृता प्रीतम जी, और रविन्द्र शरद चंद्र जी का तो मुझे लगता है कि जितनी मुझे मिल सकती थी पूरा साहित्यिक उनकी जो है मेरे पास है। और मुझे फैंटेसी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे पास हैरी पॉटर भी है, और मेरे पास बाबू देवकी नंदन खत्री जी की भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता रोहतास मठ, वो भी सारी हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मैंने 7 बार पढ़ी है, वो सारी किताबें मैंने 7-7 बार पूरी पूरी पढ़ी है।
1: हाँ, कई
2: मुझे फैंटेसी में
1: कुछ ऐसे होती है कि वो छू जाती है और उसको दोबारा छूने का मन करता है, सच में पढ़ने को मन करता है।
2: हाँ, तो बिल्कुल, जब मैं थोड़ा सा अवसाद या ऐसे कुछ थोड़ा सा उदासी में रहती हूँ तो मैं वो किताबें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, मुझे एकदम मैं ताजगी से भर जाती हूँ। और इसीलिए शायद मेरा एक जो 4 उपन्यास है, मेरे भी 4 उपन्यास इसी तरह से फैंटेसी पे है। कर्मचक्र जो सीरीज है मेरी, कि उसमें वो पिछले जन्म में जाते हैं और पिछली सदियों में जाते हैं और वो राजा महाराजाओं के दौर में चले जाते हैं और फिर वो क्या क्या करते हैं, तो उसको भी लिखना मैंने बहुत एंजॉय किया था।
1: तो विनीता कब उदास होती है?
2: हो जाती है कभी कभी
1: हो जाती है
2: कोशिश करती हूँ, जी बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि ना हो। लेकिन हो जाती हूँ कभी कभी।
1: और हो जाए तो फिर उपाय क्या करती हैं आप, उसका परिमार्जन कैसे होता है?
2: वो परिमार्जन ऐसे होता है कि कुछ थोड़ा सा अपने आप के साथ संवाद हो जाता है, और अगर ज्यादा है तो मैं रंग लेकर बैठ जाती हूँ, तो कोई सुंदर सा चित्र बना देती हूँ, तो उसके इतने सारे रंग। भारतीय चित्रकला में मुझे गोंड चित्रकला बहुत पसंद है। गोंड चित्रकला में बड़े चटक रंग होते हैं और प्रकृति से जुड़ाव होता है, मतलब पेड़ और हिरण, मोर, पक्षी, तो मैं वो बनाने बैठ जाती हूँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताती हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने बोगनवेलिया के पेड़ लगे हैं, उन पे फूल खिले हैं, हरे भरे पेड़ हैं, लहरा रहे हैं, तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, तो मैं प्रकृति के सानिध्य में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो बस उदासी मेरी बादल बनकर उड़ जाती है।
1: वाह, क्या कमाल का जादू भरा जो टॉनिक है आपने दे दिया है हमारे श्रोताओं को और हमें भी। तो चलते चलते हम सुनना चाहेंगे आपसे कोई गीत, याद कर लीजिए
2: जी। कोई अगर आपको ऐसा गीत एकदम सूझ रहा हो जो मैं गा सकती हूँ तो बताइए।
1: बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई गीत सुनाएंगे, क्योंकि ये रेडियो का प्रोग्राम है।
2: जी जी, तो सावन पे गीत गा दूं?
1: बिल्कुल,
2: थोड़ा सा दो लाइन।
1: हाँ
2: जी। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर कहो, शोर शोर शोर। सावन का महीना

0: झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर।
1: इस सुहाने गीत के बोल सुन के हमारे श्रोताओं को भी लगने लगा होगा कि ये गीत क्यों ना सुनाया जाए। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला सॉन्ग सभी श्रोताओं के लिए। सावन का महीना पवन करे शोर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: बस वन की
1: बहुत
0: तरह सब लोग को फूले फूले रहें, मोर की तरह हमेशा खुश रहें, नाचते गाते रहें। आपके सभी श्रोताओं के लिए मेरा यही प्रार्थना है, यही संदेश है।
1: हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति, और हमारे साथ मशहूर साहित्यकार विनीता राहुरकर मध्य प्रदेश भोपाल से। विनीता जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
2: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
2: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
2: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
2: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
2: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
2: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
2: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
3: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
0: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
0: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो कि अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। स्टूडियो में स्वागत करती हूँ आज के झिलमिलाते सितारे का, जो कि आए हैं सपनों की नगरी मुंबई से। एक ऐसा जादू है इनकी आवाज में जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। ये हैं मुश्ताक खान उर्फ मुशी। मुशी जी बहुत स्वागत है आपका। सुना है कि जब आप अपना गिटार उठाकर इम्प्रॉम्प्टू गाते थे तो आसपास रहने वाले लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको सुनते थे। तो हमारे सुनने वाले बेताब है ये जानने के लिए कि मुशी कौन है।
6: थैंक यू, नमस्कार। जयपुर रेडियो के जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया
5: जी,
6: और आपने रेडियो के जो दर्शक हैं उनसे रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा, तो हाँ एक दौर था जब हम गिटार लेके बैठ जाते थे और लोग सुनने की। संगीत एक ऐसी चीज है कि जिससे लोग यूं ही जुड़ जाते हैं
5: जी।
6: आपको कुछ अपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस संगीत आपको अपने आप जोड़ देता है लोगों से।
5: बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुशी आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन है आपके परिवार में?
6: मैं मुंबई से हूँ और मेरा जो म्यूजिक और प्रोफेशन दोनों अलग अलग है। मैं संगीत को भी प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ और
5: जी।
6: वैसे बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और वही में ही मेरा प्रैक्टिस है। फैमिली में आई हैव मेरी वाइफ है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है
5: जी।
6: और मेरे दो बेटे हैं, वो भी आर्किटेक्चर में हैं।
5: क्या बात है, वाह बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी कि खान एंड खान सन्स की तैयारी है पूरी, आपका जो ये फैमिली बिजनेस बन गया है। तो आपके बेटे भी गाते हैं?
6: एक्चुअली संगीत हमारे घर से खानदान में है पर मेरे बच्चों में नहीं आया। हालांकि मैंने एक बार बड़े बेटे से सुना है गाते हुए, तो मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस, पर उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन या हॉबी लिया नहीं।
5: अच्छा अच्छा अच्छा जी। तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं
6: जी। शुक्रिया
5: जी।
6: क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे?
5: जो भी आप अपने

0: मुझे संगीत में आपने शिक्षा ली है या यूं ही आपने रुचि के तौर पे अपने सीखा?
1: संगीत की मैंने शिक्षा ली है बकायदा। मैंने एक्चुअली पहले मैं तबला सीखता था,
0: अरे वाह,
1: और जब एक्चुअली पेरेंट्स को जब पता लगा कि बच्चा गाने में रुचि रखता है, तो उन्होंने मुझे एक तबला, हमारे ट्रेनर थे गुरु जो मुझे सिखाने आते थे,
0: जी
1: और हारमोनियम भी मैं उन्हीं से सीखा हूँ।
0: अच्छा है। तो क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: मैं होऊंगा अराउंड 8-10 साल, 8-9 साल का उस वक्त।
0: अरे वाह,
1: हाँ, और पेरेंट्स ने मुझे जब नोटिस किया तब मैं 5 साल का था, मैं डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा होकर गाना गा रहा था।
0: क्या बात है।
1: तो एक हादसा है वो भी समझ लीजिए कि, और वहाँ से उन्हें पता लग गया कि बच्चे में रुचि है। तो
0: जी,
1: फिर जब मैं हम मुंबई आ गए तो यहाँ हमारे ट्रेनर थे जो मुझे तबला सिखाते थे और हारमोनियम भी बताते थे। हाँ,
0: अच्छा, आप शुरुआत से ही मुंबई में नहीं रह रहे, आप मुंबई से पहले कहीं और रहते थे?
1: माय फादर ही इज अ रिटायर्ड कमांडर फ्रॉम नेवी,
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: पोस्टिंग्स होती रहती हैं यहाँ।
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मेरी स्कूलिंग का टाइम जो था तब मैं मुंबई में था, फिर कॉलेज मैंने ग्वालियर में किया, फिर वापस मुंबई आ गया। ये मेरी
0: अच्छा, तो मुझे आप बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स जैसे कि किशोर जी, रफी साहब, महेंद्र कपूर जी के गीतों को बखूबी निभाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के गीतों को आप अपने दिल के करीब मानते हैं और क्यों?
1: बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब मैं 5 साल की उम्र से गा रहा था तब किशोर दा बड़े पॉपुलर थे उस वक्त, और हम तो रिकॉर्डर, जो रिकॉर्डर होता था उससे सुन के गाना गाते थे या रेडियो को सुन के गाना गाते थे। तो तब किशोर दा के बहुत गाने, राजेश खन्ना, ये बहुत पॉपुलर हीरो होते थे उस वक्त। और
0: जी
1: जैसे हम बड़े हुए तो फिर रफ़ी साहब आ गए, और जब मैं 10th में पहुंचा तो मैं गज़लों की तरफ काफ़ी झुक गया। फिर मैंने गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब, इनके गाने, गज़लें, और हुसैन ब्रदर्स, उनकी गज़लें गाना शुरू की, और फिर मैंने खुद की कुछ गज़लें भी कंपोज की।
0: क्या बात है। अच्छा,
1: और ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने करीब 7-8 गाने, मेरे गजलें मेरी वहां पे रिकॉर्ड की।

0: वाह, अरे वाह।
1: तो ये मेरा एक्चुअली स्कूल तक का सफर था। इसके बाद फिर मैंने वापस संगीत विद्यालय में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, और फिर लगा कि नहीं ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं वापस आर्किटेक्चर में आ गया। और तब
0: अच्छा,
1: जाके मैंने दूसरे सिंगर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें काफ़ी लोगों ने तारीफ की कि आप महेंद्र कपूर साहब बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि
0: जी
1: उनकी हाई रेंज काफ़ी रहती है। तो
0: जी
1: फिर मेरा झुकाव उनकी तरफ भी हो गया। और सही बात कहूँ तो मैं उन सब गानों को गाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दिल के करीब लगते हैं। तो मैं सिंगर एज अ स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो
0: जी
1: शायद वो वर्सिटैलिटी कहीं ना कहीं झलकने लग जाती है।

0: जी, और आपकी एक और खासियत है कि आप रेयर सॉन्ग्स गाकर बड़े खुश होते हैं, और आपके जो सह गायक या सह गायिकाएं हैं उनको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि एक स्म्यूल ऐप पर जब आप इनफॉर्मली गाते हैं, यूं ही अपने शौक के लिए गाते हैं, तो वहां पर मुझे भी मौका मिला है आपके साथ कभी कभी गाने का, और बहुत सीखा है मैंने आपसे। तो इन दिलचस्प बातों से विराम लेते हैं, और अब क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए ही हुए हैं, तो अपनी मीठी सी आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए।
1: जरूर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारा कि मुझे स्म्यूल ऐप में इतने अच्छे से नोटिस किया, और मेरे जो अतरंगी गाने हैं जो मैं, क्योंकि रेगुलर गाने सब गाते हैं, तो
0: जी
1: उनको आप लोगों ने अच्छे से सुना और गाया भी,
0: नहीं,
1: तो
0: आपसे
1: कोई
0: बहुत कुछ
1: ऐसा
0: सीखा
1: ही
0: है मुझे।

0: मुझे आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत से मेगा म्यूजिकल इवेंट्स करते हैं। आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से प्लेबैक सिंगिंग का भी ऑफर आया। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से मन से वक्त निकालते हैं। पेशे से, जैसे आपने कहा, आप आर्किटेक्ट हैं, तो इन सब चीजों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: जब संगीत आपके सिर्फ प्रोफेशन ना हो, आपकी हॉबी भी बन जाए, आपका नशा,
0: जी
1: तो फिर वो वक्त तो निकल ही जाता है। क्योंकि प्रोफेशन के बिना, जो मेरा आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन है, उसके बिना तो दाल रोटी नहीं चलने वाली। तो मुझे उससे पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है। फैमिली
0: सही सही
1: को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे। तो
0: जी
1: मेरा जो संगीत का वक्त है, वो 12 बजे के बाद शुरू होता है, और
0: जी
1: मैं रिलीजियसली 2 घंटे बैठता हूँ और गाता हूँ। कभी कभी शेड्यूल पे गा देता हूँ, कभी अगर शेड्यूल नहीं गा रहा हूँ तो मैं वैसे ही गुनगुना रहा होता हूँ। पर मैं वो 12 से 2 बजे तक मैं अपना पूरा वक्त संगीत को देता हूँ।
0: तो आप नियम से रियाज भी करते हैं?
1: बिल्कुल, उसको आप यही समझ लीजिए कि,
0: अच्छा, वो
1: क्योंकि
0: रियाज के
1: रियाज
0: तौर पर ही है।
1: के तौर पे मैं कुछ कुछ नए गाने प्रैक्टिस करता हूँ,
0: जी
1: पुराने गाने प्रैक्टिस करता हूँ, उनको सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वापस सुनता हूँ।
0: जी क्योंकि मैंने आपके मन्ना डे साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं। आपकी क्लासिकल सॉन्ग्स पर भी उतनी ही बखूबी से पकड़ है जितनी कि आप किशोर जी के नॉर्मल सॉन्ग्स, जो नॉन क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उनको गाते हैं। तो यहाँ पर हम आपका एक और गीत लेते हैं।
1: जरूर।

0: वह मुंशी, आपके एक एक गीत को सुनकर ऐसे लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं। इतना आपने खूबसूरत माहौल बना दिया है सारे स्टूडियो में। तो मैं अब अगला सवाल मेरा ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो इस वक्त आप जहां पर अपने आप को पाते हैं, आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का दूंगा, क्योंकि मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
0: जी
1: और माय मदर जो थे, उन्होंने मुझे कंपोजिशन कैसे करना है उसके लिए प्रेरित किया काफी।
0: अच्छा
1: वो बोलती थी कि तुम हारमोनियम में इतना गाते हो और गजल गाते हो, तो क्यों ना अपनी खुद की एक गजल बनाओ और गाओ।
0: बहुत
1: तो वो
0: खूब।
1: पेपर में कुछ कटिंग्स निकाल के मुझे देती थी कि देखो, पहले पेपर में गजलें आती थी, लोग लिखते थे ऐसे, मैगजीन्स में भी आती थी, तो उसमें से गजल कट करके मुझे दे देती थी और बोलती थी इसका धुन बनाओ और इसको गा के देखो।
0: अरे वाह,
1: और यही मेरी शुरुआत थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने अपनी खुद की गजलें वहाँ पे कंपोज करके, उस टाइम तो मेरी लिखी हुई नहीं थी। ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने फिर उसके बाद खुद लिखना भी शुरू किया।
0: अरे वाह, मतलब आप एक बहुत ही उम्दा गायक के साथ साथ एक उम्दा शायर भी हैं।
1: अपने दिल में जो है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो शौक
0: जी
1: मेरी मदर ने मेरे मुझे मतलब प्रेरित किया कि तुम करके देखो, कोशिश करो।
0: अपनी कोई लिखी हुई रचना हमें सुनाइए।
1: जरूर एक मेरी जो मैं कभी सोच रहा था एक एल्बम बनाने के लिए, तो उसको मैंने ही लिखा है, कंपोज किया हुआ है, तो मैं वो सुनाता हूँ और मैं
0: जी
1: डेडिकेट भी करूँगा मेरी मदर को।
0: जी
1: गा के सुनाओ या पढ़ के सुनाओ?
0: जी गा के सुनाइए, नेकी और पूछ पूछ।

0: अरे वाह, मुझे आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ पे एक सैक्सोफोन की कमी महसूस कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर को खो दिया और उनकी याद में मैंने एक गाना कंपोज किया था, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूँ आपके इस प्रोग्राम में। तो लीजिए, सुनिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुशी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देकर जाइए, कुछ कहकर जाइए।
1: मैं सबसे यही कहूंगा कि संगीत जो है वो दिल से होना चाहिए।
0: जी
1: ये वैसा नहीं है कि हम कोई इंजीनियरिंग सीख के और फिर करते हैं। सीखना तो जरूरी है, पर जब आप दिल से उसे गाते हैं तो वो कनेक्ट करता है दूसरे के दिल से। तो
0: जी
1: कोशिश करें कि आवाज़ कैसी भी हो आपकी खुद की होनी चाहिए,
0: जी
1: और बस दिल से उसे गाइए। और संगीत दो चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आधारित है, जो है सुर और तार। तो
0: जी
1: ना बेताला हो और ना बेसुर हो, और बस दिल से गाइए।
0: जी तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं मुंशी, तो आजकल जो कैरियोके सिंगिंग इतनी पॉपुलर हो रही है और जगह जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठा होते हैं और कैरियोके पर गाना गाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: हाँ, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि संगीत अब घर घर में चला गया है।
0: जी
1: कराओके आने से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गाना गा सकते हैं,
0: राइट
1: या सिंगिंग से कोसों दूर थे, सिर्फ सुनते थे, वो कम से कम संगीत के साथ जुड़ गए। हाँ, पर उनको इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि संगीत जो है सुर और ताल पे आधारित है।
0: जी
1: जैसे समय एक ताल उसकी चलती है, तो अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो समय तो चलता रहेगा। तो कराओके भी एक समय की तरह चलता रहता है। अगर आपने
0: बिल्कुल
1: बीच
0: सही
1: में छोड़ दिया तो वो आगे
0: जी
1: ताल चली जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: बस
0: सही
1: सीख
0: कहा
1: के करिए, जो भी करिए अच्छा रहेगा।
0: जी, बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मुंशी जी के साथ। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
1: थैंक यू सपना जी, मुझे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो में बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी टीम का।
0: शुक्रिया। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का लोकप्रिय जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से ही हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आ रही हैं पंजाब के मैनचेस्टर लुधियाना शहर से एक बहुत खूबसूरत वहां की जानी मानी टैलेंटेड गायिका दीपिका चावला जी। ये सीधा ट्रेन पकड़कर आ रही हैं हमारी कमर्शियल कैपिटल लुधियाना से जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सुनने वाले को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पहचान क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं?
2: नमस्ते सपना, सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में आकर,
0: जी
2: बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर सारी बातचीत करके।
0: जी
2: सपना, मेरा मायका जो है वो पानीपत का है, जो कि हरियाणा में है, और शादी के बाद से ही मैं लुधियाना में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, और उनका ध्यान रखती हूँ मैं सारा दिन।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
2: मैं गृहिणी हूँ,
0: जी
2: यही
0: जी जी
2: मेरा संसार है, बच्चे और
0: जी
2: पति।
0: दीपिका जी, गृहिणी होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बाहर का काम तो बखूबी खैर संभालती ही हैं, लेकिन घर में आकर अपने परिवार की देखरेख करना, उनको अच्छा खाना बनाकर देना, उनकी कहानियां सुनना, सारे घर का ख्याल रखना, ये सबके बस की बात नहीं होती अगर मैं कहूँ तो।
2: जी बिल्कुल
0: तो दीपिका जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही बना हुआ है, और आप
2: जी
0: दोनों जगह रह चुकी हैं, पानीपत और लुधियाना, है ना? तो
2: जी
0: दोनों शहरों के अगर हम कंपेयर करें तो किसके प्रति आपका ज्यादा झुकाव है और क्यों?
2: सपना, ज्यादा झुकाव तो मेरा लुधियाना में ही है, क्योंकि शादी को काफी सालों हो गए हैं
0: जी जी
2: और लुधियाना अपने होजरी इंडस्ट्री, साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री और खान पान के लिए बहुत मशहूर है।
0: बिल्कुल,
2: यहाँ के लोग जिंदगी को बड़ी अच्छी तरह से जीते हैं
0: जी,
2: खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और मस्ती करते हैं
0: और स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं
2: और म्यूजिक के तरफ भी सबका बहुत झुकाव रहता है
0: जी।
2: और लुधियाना में जैसे और पंजाब का कमर्शियल कैपिटल भी है
0: जी,
2: यहाँ पर बहुत पुराने किले भी बने हुए हैं ना, और किलों के खंडर अभी भी हैं, वहाँ पर शूटिंग के लिए कई डायरेक्टर भी आते हैं, और जैसे रंग दे बसंती मूवी में आमिर खान अपनी टीम के साथ आए थे
0: जी जी जी।
2: तो
0: ये तो दीपिका आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर जब हम अपने शहरों की बात करते हैं तो लुधियाना सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के लिए ही जाना जाता है, बल्कि मजाक बना हुआ है कि कोई सफेद रंग की कार में अगर बैठकर लुधियाना आएगा तो शाम तक उसकी कार काली होकर ही पहुंचेगी। तो बड़ा अच्छा लगा आपने यहाँ का ये बताया कि यहाँ के जो खंडर हैं किलों के पुराने, वहां पर बॉलीवुड टीम से शूटिंग भी होती है।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो फटाफट हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड आप हैं, तो क्या कभी किसी बॉलीवुड टीम से आपको कोई चांस नहीं मिला?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सपना, ऐसे कोई बात नहीं
0: जी
2: है।
0: मुझे लगता है वो लक्स सोप की जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें तो पक्का ही आप कर सकती थी, गा भी खुद सकती थी।
2: चलिए, खैर,
0: ये दिलचस्प बातों का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर हम आपका पहला गीत लेते हैं।
2: हाँ जी, ओके।

0: वाह दीपिका, कितना खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपकी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीत से हमारे स्टूडियो का सारा माहौल महक उठा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत में आपकी रुचि क्या शुरू से ही रही है या फिर इसके साथ आपके और भी कोई शौक रहे हैं?
1: हाँ सपना, वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं होता ज्यादा, पर संगीत के लिए मैं जरूर वक्त निकालती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि संगीत ही मेरे रोग की खुराक है और संगीत ही मेरा प्यार है।
0: वाह वाह,
1: जब मैं छोटी थी तब से ही संगीत की शिक्षा ले रही हूँ।
0: अच्छा।
1: और कॉलेज में भी म्यूजिक वोकल लिया, फिर शादी के बाद जैसे घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, संगीत में नहीं मिल पाया
0: जी।
1: तो फिर बच्चे अब अपने सब लाइफ में सेटल हो गए तो हस्बैंड ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं अब संगीत में होना चाहिए।
0: बहुत खूब,
1: आगे जाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। तो हालांकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता,
0: अच्छा,
1: तो फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं।
0: जी जी, बहुत खूब,
1: मेरे शौक पूरा करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा, और तो इसके अलावा भी आपके शौक हैं?
1: हाँ जी, शौक कह सकते हैं, शौक है डांसिंग का, कुकिंग का।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: मेरी छोटी बेटी वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है।
0: अच्छा,
1: जिन मान्या के नाम से।
0: जी जी, लुधियाना में उनका काफी नाम है। जी जी,
1: उसके साथ उसका कभी कभी डांस करती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अपना शौक पूरा करती हूँ वो भी डांसिंग का भी।
0: क्या बात है दीपिका, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। बल्कि हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह के आपको जीवन साथी मिले हैं, हरीश जी जो आपका हर कदम के साथ देते हैं, इस तरह का साथी हर किसी को मिले, इस तरह का परिवार।
1: बहुत शुक्रगुजार हूँ हरीश जी की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी, हरीश जी फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका जी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और इस जोड़ी को कभी नजर ना लगे। तो चलिए दीपिका, आपका हम अगला गाना लेते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी।

0: दीपिका, जैसे आपने शुरू में हमें बताया कि आप एक गृहिणी हैं, और ये तो खैर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो गृहिणी होती है जितने मेहनत और समर्पण और प्यार से वो अपने परिवार के लिए काम करती है वह अनमोल होता है। हर स्टेप पर, हर कदम पर उसकी ममता, उसकी सेवा और उसके प्रेम से जिंदगी चलती है। तो आपका आधे से ज्यादा वक्त तो अपने घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाता होगा, तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: हाँ सपना, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मेरा परिवार ही मेरा संसार है
0: जी,
1: और मैं और हरीश जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें दामाद के रूप में बेटा मिला है।
0: वाह क्या बात है।
1: उनको भी संगीत में बहुत ही रुचि है और वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जैसे आपने संगीत के बारे में पूछा कि तालमेल कैसे बना
0: जी,
1: तो वो भगवान की दया से खुद ही बन जाता है, क्योंकि जब हम लोग साथ इकट्ठे होते हैं तो संगीत की महफिल लगती ही है
0: जी,
1: और हम जी, लोग जी, बहुत खूब मजा करते हैं
0: जी जी तो जी। एक बहुत ही अच्छे गाने के बोल दिमाग में आ रहे हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत खूब नजर ना लगे जी आपके परिवार को, बहुत ही हंसता गाता खिलखिलाता और म्यूजिकल सा परिवार है आपका। और हमने तो ये भी सुना है कि आप जैसे ही वीकेंड्स आते हैं आप फटाफट हिल स्टेशन की तरफ रुक कर लेते हैं ताकि और स्टेज परफॉर्मेंसेज आप कर सके। तो यही हमारी तो इच्छा रहेगी कि कभी ना कभी हमारे श्रोताओं को आपकी लाइव परफॉर्मेंस भी सुनने को मिले। इसी के साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं
1: जी।

0: दीपिका, ये बातों के सिलसिले तो खैर कभी खत्म नहीं हो सकते। आप जो इतने प्यारे प्यारे गीत लेकर आई हैं और इतने सारे किस्सों की जो पिटारी लेकर आई हैं, मन कर रहा है कि हम ये बातचीत करते ही रहें, पर वक्त हमें कह रहा है कि आगे की गुफ्तगू किसी और एपिसोड में। तो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
1: सपना, मैं आपकी और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत मजा आया आपसे सबसे बात करके।
0: जी,
1: और
0: हमें भी
1: आपकी
0: बहुत
1: अगर
0: मजा आया।
1: इजाज़ हाँ जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी।
0: अरे वाह, इरशाद।
1: मेरे बच्चों, तुम ही मेरी धड़कन, तुमसे ही है ये जीवन मेरा चंदन। तुम्हारे बिना मैं अधूरी कहानी, तुमसे ही सजी है मेरी ये जिंदगानी।
0: वाह वाह,
1: तुमसे है घर, तुमसे है संसार, तुमसे ही है मेरे जीवन का सार। तुम ही मेरी दुनिया, मेरी सबसे बड़ी सौगात।
0: अरे वाह दीपिका जी, ये तो आज आपकी एक और खूबी हमें पता चल गई कि आप तो बहुत अच्छी शायरा भी हैं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी दो शब्द कहिए।
1: हाँ जी सपना, अंत में मैं जाते जाते श्रोताओं को अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहूंगी
0: जी
1: कि आप कोई भी रिश्ता किसी से भी बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का, बहन का हो या भाई का,
0: जी
1: उस रिश्ते के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, पर निभाना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और
0: जी
1: सबसे प्यार से रहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत खूब दीपिका,
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब।

तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात लुधियाना की दीपिका चावला जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ। यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले धिदिन तिनक दिन धिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नरगिसे साहिर हो तुम, नूर नजर हो, जिसे देखकर ही खो जाए ऐसा असर हो। पुर नूर हो गया जो भी मिला एक बार तुमसे, मैं तुम्हारा काफिया और तुम मेरी बहर हो। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस, जिन्हें सिनेमा की क्वीन भी माना जाता है, अपनी सौम्यता, आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी। लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी। नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। मैं तनुजा मुंद्रा, आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस, नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं

फिर चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया MD त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों, जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा, आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेनतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत, दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो। फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनुजी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा तभी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी न छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का जिक्र हुआ है तो चलिए सुनते हैं ये शाम की तन्हाई।

वाह सचा जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थीं और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गईं। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओ, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

झूमे धरती हुई बावरिया, दादुर पपिहा शोर मचाए।

सावन आया, दूर गगन में बिजुरी चमके, दूर गगन में

0: सावन आया तुम न आए, डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद लेतु दशरथ की रानियां, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्या शंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी और स्वयं मैं।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच सरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, MD त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ, भोर भई अब जागो शंभू।